0: एक इंसान के अलग अलग मूड्स होते हैं। कभी हम हैप्पी होते हैं, कभी सैड होते हैं, कभी नर्वस होते हैं, तो कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन जब हम म्यूजिक सुनते हैं ना, कोई भी गाना सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसी म्यूजिक के मूड में चले जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ म्यूजिक। हेलो, हाय, नमस्कार, दिस इज आरजे गौतम और आज मेरे साथ हैं एक और गौतम, गौतम थापा। अगर आपने इनका नाम नहीं सुना तो इनकी आवाज जरूर सुनी होगी। A very warm welcome to you, Gautam, in Walk Talk Radio.
1: Thank you so much.
0: कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके?
1: बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। This is my first podcast, so थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, but हाँ, मतलब अच्छा लग रहा है अभी, feeling good है।
0: तो उस नर्वसनेस को एक म्यूजिक का फील देते हैं और गाने से शुरुआत करते हैं।
1: Sure.

0: बात है गौतम, क्या गाया है।
1: थैंक यू सो मच।
0: मुझे भी खुशी हो रही है, मजा आ गया मतलब सुन के।
1: अरे थैंक यू सो मच।
0: तो आपने जैसे अभी हिंदी गाना गाया
1: जी,
0: तो ऐसी और कितनी लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप गाना गा लेते हैं?
1: मैं इंग्लिश सॉन्ग्स भी गाता हूँ, कुछ पंजाबी हो गए और कुछ सूफी हो गए। थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ आजकल, जो हमारी कम्युनिटी लैंग्वेजेस हैं, कुछ गढ़वाली गाने प्रिपेयर कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि फरमाइशें काफी आती रहती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और कुछ गोरखाली सॉन्ग्स की फरमाइशें आती रहती हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस चल रही है आजकल।
0: आप गिटार तो बजाते ही हैं?
1: हाँ जी।
0: साथ में और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप बजाते हैं या आपको आता है?
1: थोड़ा बहुत कीबोर्ड प्ले कर लेता हूँ मैं, बाकी गिटार मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट है। अकोस्टिक गिटार ही प्ले करता हूँ ड्यूरिंग माई परफॉर्मेंसेज एंड ऑल। और अभी रिसेंटली 2 सालों से मैंने अपना बैंड फॉर्म किया है। तो एक बैंड, फुल बैंड में आपको पता ही है कि 4 लोग होते हैं, एक वोकलिस्ट होता है, लीड गिटारिस्ट होता है, बेस गिटारिस्ट होता है और ड्रमर होता है। तो बेस गिटारिस्ट की जगह हमारे पास थी नहीं, तो बेस गिटार भी आजकल मैं प्ले करके ही गाता हूँ।
0: क्या बात है।
1: तो ऐसी चीजें हैं बस।

0: जिन लोगों को दूसरे के सुनने की आदत नहीं है, छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो जाते हैं। आपको आगे बढ़ते देखने में बाकी हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको भटकाने की। तो आपसे मेरा यही कहना है कि सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि इस दुनिया में रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो दोस्तों, क्योंकि यहाँ टांग खींचने वालों की कमी नहीं है।
1: Walk Talk Radio, tune in for a better life.

0: एक आर्टिस्ट के लिए ना उसका पहला गाना बहुत ही स्पेशल होता है।
1: हाँ जी।
0: तो आपको कुछ याद आ रहा हो, आपका पहला गाना आपने लिखा हो, गाया हो, या कोई भी मेमोरी हो ऐसी?
1: जी, पहला गाना जो मैंने कंपोज किया है, मेरा खुद का सॉन्ग है, जो मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो ये खुला आसमां जो है, उस गाने के बोल हैं। तो ये गाना मैंने बहुत पहले, आई बिलीव बैक इन 2004 मैंने ये गाना लिखा था, तो कभी मौका मिला नहीं, कंपोज भी खुद ही किया था बीच में, क्योंकि कभी हम लोग इस फील्ड में थे नहीं पहले म्यूजिक में। म्यूजिक में मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, पर हाँ, जब आया हूँ तो बड़े अच्छे तरीके से ही आया हूँ। तो तब मैंने इस गाने पे और काम करना शुरू किया, तो जो पुराने लिरिक्स थी उस गाने की, वो भी थोड़ी सी मॉडिफाई करी इस टाइम के हिसाब से। तो दैट सॉन्ग इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा, गाने का नाम है ये खुला आसमां।
0: जैसे आपने अभी म्यूजिक में आने की बात करी
1: जी,
0: तो ये म्यूजिक का शौक, ये सिंगिंग का शौक, ये आपने सिर्फ एक एज अ शौक करा है या इसकी आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली है?
1: जी, मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली है। मेरे गुरुजी हैं पंडित मुरलीधर जगुड़ी जी, तो वो मेरे ही स्कूल में म्यूजिक टीचर थे, तो उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि मुझसे म्यूजिक सीखो। तो मैंने 6 साल का विशारद किया है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, वोकल सीखे हैं, मतलब वोकल सीखे, पर उसके बाद मैं प्रोफेशनली कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि वही आपको पता ही है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो घर से आपको प्रेशर होता है कि पहले पढ़ाई पूरी करो, पढ़ाई के बाद फिर नौकरी करो

0: तो वो वाला प्रेशर था, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली ये सब करने के बाद मैं आया म्यूजिक की फील्ड में। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड वर्किंग। 4 साल मैंने नौकरी करी। नौकरी के दौरान मैंने यूएस भी ट्रैवल किया, मेरी कंपनी ने मुझे बाहर भेजा, मतलब वेल सेटल्ड जॉब थी। फिर मैंने वापस आके दोबारा देहरादून में वापस आया। फिर मैंने MBA किया। MBA के बाद भी मैंने 2-3 साल नौकरी करी। पर जब एक पॉइंट आ जाता है आपकी लाइफ में कि नहीं यार, ये चीज़ के लिए मैं बना नहीं हूँ, एक आपको हिट मिलता है कि मतलब ये चीज़ ना आप नहीं कर पाओगे, फॉर अ लॉन्ग रन आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि बचपन से ही शौक था म्यूजिक में आने का, ठीक है। कॉलेज लाइफ में भी हम स्टेज शोज में परफॉर्म करते थे, तो सोचते थे कि यार अब स्टेज वर्क ही करना है। अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती थी, पर क्योंकि नौकरी में इतना व्यस्त होते थे कि आपको नहीं मिलता था इतना टाइम कि आप जाके परफॉर्म भी करो। तो धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप हुई। 2018 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे म्यूजिक ही करना है। तो अपने आप को प्रिपेयर करा मैंने 3-4 महीने काफ़ी, क्योंकि जब आप स्टेज शोज करते हो, जब आप स्टेज परफॉर्मेंस करते हो, तो आपको एक स्टैमिना चाहिए होता है,
1: बहुत बहुत चाहिए,
0: राइट। आपको कम से कम 2-2.5 घंटे या 3 घंटे आपको परफॉर्म करना है,
1: बिल्कुल।
0: तो आपके वोकल कॉर्ड्स, वोकल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप 3 महीने तक कंटिन्यू, 3 महीने बोल रहा हूँ सॉरी, 3 घंटे तक आप कंटिन्यू गा सके। 3 महीने इसलिए निकला मेरे मुंह से क्योंकि 3 महीने मैंने प्रिपरेशन करी थी डेली। तो उसके बाद मेरे को पहला ब्रेक जो मिला वो मुझे मिला जयपुर में। जयपुर से मेरी स्टार्ट हुई 2018 में। 6 महीने मैंने वहाँ के क्लब्स एक्सप्लोर करे, धीरे धीरे अपना बिल्डअप किया, अपने सॉन्ग लिस्ट चेंज करता रहा, क्योंकि एक टाइप के सॉन्ग्स अगर आप गाते रहेंगे तो आपकी ऑडियंस भी बोर हो जाती है। एग्जैक्टली, आपकी ऑडियंस बोर हो जाती है। फिर आपको इतने गाने प्रिपेयर करने हैं क्योंकि आपके रिक्वेस्ट बहुत आती हैं। अब कुछ रिक्वेस्ट मैं फुलफिल कर पाता हूँ क्योंकि मैंने वो गाने सुने हैं, मैं वो गाने प्रिपेयर कर चुका हूँ, कुछ कभी कभी नहीं हो पाते। फिर 2019 में मैं देहरादून आ गया, जब मुझे पता चला कि देहरादून में भी लाइव म्यूजिक का स्कोप बढ़ रहा है, बहुत सारे क्लब्स यहाँ पे खुले थे। सबसे पहला क्लब था ग्रेट इंडियन पब, जो कि आपके राजपुर रोड में है। फिर आपका टॉनिक है, जो कि आपके टूवर्ड्स बल्लूपुर रोड में है। तो टॉनिक से मेरी शुरुआत हुई थी, और अभी ऐसा है कि 5 साल हो गए मुझे टॉनिक में परफॉर्म करते करते। तो बस जर्नी वहीं से शुरू हुई म्यूजिक की, और कंटिन्यू है अभी तक।

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: आपने जर्नी की बात करी और अपनी पूरी कहानी के बारे में हमें बताया, लेकिन एक ऐसा जो आप एक पॉइंट आता है जब बंदे को हिट करता है,
1: हाँ जी,
0: यार नहीं अब नहीं करनी जॉब, अब मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है, तो वो इंसिडेंट या वो पॉइंट कब था?
1: ये बहुत ही एक अमेजिंग किस्सा है। मैं गया तो था बिजनेस ट्रैवल के लिए अपनी कंपनी की तरफ से। आई यूज टू वर्क फॉर एन MNC उस टाइम पे, 2016 की बात है। हम चैटानूगा गए थे, ऑफिस का क्राउड पूरा एक प्रोजेक्ट लेने के लिए गए थे। तो 2016 में जब चैटानूगा में थे, टेनेसी एक स्टेट है US का, वहाँ पे एक सिटी है चैटानूगा। फिर चैटानूगा से हम नैशविल गए थे, विच इज़ अ म्यूजिक सिटी। तो नैशविल में, नैशविल से वैसे आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे सिंगर्स वहाँ से नैशविल के ही हैं, मतलब
0: जैसे
1: आपने सुना होगा एल्विस प्रेस्ली, बहुत ही 60s के जाने माने, अभी तक उनके गाने सुनते हैं, कांट हेल्प फॉलिंग इन लव विद यू उनके सॉन्ग्स हैं, माइली साइरस जो कि लोगों ने सुना ही होगा काफी नाम, शी इज ऑल्सो फ्रॉम नैशविल। तो वो म्यूजिक सिटी है, वहां पे मतलब हर 10 बंदों में से 9 बंदे जो हैं गिटार बजाना जानते हैं। तो वैसी क्लब हॉपिंग चल रही थी हम लोगों की, हमारी छुट्टी थी, हम घूम रहे थे, तो एक कैरियोके नाइट था वहां पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं थोड़े इंग्लिश सॉन्ग्स भी सुनता हूँ, गा लेता हूँ, तो मैं भी चढ़ गया स्टेज पे कि मैं भी गाऊंगा। सो वहां पे लोग थे जो मुझे कह रहे थे कि यू आर एन इंडियन, हाउ कैन यू सिंग इंग्लिश सॉन्ग्स एंड ऑल। तो मैंने कहा नहीं, मैं गाता हूँ। तो जॉन डेनवर एक कंट्री आर्टिस्ट है, 60s-70s के ही हैं ये, तो उनका सॉन्ग है एनी सॉन्ग। तो मैंने जब वो एनी सॉन्ग गाया तो लोग वहाँ पे थोड़े वो हो गए कि यार ये तो बढ़िया गा रहा है लड़का,
0: इंडियन आदमी ने इतना अच्छा इंग्लिश गाया है।
1: बिल्कुल। तो वहीं उनसे, वहीं पे एक जेंटलमैन बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि यू हैव अ वेरी लवली वॉइस एंड यू शुड डू समथिंग विद योर वॉइस। तो वो बात मुझे काफ़ी हिट करी। तो नैशविल में मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं यार, अब तो कुछ करना है, अब नौकरी ज्यादा नहीं हो सकती है। कुछ अपना ही करना है।
0: तो नैशविल से मतलब आपने अपनी गाड़ी मोड़ ली?
1: बिल्कुल बिल्कुल। वहां से आने के बाद 6-7 महीने मैंने थोड़ा और काम किया, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट में था। उसके बाद मैंने अच्छे से अपनी जॉब छोड़ी, पूरा अपना क्या बोलते हैं उसको, कौन सा पीरियड होता है वो,
0: नोटिस पीरियड
1: सर्व करके मैंने नौकरी छोड़ी और फिर मैं अपनी म्यूजिक जर्नी मैंने स्टार्ट करी।
0: आपने अभी नैशविल की कहानी सुनाई हमको
1: जी,
0: तो एक गाना फिर इंग्लिश में भी हो ही जाए।
1: इंग्लिश में मैं वही गाना सुनाता हूँ आपको जो मैंने
0: बिल्कुल, वहां बिल्कुल, गाया था।
1: बिल्कुल, ना?

0: थैंक यू।
1: अब मैं समझा कि वहाँ पर आपको क्यों उस आदमी ने बोला कि भैया अपनी गाड़ी घुमाओ। आप म्यूजिक के फील्ड में इतने टाइम से हैं और काफी तरह के गाने आपने सुने होंगे, गाए भी होंगे, और इतने बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं इस म्यूजिक की फील्ड में।
0: हाँ जी,
1: तो आपका भी जरूर कोई ना कोई रोल मॉडल रहा होगा।
0: हाँ जी, मतलब मेरे तो बहुत सारे रोल मॉडल्स रहे, क्योंकि मैंने हर एक आर्टिस्ट से बहुत कुछ सीखा है। हर एक आर्टिस्ट की जो चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, वो ग्रैब करने की मैं कोशिश करता हूँ। बहुत सारे वेस्टर्न आर्टिस्ट को मैं सुनता हूँ, एल्विस प्रेस्ली हैं, बीटल्स बैंड है, ठीक है, जॉन डेनवर हैं, ये तो हमारे वो हो गए। बाकी हमारे जो इंडियन वो हैं, किशोर कुमार जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, 90s का किड हूँ, तो अपने कुमार सानू जी, उदित नारायण जी, इन सबको सुन के बड़ा हुआ। और मेरे जो पसंदीदा अभी के जो हैं, मतलब जिनको मैं अभी तक मानता हूँ, हरिहरन साहब हैं, सुखविंदर सिंह, उनके जैसी आवाज किसी की नहीं है, मतलब वो डिफरेंट है। और आज के दौर में अगर बात करें तो अरिजीत की टक्कर के सिंगर तो कोई है नहीं, आप सबको पता है और ये सब मानते भी हैं, क्योंकि वो उनका ऐसा जॉनर है कि वो मतलब कोई भी गाना गा सकते हैं और विद दैट ईज वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा है, तो मतलब इंस्पिरेशन मैं हर जगह से लेता हूँ, ऐसा नहीं है। सोनू निगम सर है ना,
1: उनकी जैसी आवाज भी,
0: उनकी भी आवाज जैसी कोई नहीं है,
1: कोई आवाज नहीं है।

0: रेडियो।
1: जिंदगी में कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस उसको करने का तरीका कुछ अलग सा होना चाहिए। आप उस काम को कितनी शिद्दत से करते हैं, कितना क्रिएटिव तरीके से करते हैं, ये जरूरी है। और किसी भी काम को करने से पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। अगर खुद पर विश्वास हो तो वो काम फोकस के साथ होता है। सोचो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में कभी आपके साथ हुई हो बचपन में, स्कूल टाइम में, जहां हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने काम में होता था, फिर चाहे वो कोई खेल क्यों ना हो। इसीलिए आप कोई भी काम कर रहे हो तो फोकस के साथ करें।

0: जब ऐसे म्यूजिक की फील्ड में हम जाते हैं या कोई भी इंसान एंटरटेनमेंट की फील्ड को चुनता है तो इनिशियल डेज में काफी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आपके क्या वो चैलेंजेस थे?
1: मेरी लाइफ के तो बहुत बड़े चैलेंजेस थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक वेल सेटल्ड जॉब में था, मुझे बहुत अच्छा ऑफर भी था, सैलरी भी अच्छी थी, जो कि हर माँ बाप को चाहिए होती है कि चलो बेटे को पढ़ाई करवाई है तो बहुत अच्छे से ये काम भी कर रहा है। तो उस समय ये डिसीजन लेना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, पर दिल से तो करना था, दिल तो मान नहीं रहा था कि अब नौकरी तुमसे होगी नहीं। तो जब मैंने नौकरी छोड़ दी थी तो मैंने 6 महीने तक अपने घर पे नहीं बताया था, मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि ये, मतलब क्योंकि मैं दिल्ली में था तो घर वालों को कोई आइडिया नहीं था इसने नौकरी छोड़ दी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने जयपुर से शुरुआत करी, तो 6 महीने मैंने जयपुर में शोज करे और वो वीकेंड पे मेरे कुछ मैं अपने फेसबुक में या इंस्टा पे पोस्ट कर देता था, तो घर वालों को लगता है चलो सैटरडे संडे इसकी छुट्टी होती है तो ये अपनी
0: शौक पूरा कर रहा है।
1: एग्जैक्टली। पर जब मैं 2019 में वापस आया और जब मैंने बताया घर वालों को कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, तो आपको, आप जानते ही हैं इंडियन पेरेंट्स थोड़े से, तो बिल्कुल खफा हो गए मुझसे। काफ़ी समय तक मेरे से बातचीत नहीं हुई, बातचीत भी नहीं करी, मुझे रोज समझाते थे ये क्या डिसीजन ले लिया तुमने इस एज में, हम तो सोच रहे थे तुम सेटल हो गए हो, तुम्हारी शादी करवाएंगे। पर नहीं, मैंने सोचा था जो करना है तो अब करना ही है, क्योंकि दिल में एक बार ही ठान लिया था कि अब तो भाई म्यूजिक ही करना है और इसके अलावा मैं कुछ और कर नहीं सकता क्योंकि मैं इसी चीज में अच्छा हूँ। तो बस डिफिकल्टी यही थी कि घर वाले मान नहीं रहे थे, तो बहुत टाइम लगा उनको समझाने में। फिर एक डिफिकल्ट टाइम और आया था, वो तो सबकी जिंदगी में ही था, जब कोविड का टाइम आया था तो आपके पास कोई लाइव शोज की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो उस समय काफ़ी तगड़ा झटका लगा था। उस समय एक बारी के लिए दिल में ख्याल भी आया था कि यार ये गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कि अभी अगर नौकरी में होता तो कम से कम सैलरी तो आ रही होती। पर वही है कि जैसे कहते हैं लोग कि जहाँ चाह है वहीं राह है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: मुझे जूम शोज बहुत मिले, मैंने घर में बैठे बैठे शोज करे उसके बाद, सो आई यूज टू गेट पेड थ्रू यू नो जहाँ पे जूम मीटिंग कर रहे हैं लोग, तो जूम मीटिंग में लोग मुझे कहते थे कि आपके पास सेटअप है, मैंने कहा बिल्कुल है, तो मैं उनके लिए एक एक घंटे परफॉर्म कर रहा हूँ, वो घर में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। मजा कम आता था लेकिन उनके लिए वो फन था और मेरे लिए मेरी मतलब रोजी रोटी टाइप आप कह सकते हैं। तो कोविड के टाइम पे मैंने जूम में बहुत शोज करे तो ठीक ठाक चला, बहुत अच्छा समय भी नहीं था पर मैं ये कहूंगा कि बहुत बुरा समय भी नहीं था, पर कोविड के टाइम पे मुझे टाइम बहुत मिला अपने आप पे काम करने में, तो ये पॉजिटिव पार्ट था। उसके बाद तो मैंने इतने गाने प्रिपेयर कर लिए कि मतलब अब मेरे पास गानों की कमी नहीं है।
0: बैंक भर लिया
1: मैंने अपना। एग्जैक्टली।

मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: अभी हम लाइव रिकॉर्डिंग्स की बात कर रहे थे, लाइव शो की बात कर रहे थे
1: जी।
0: तो एक स्टूडियो में रिकॉर्ड करना
1: जी।
0: और लाइव शोज करना
1: जी,
0: काफी डिफरेंस होता है
1: कि
0: आप एक कॉन्सर्ट में या लाइव शो में आप मिस्टेक नहीं कर सकते।
1: ना ना बिल्कुल भी।
0: तो लाइव शो करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं?
1: लाइव शो करने के देखिए डिसएडवांटेज तो मैं कुछ कहूंगा नहीं कि कुछ है, क्योंकि लाइव शोज में एक तो आपको क्राउड रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। आप जब आप परफॉर्म कर रहे हो और आपके सामने कोई क्राउड ही नहीं है तो आपको वो फील ही नहीं आएगी, यू नो। अब हम गाते ही हैं लोगों के लिए और अपने लिए भी गाते हैं, ऐसा नहीं है, बट जब लोग सामने बैठे हों और थोड़ा म्यूजिक को अप्रिशिएट कर रहे हों, जो सुनने वाले लोग हों, तो उनके सामने परफॉर्म करने में बहुत मजा आता है। और जैसा आपने कहा कि क्या डिफरेंस है स्टूडियो और लाइव में, स्टूडियो में आप रीटेक ले सकते हैं, लाइव में आप रीटेक नहीं ले सकते, तो ये पार्ट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अपने बैकग्राउंड के बारे में आप थोड़ा सा और बताएं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड फ्रॉम स्कूल टिल योर कॉलेज क्या क्या आपने कराया?
1: स्कूल मेरा केंद्रीय विद्यालय हाथीबड़कला से है, फिर मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, बीएससी मैंने करा है आपका डीएवी कॉलेज से, फिर आफ्टर डीएवी पीजी 4 साल मैंने नौकरी करी है। मैंने आपको जैसे बताया कि 7-8 साल मैंने नौकरी करी है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में करी है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में करी है। पहले मैं शिपिंग कंपनी में था, फिर मैं एक स्टाफिंग कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल कंपनी थी गुड़गांव में, वहाँ पे था। तो 4 साल वहाँ जॉब करने के बाद 2013-14 में मैंने MBA किया है, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी से मैं MBA हूँ। फिर मैंने बिग बाज़ार में एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम किया है, जो बिग बाज़ार यहाँ देहरादून में आया था। फिर मैं वापस नोएडा मूव हुआ, दिल्ली और नोएडा, तो EXL सर्विसेज में काम किया है। फिर ये सब जब हो गया, क्योंकि किसी भी कंपनी में मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि मैं शायद बना ही म्यूजिक के लिए था, तो इसलिए मैं हर 2-2 साल में स्विच कर लेता था फॉर द ग्रोथ एज वेल। पर वही है कि काम में, किसी भी काम में मुझे मजा नहीं आया, और जब से मैं म्यूजिक में आया हूँ फिर मुझे और कुछ करने का मन ही नहीं करता।

0: बिल्कुल, काम में मजा आना ना बहुत जरूरी है।
1: बहुत जरूरी होता है।
0: तो जब गौतम थापा एक स्टूडेंट था या एक नॉर्मल कॉलेज का लड़का था
1: जी,
0: और जब अब आप एक फेमस सिंगर बन गए हैं, शहर में गाते हैं, लोग आपको जानने लग गए हैं
1: जी,
0: तो लोगों के नजरिए में कुछ बदलाव देखते हैं क्या आप?
1: बदलाव एज इन ऐसा कोई बड़ा बदलाव तो नहीं है। अब स्टूडेंट लाइफ में तो आपको बस आपके फैकल्टीज जानते हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड्स जानते हैं, कॉलेज के लोग जानते हैं। स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने जब ग्राफेस्ट होता है तो परफॉर्म किया है, तो कॉलेज में थोड़ा बहुत फेमस हो गया था। और जब से अब यहाँ देहरादून में करता हूँ तो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हूँ मैं, बट हाँ थोड़ा बहुत थोड़े लोग जानते हैं अब देहरादून में कि हाँ कि गौतम थापा इस क्लब में परफॉर्म कर रहा है, तो चलो हम इस क्लब में चलते हैं आज सुनने के लिए।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और वॉक टॉक रेडियो में मैं हूँ आपके साथ किरण। वॉक टॉक रेडियो पर जो हमारी पॉडकास्ट सीरीज है उसमें बहुत सारे अलग अलग लोग अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेकर और अपने बहुत सारे थॉट्स को लेकर हमारे साथ

0: बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और इसी पर आज हमारे साथ हमारी पॉडकास्ट सीरीज में मेरे साथ इस वक्त जो स्टूडियो में मौजूद है उनके बारे में आपको बता दूं। इनका नाम है कृतिका गुरुंग और एक बहुत ही प्यारा सा स्टार्टअप इनका है जिसका नाम है एवांते। तो सबसे पहले कृतिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉक टॉक रेडियो पर।
1: थैंक यू सो मच किरण फॉर हैविंग मी।
0: कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आकर?
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: रेडियो का मतलब क्या है आपकी लाइफ में?
1: रेडियो का मतलब है टू कनेक्ट पीपल थ्रू आर वॉइसेस, थ्रू आर स्टोरीज, थ्रू आर जर्नीज।
0: हाँ, सो कृतिका, सबसे पहले जो है मैं आपसे ये पूछूंगी कि कृतिका गुरुंग कौन है, क्या करती है एंड क्या करना चाहती है लाइफ में आगे, क्योंकि जो हमारे लिसनर्स सुनेंगे उन्हें आपके बारे में भी कुछ नहीं पता।
1: सो कृतिका गुरुंग, शी इज अ ऑर्डिनरी गर्ल who loves shopping, who loves creativity, and छोटे से शहर से है, छोटी सी जगह से है, डोईवाला।
0: हाई फाई, मैं पासी से हूँ,
1: पास पास वाली जगह से है। और मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश ऑनर्स, देन एम ए इंग्लिश, 2021 में कंप्लीट हुआ है। सो लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, खाली थी और क्लासेस भी ऐसी चल रहे थे, ऑनलाइन चल रहा था, तो क्या हुआ कुछ ना कुछ चलता रहता था क्रिएटिविटी ना, कि क्या किया जाए, मतलब कुछ ना कुछ लाइक स्क्रैप बुक वगैरह हो गया या फिर कार्ड्स बनाना, ये सारी चीजें मुझे पहले से बहुत पसंद था। एकदम से माइंड में क्लिक हुआ कि एक आईडी बना लेते हैं, तो फिर माइंड में आया कि चलो स्क्रंची से स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रंची से स्टार्ट किया मैंने, एंड उस टाइम पे मेरे जो जूनियर्स रहे हैं कॉलेज के इंग्लिश ऑनर्स के बैच के, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे ना।
0: कैसा सपोर्ट?
1: उन्होंने काफी ज्यादा पोस्ट वगैरह शेयर किया, खरीदा मुझसे काफी स्क्रंचीज, तो मेरे लिए वो काफी मोटिवेटिंग था उस टाइम पे ना। अगर आप कुछ सामान बना रहे हो या फिर कुछ आपने लाके रख दिया दुकान में, आपने दुकान भी खोली, कोई खरीद ही नहीं रहा है, कोई कस्टमर ही नहीं है, तो एक बहुत ज्यादा ना डीमोटिवेशन टाइप का हो जाता है आपके लिए। हाँ, लेकिन आपने कुछ स्टार्ट किया एंड लोग आपको
0: अप्रिशिएट
1: कर रहे हैं, आपको आगे वो कर रहे हैं, फेमस टाइप का कर रहे हैं थोड़ा बहुत छोटा मोटा करके, लेकिन हाँ वो काफी मेरे लिए उस टाइम पे मैटर करता था, उस टाइम पे अभी भी मैटर करता है। तो ऐसे स्टार्ट हुआ एवांते का जर्नी।
2: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: रेडियो।
1: कभी भी हौसला मत खोना ए मुसाफिर, क्या पता मंजिल ने भी तेरे ही हौसलों का बहाना लिया हो।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: सो जब ये स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बिल्कुल डिफरेंट है ना, वो बिल्कुल पढ़ाई वाला है एकदम, और ये जो आप काम कर रहे हो एवांते के अंदर वो एक क्रिएटिव साइट है आपका, तो उस टाइम पे घर वालों को ऐसा नहीं लगा कि क्या कर रहे हो, कॉलेज तो किसी और चीज की फीस हम दे रहे हैं और तुम जो जो चूज कर रही हो, काम कर रही हो, वो कुछ और ही है, तो उनका क्या रिएक्शन था उस पे?
2: बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफरेंट, बट मेरा ये है कि अगर मैंने कुछ चीज़ स्टार्ट किया है या फिर कुछ ठान लिया ना, फिर फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी बोले, तो करना है तो करना है, चाहे मैं रात के 2 बजे तक करूँ, चाहे 3 बजे तक करूँ, और मॉर्निंग में उठ के और फिर मुझे कॉलेज भी जाना पड़े ना 7 बजे, तो चलता है मेरे लिए ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है।
1: बड़ी बिंदास था आपका जो थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे, था
2: ये चीज माइंड में थी तो फिर करती गई। हाँ, पेरेंट्स बोलते थे कि कुछ जॉब वॉब का देख लो, बाकी साइड बाय साइड में अपना पढ़ रही थी उस टाइम पे, और कॉलेज भी फिर खत्म हो गया, और कॉलेज में कुछ प्लेसमेंट का भी कुछ आया नहीं उस टाइम पे, तो एक तरह से ना माइंड में थोड़ा डिप्रेसिंग भी हो रहा था वो साइड बाय साइड, बट एवांते मेरे लिए ना एक वो था खुद को हील करने का ना, हम किसी न किसी चीज के थ्रू खुद को हील करते हैं, कोई घूम के करता है ना, और तो मेरे लिए वो थी क्रिएटिविटी, तो उसी में मैं बिजी रहती थी, कभी उसका कंटेंट बनाने में, कभी उसको यू नो बनाने में उसी चीज को, या फिर उसको पिक्चर्स क्लिक करने में, फिर सोचने में कि अरे इसका क्या नाम रखना चाहिए, इस वाली स्क्रंची का इसको कैसे हम डिफरेंट तरीके से यू नो प्रेजेंट कर सकते हैं, और कैसे रीच बढ़ाया जाए, तो माइंड में वो चलता रहता था। तो मैंने ज्यादा ना उस चीज को, जो चीज है नहीं उस चीज को मैंने ना ज्यादा उस टाइम पे सोचा नहीं कि जॉब नहीं है करके, तो इसी सोच के यू नो लेके मैं आगे बढ़ती गई, तो ऐसे ही अब 2 साल भी हो गए एवांते को।
1: हाँ, मतलब वो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उस बात का दुख नहीं मनाया, बट ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने अपने आप को टाइम दिया उस टाइम के लिए कि कोई बात नहीं, वो कर रहे हैं तो करने दो, मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी।
0: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: या तो दिन आपके अनुसार चलता है या आप दिन के अनुसार चलते हैं। जो प्रेरित होना चाहते हैं वो किसी भी चीज से हो सकते हैं। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। शानदार जीत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपनी काबिलियत बस आप ही पहचान सकते हैं।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: Walk Talk Radio.
1: कि जब आपके घर वाले आपका सपोर्ट करते हैं, उसके बाद जो बाहर वाले होते हैं ना, वो बहुत बड़े हमारे क्रिटिक्स बहुत सारे आते हैं इधर उधर से, कुछ कहते हैं, लेकिन कई लोगों को ना वो चीज तोड़ देती है.
2: मैंने आपको बताया मैंने स्क्रंची से स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, मार्केट में जाके फैब्रिक चूज करती थी. अगर आप कुछ अपने लिए लहंगा भी बना रहे हो या फिर नॉर्मल एक सूट या कुर्ती ले लो, तो आप कुछ फैब्रिक देख के, लड़के को होता है ना, खुद को इमेजिन कर लेती हो कि इसका ये वाला इस फैब्रिक का कि ओके इस फैब्रिक में और इस प्रिंट में और इस एम्ब्रॉयडरी में ये स्क्रंची बहुत अच्छी लगेगी.
1: एस्थेटिक सेंस.
2: हाँ, तो वो चीज था पहले से ना, बट सुनने में ये आता है कहीं से, पता लगता है कि ये ना बचे हुए कपड़ों का बनाती होगी ये लड़की, उन्हें पता भी नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं एवांथे में चल क्या रहा है. बट बातें कैसे बनाएंगे ना फिर, अगर देख लेंगे तो. तो ये चीज सुनने में आती थी, तो लगता था कि भाई क्या ही, क्यों ही बोलना ऐसे लोगों से. सोचने दो उन्हें जो सोचना है, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो. सो लेट इट बी, आप जाओ, आप जिसको जो बातें करनी है करो, मैं ऐसी खुश हूँ, मैं ऐसी कर रही हूँ.
1: तो उस वक्त, अब ये तो रही क्रिटिसिज्म वाली बात, एप्रिसिएशन की बात करूं या फिर कॉम्प्लीमेंट्स की बात करूं आपके वर्क को लेके, लेकिन जब किसी का कॉम्प्लीमेंट आता है, जब कोई कह देता है यार बहुत अच्छा कर रही हो, तो बड़ा अच्छा लगता है, तब सेटिस्फेक्शन होता है, हाँ मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ. तो वो कॉम्प्लीमेंट्स कौन कौन से थे, कहाँ से आए हो?
2: जब स्टार्टिंग में क्या हुआ, नॉट स्टार्टिंग, लास्ट ईयर की बात है, जब मैंने एक मैम है दैट सिली वॉन्डरर करके, उनका इंस्टाग्राम में नेम है मिनर्वा मैम, उनका नाम मिनर्वा है. तो उस टाइम पे मैंने उनको कोलैबोरेशन के लिए पूछा था, तो उन्होंने पेज वगैरह चेक किया, उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कोलैबोरेट किया. और उनके मतलब जब उन्होंने कोलैबोरेशन किया तो काफी फॉलोवर्स भी आए, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया उस चीज को ना, काफी अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया अपने कोलैबोरेशन वाली रील पे. तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा ना एक माइलस्टोन टाइप था. अच्छा, उस टाइम पे ओके. और उसके बाद चीजें काफी अच्छी होने लगी, यू नो, फैमिली फ्रेंड्स जब कुछ भी गिफ्ट विफ्ट भी हो, छोटी मोटी चीजें वो मेरे से ही आके पैक करवा रहे हैं, सब ले रहे हैं, तो मेरे लिए काफी वो था, वो ओवरवेलमिंग था काफी कि ओके नाउ इवांते इज देयर फर्स्ट चॉइस, आई एम डूइंग समथिंग, ठीक है सही चल रही हूँ.
1: ओके.
0: वॉक टॉक रेडियो. Tune in for a better life.

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो।
1: जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हालात कैसे भी हों, वक्त अच्छा हो या बुरा हो, अगर आप हंसकर मुश्किल का सामना करते हैं तो यार मुश्किल भी एक दिन शर्मा के भाग जाएगी।
0: वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो।

0: Walk Talk Radio.
1: आपने अभी कोलैबोरेशन की बात करी और अगर मैं बोलूं कि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना अपने आइडिया से एक स्टार्टअप किया है और सोच रहे हैं कि उसको एक एक उस जगह तक पहुंचाएं जहां तक वो चाहते हैं, तो सोशल मीडिया की जहां तक मैं बात करूं एंड क्योंकि आप एक यूथ हो तो आप बता सकते हो कि सोशल मीडिया कितना हमारे लिए, हमारे मेंटल पीस के लिए खराब भी है और अगर हम उसको अच्छे से इस्तेमाल करें, उसका सही इस्तेमाल करना जाने, तो वो हमारे लिए एक एडवांटेज भी हो सकता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस है?
2: आई से कोलैबोरेशन को लेके बोला ना आपने, लाइक उस टाइम भी मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले, जैसे मैंने आपको मिनर्वा मैम का बताया, और भी है दो तीन जो बहुत सपोर्ट करते हैं, जो रील्स वगैरह शेयर करते हैं, पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं, जिनकी ऑलरेडी मतलब केज में है फॉलोवर्स। इस बीच ऐसी चीजें भी हुई है जब मैंने एल से गलत लोगों के साथ कोलैबोरेट कर लिया वो भी पेड कोलैबोरेशन, फर्स्ट और लास्ट टाइम था वो, जहाँ पे मैंने अपने प्रोडक्ट्स भी बहुत दिए, ठीक है, और पेड कोलैबोरेशन था, पैसे भी दिए, लेकिन ना उसमें एक फॉलोवर आया ना उसमें कोई कुछ रिव्यू वगैरह इतना कुछ था नहीं, क्योंकि उन्होंने अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं किया, और वो भी चीज बार बार बार बार बोलने पे। एंड जब आप बार बार किसी को बोलते फिर वो बोलते हैं कि यू आर रेस्टलेस, व्हाई यू आर बीइंग सो रेस्टलेस। तो हम बोलते हैं ना, जैसे अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, आई नॉट से कि वो बुरी है या वो, लेकिन जब आप कुछ काम कर रहे हो, आप उस चीज पे प्रोफेशनली उस चीज को डील कर रहे हो, तो भले वो स्मॉल बिजनेस हो या बिग बिजनेस हो, आप उस चीज को जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपको पेमेंट मिल चुकी है, तो आपको वो चीज भी उतनी ही श्रद्धा से करनी चाहिए जितनी आपने बाकी चीज को किया है। एंड वो चीज उन्होंने की नहीं, तो वो बहुत डिसहार्टनिंग था मेरे लिए। तो ये चीज भी आई डोंट नो कि कितनी आनी चाहिए उस सोशल मीडिया में, लोगों को कैसे पता लगना चाहिए कि हाँ कौन फेक है, कौन ऑथेंटिक है, कौन रॉ है, और कैसे कर रहा है अपनी चीजों को। सबका अपना अपना वे है, बट इन सब चीजों में बिजनेस ओनर्स को मैं यही बोलूंगी कि बहुत सोच समझ के स्टेप ले जब हम कोलैबोरेशन वगैरह करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर्स कैसे आते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, एक टाइम पे एक वो हाइट पे भी चले जाते हैं कि बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, बट फिर वही ना, जैसे हम बिजनेस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं,
1: हाँ,
2: बहुत ऊपर भी जाते हो तो फिर उसी हिसाब से नीचे भी आते हो।

0: तो वो बैलेंस करना भी है. तो जब हम किसी पे स्पेंड कर रहे हैं कोलैबोरेशन वगैरह में, तो सोच समझ के उतना आपको रीच आना भी चाहिए जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं.
1: Walk Talk Radio, tune in for a better life.

0: Radio.
1: A lion will never have to tell you that he's the king of the jungle. The eagle will take its flight knowing it owns the sky. And the shark will go about casually in the ocean just making its presence. You know, friends, it's never that noise you should make that will prove your value and people will hear it. But it is the skill, it's a hardship, it's the work which you might be doing constantly and people are noticing it. You don't need to prove yourself to the other people who will always try to pull you down. But you need to continuously work on yourself. Walk on the road marked by you. That consistency and persistence is needed in your this journey. The success ultimately comes. People would follow you. People would praise you. But people would praise you for your hardship, your determination. So stop seeing here and there what people are thinking about your work, whether they're praising or pulling you down. Just go ahead.
2: हाय, मेरा नाम शुभ बिश्नोई है. मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड. आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर. आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो तीन चीजों की अगर हम बात करें, पेड़, पानी और फार्मिंग के लिए लैंड. तो पेड़ हमें देते हैं ऑक्सीजन, बिना पानी के कोई जिंदगी नहीं. और फूड की बात करें तो बिना फार्मिंग के कोई फूड नहीं. लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काटा जा रहा है, नदियों को नाला बनाया जा रहा है और खेतों पे कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये सब बनाई जा रही हैं. लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज हमारी जिंदगी के लिए और हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए. बिना नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ना आगे कभी जिंदगी होगी, ना ये कभी कोई जानने के लिए बचेगा.

0: एग्जाम्पल आज हिंदुस्तान में राजस्थान और महाराष्ट्र हैं, जहाँ पे वापस से कुएं खोदे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वाटर टेबल कम हो रही है और लोगों को पानी की आगे फ्यूचर जनरेशन में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। एक और अगर हम बात करें कहीं पे नेचुरल रिसोर्सेज की, तो वो माइनिंग की आती है। अब आप देखेंगे कि अगर कहीं पे भी माइनिंग होगी, चाहे वो कोल की हो चाहे क्रूड ऑयल की हो, वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरियाज और कहीं पे भी रिजर्व एरियाज में होती हैं। तो ये एक और बात ये होगी कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अगर माइनिंग होगी तो जंगल के पेड़ कटेंगे, जितनी भी हमारी माइनिंग के लिए डिगिंग की जाएगी, हमें जितनी भी हमारी मशीन्स लगी जाएंगी, वो किसी ना किसी कोल या पेट्रोल या डीजल या किसी ना किसी चीज़ पर चल रही होगी, उसके तहत हमें और पॉल्यूशन बढ़ेगा, डिफॉरेस्ट्रेशन होगा, बर्निंग ऑफ ऑयल होगा, और साथ ही साथ जब हम इस क्रूड ऑयल को माइनिंग करके कुछ भी कहीं भी ले जाएंगे, फैक्ट्रीज में उसे रिफाइन करने के लिए पोल्यूशन और होगा, और लास्ट में हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं, चाहे पेट्रोल हो, हम हर दिन ट्रैफिक में जाते हैं, कहीं ना कहीं हम सभी को जाना होता है, वहाँ पे भी पोल्यूशन होगा। पोल्यूशन सिर्फ एक व्यक्ति के वजह से नहीं होता है, पोल्यूशन हम सब कर रहे हैं और हम ना चाहते हुए भी उसका हिस्सा बनते हैं। अगर आप कहीं पे भी आ, चाहे आप अपने उत्तराखंड के देहरादून की बात करें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आप देखेंगे लोगों को एक ही ऑफिस में जाना होता है, लेकिन वो फोर व्हीलर से एक फोर व्हीलर में एक व्यक्ति बैठा होता है, तो उससे क्या पोल्यूशन बढ़ता नहीं है? पार्किंग की दिक्कत आती है, हर किसी को गर्मियों में छाए में पार्किंग और सर्दियों में उनकी गाड़ी गर्म रहे तो धूप में पार्किंग चाहिए होती है। नेचुरल रिसोर्सेज की बातें सिर्फ बात ना रहे, हम इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट और बच्चों के फ्यूचर जनरेशन का इंपॉर्टेंट हमें दिमाग में रखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग करना है। हम सब सोचते हैं कि हमें अपने घर को बचाना है, घर को साफ रखना है, तो सबसे पहला घर अगर आपको मानना है तो आपका सबसे पहला घर ये धरती माता है, ये धरती है मदर नेचर जिसे आप कहते हैं। आपका घर सिर्फ चार दीवारी तक सिमटा हुआ नहीं है, ये सोचिए कि आप किस तरीके से नेचर को सेव कर सकते हैं और पर्यावरण के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए आप कुछ छोड़ के जा सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: ये है वॉक टॉक रेडियो, चलते रहिए अपने रास्ते पर, चलने में माहिर बन जाइए, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे।
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, घर, बस में चलते हुए, सड़क पर चलते हुए, कहीं भी, कभी भी, क्या पता कौन हमसे किस बात पर बुरा व्यवहार करके चला जाए। तो जवाब में हम क्या करें? दोस्त अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। तो बुरे के लिए हम भी क्यों बुरा बने। आप जैसे हैं वैसे ही रहे और ऐसे ही बातों के लिए सुनते रहे वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: अगर जिस दिन आपने खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर दिया ना, तो उसी दिन से आपने लाइफ को जीना छोड़ दिया। आपकी लाइफ में आपकी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है, लेकिन एक बार जब आप दूसरों को खुद से कंपेयर करना शुरू कर दोगे तो आप दूसरों के हिसाब से चलना शुरू कर दोगे। आपको आपके पास जो भी है आप खुश नहीं रहोगे, आप हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते रहोगे, जिसके चलते आप कभी भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। लाइफ आपकी या सपने आपके हैं तो फिर रिमोट भी आपके हाथ में होना चाहिए। इसलिए दूसरों के बारे में सोचना या फिर खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो।
1: Walk Talk Radio। नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर, और अब हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे, जॉइंट फैमिली। तो हिंदुस्तान बहुत चीजों के लिए जाना जाता था, जिसमें से तीन महत्वपूर्ण चीजें थी हमारी, वेल्थ, हेल्थ और फैमिली। जब ब्रिटिशर्स या इन्वेडर्स आए, वो हमें लूट के, हमारी सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को लूट के चले गए, जहाँ पे हमारी वेल्थ पे बहुत प्रभाव पड़ा। जो हमारी हेल्थ थी, हमारी आयुर्वेद और योगा, जो पूरे वर्ल्ड या पूरे विश्व में बहुत आज भी प्रसिद्ध है, उसको खत्म करने के लिए हमें जो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपनी इंग्लिश दवाइयां हमारे ऊपर थोपी गई। और तीसरी चीज, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी फैमिली, ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, जॉइंट फैमिलीज, और प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि सबके दिमाग में कहीं ना कहीं एक तरीके से वेस्टर्न कल्चर की सोच डाली जा रही है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए पांच लोग हैं, तीन भाई और दो बहनें। अब उनके हस्बैंड्स भी होंगे, वाइफ्स भी होंगी, और उनके बच्चे भी होंगे, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये 25-30 या उससे आगे का, ज्यादा का एक परिवार बन जाता था। अब हर एक व्यक्ति की, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, उसकी एक ना एक व्यक्ति से बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती थी, चाहे वो भाई की बहन से हो, चाहे एक बच्चे की ताऊजी से या बुआ से या चाचा से, एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी और खूबसूरत होती थी, जहाँ पे वो सब कुछ खुल के शेयर कर देते थे। खूबसूरती तो जॉइंट फैमिली की एक और है, वो कि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा सबके लिए इक्वल होता था, कोई अलग नहीं, कोई अपना नहीं, सब अपने होते थे, सब इक्वली ट्रीट किए जाते थे। अगर घर में शादी भी होती थी तो कुछ ना कुछ करके शादी इतने प्यार और आराम से निपटती थी कि किसी एक व्यक्ति पे बोझ ही नहीं आता था। लेकिन आज वही जॉइंट फैमिली टूटने लग गई है, फैमिली रिश्तेदारी में बदल गई है, जो सिर्फ आते हैं और थोड़ा बहुत काम करा के चले

0: जाते हैं।
1: तो क्यों ना हम अपनी भारतीय संस्कृति को इतना मजबूत रखें कि चाहे कुछ हो जाए, हम वो कॉन्फिडेंस और वो जितना भी हमारी स्ट्रेंथ थी वो कहीं जाने ना दे। तो क्या किया जाए कि अगर जॉइंट फैमिली नहीं है, उसे जॉइंट फैमिली फिर से बनाया जाए? तो मेरा मानना है कि महीने में 15 दिन में एक डिनर क्यों ना किया जाए, जगह बैठकर एक किसी के हर दिन घर चूज करके वहां पे जाया जाए, डिनर किया जाए, बॉन्डिंग की जाए, ताकि आपको शेयर करने के लिए आपके भाई बहन बने। दो लोग कहते हैं कि मेरे दोस्त नहीं है, मैं क्या करूं, तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। आई होप ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: वॉक टॉक रेडियो। कभी भी हौसला मत खोना ए मुसाफिर, क्या पता मंजिल ने भी तेरे ही हौसलों का बहाना लिया हो।

नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर, और अब हम बात करेंगे कि आप सभी खुश रहो। तो खुशी है क्या? खुशी एक मन में होने वाली एक सुखद अनुभूति है, एक फीलिंग है जिसमें आप बस सुखी हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने रावण के बारे में सुना होगा। रावण के पास क्या कुछ नहीं था, सब कुछ था, लेकिन तब भी वो सुखी नहीं था। उसने सीता माता का अपहरण कर लिया। और दूसरी ओर आप दूसरे पहलू को देखें तो हमारे प्रभु श्री राम जो राजपाट वगैरह सब कुछ छोड़ के आ गए और एक छोटी सी कुटिया में अपने एक भाई के साथ वन में रहते थे। तो खुशी कोई चीज नहीं है जो आप कहीं से लेके आ सकते हैं। लोग पूछते हैं कि मेरे को खुश रहना है, मैं क्या करूं, मैं खुश कैसे रहूं? तो खुशी एक चीज नहीं है कि आप जाके दुकान से ले आए या मार्केट से ले आए, या फिर ये कोई लिविंग की स्टाइल नहीं है। खुशी तो तब मिलती है जब आप सुखी हैं, टेंशन नहीं है लाइफ में, जैसे हैं जो है उसके साथ आप सैटिस्फाइड है। था मैंने ये कहीं सुना था कि केमिस्ट्री में जैसे हमें पढ़ाया जाता था कि जब एटम या न्यूक्लियस कुछ टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसी तरीके से जब आप दुखी होते हैं, आप टूटते हैं कहीं से, आपका मन टूटता है तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है। तो अपने आप को थैंकफुल करिए कि आपकी जो एनर्जी है इसको आप सही जगह डाल के आप खुशी के माध्यम या खुशी के रास्ते जा सकते हैं। ये एनर्जी को आप नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुश होता है ना, उसकी अलग ही दुनिया होती है, वो उसी में मग्न होता है। अब एक स्टूडेंट या यूथ की लाइफ में एग्जाम्स एक बहुत बड़ी चीज होती है, कॉम्पिटिशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपने पूरी मेहनत की, आप खुशी से मेहनत कीजिए, और 1% को अगर जो चीज आप जिस लक्ष्य की तरफ आप जा रहे हैं वो नहीं हो पाए, तो ये सोचिए कि आपका प्रायोरिटी क्या थी। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी खुशियां थी। आपके पेरेंट्स के लिए भी आपका सक्सेसफुल होना जरूरी तो है, परंतु वो चाहते हैं कि आप खुश रहिए, वो पहली प्रायोरिटी रहती है। तो आप ये जान चुके हैं कि खुश रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बाकी सब छोड़ के आप खुशी की तरफ बढ़ेंगे तो आपके 10 दरवाजे और खुलेंगे। तो अब आप ये बताइए कि आप खुश हैं? क्या आपको खुशियां ढूंढनी जरूरी हैं? जो आपकी लाइफ जैसे है क्या उसमें सेटिस्फाइड नहीं है? जो लोगों को चीजें नहीं मिलती क्या आपके पास वो नहीं है? मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर अभी अपने मन में जरूर ढूंढेंगे, और इसका उत्तर आज जब भी आप ये सुन रहे हैं आज जरूर ढूंढिएगा। आई होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: रेडियो। कुछ बनना है तो अपने आप की तरह बनो, किसी और की तरह कोई ना कोई हर रोज यहाँ बन रहा है, तैयारी ही सफलता है।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। हम बात करने वाले हैं राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। आप ज्यादा नहीं, बस 20 साल पहले देखिए, जब मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था, पुराने लोगों को ज्यादा अच्छा फील होता था, क्योंकि जब फोन नहीं थे वो अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, उनकी अलग हॉबीज होती थी। लेकिन जब से फोन आया है, जब से हमारे पास सोशल मीडिया और इंटरनेट आया है, तब से हमें अनयूजफुल, फेक, मोल्डेड और फैब्रिकेटेड न्यूज और इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलती, और जिसमें हमें ज्यादातर हमारी जो मेन फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन्हें छुपा दिया जाता है। मेरा मानना है कि अगर सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, अगर इसका हम सही इस्तेमाल नहीं करें तो ये एक बीमारी है जो ड्रग से भी खतरनाक है। एक इंसान पूरे दिन सोशल मीडिया पे बस स्क्रॉल कर सकता है, बिना कुछ खाए, एक ही जगह पे बैठे हुए, एक ही पोजीशन पे बैठे हुए, बिना कुछ कंस्ट्रक्टिव किए वो बस सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर सकता है। इसका एक और एग्जांपल है, अगर आप किसी बच्चे को अपना मोबाइल दे दें और वो पूरे दिन बस उस मोबाइल पे गेम्स खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है, और आप शाम को रात में उससे जाके पूछिए कि आज आपने पूरे दिन फोन यूज किया, आपने आज क्या सीखा, तो आंसर आपको एक ही मिलेगा कि कुछ नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि सोशल मीडिया का जहाँ पे हमें सही उपयोग करना था, वहाँ पे हम उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट में सिर्फ गलत प्रभाव ही हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी की पहले से और आज में बहुत सारी चीज़ों में सुधार भी लाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एजुकेशन में बहुत हेल्प किया है। नेचुरल डिजास्टर्स होते थे, आपके पास सूचना पहुंच सकती है, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, सरकार लोगों के पास आराम से पहुंच सकती है, आपको सही गलत के बारे में बता सकती है, डॉक्टर कंसल्टेशन कर सकते हैं, बहुत कुछ जिंदगी में आसान हो गया है। इसी का अगर हम उदाहरण लें तो पहले अगर आपको ट्रेन की रिजर्वेशन करानी होती थी तो आप जाने के लिए तो यहाँ से कहीं जहाँ पे आप हैं वहाँ से करा सकते थे, लेकिन लौटने की रिजर्वेशन के लिए आपको एक चिट्ठी भेजनी होती थी जहाँ से आपको लौटने की रिजर्वेशन करानी है, वहाँ पे वो एक ट्रेन से जाती थी, दो दिन वहाँ पे अप्रूव होती थी, फिर एक ट्रेन से वापस आती थी। लेकिन आज आप विद इन सेकेंड्स आप बुक भी कर लेते हैं और उसे कैंसिल भी कर लेते हैं। आपको एक व्यक्ति, आपके माता पिता आपको सही दिशा और सही रोड दिखा सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए चॉइसेस नहीं बना सकते हैं। ये आपको चूज करना होगा कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है आज के लिए और कल के लिए, क्या आप उस सोशल मीडिया के माध्यम से या उसके सही उपयोग के माध्यम से आप अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप नेशन को कुछ वापस दे रहे हैं, जितना भी नेशन ने आपको दिया है क्या आप उसे घूम फिर के नेशन को भी कुछ दे रहे हैं, इस बात पे जरूर सोचिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: रेडियो।
1: खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी क्या रजा है। इसका मतलब है कि आप अपने आप को इतना ऊंचा कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि खुदा तुमसे खुद पूछे, तुम क्या चाहते हो भाई, क्या दूं तुम्हें।

नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। और आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेशन, जिसे आप पलायन भी जानते हैं। बाकी नहीं, हम अपने उत्तराखंड की बात करें जो 2000 में बनाया गया था। इसमें बहुत सारे रीजंस थे उत्तराखंड को बनाने के लिए, लेकिन उसमें से दो तीन रीजन ये थे कि उत्तराखंड एक छोटा स्टेट रहेगा, उसमें डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है और रोजगार मिलेगा, लोग पलायन नहीं करेंगे। लेकिन आज शहरी जिंदगी के आकर्षित होकर जो हमारे युवक हैं और अन्य लोग हैं उत्तराखंड के, वो पहाड़ छोड़कर शहरी जिंदगी जीने के लिए अलग अलग जगह जा रहे हैं। वो दिल्ली जाते हैं, अलग शहरों में जाते हैं और वहां जाते ही उनके सपने टूट जाते हैं। एक छोटा सा कमरा होता है, रोजगार के लिए छोटे मोटे उन्हें काम करने पड़ते हैं, वो लौट के नहीं आते हैं, जिंदगी में वैसे ही निकल जाते हैं। पहाड़ों पर होते हैं वो ये सोचते हैं कि शहर में उनको सैलरी अच्छी मिल रही है, वहां जाके उनकी कमाई अच्छी होगी। लेकिन वो एक चीज ये भूल जाते हैं कि शहरी जिंदगी में शहरी खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं, तो जितना वो पहाड़ों पे उन्हें मिल रहा था उतना ही उन्हें शहर में भी मिलता था। सरकार ने बहुत सारी नीतियां निकाली हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों के लिए, होम स्टे जैसी चीजें, छोटी मोटी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने, उन्हें प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बहुत सारी चीजें प्रयास करी हैं। अगर आप उत्तराखंड में ही रहें और उत्तराखंड को देखें, उत्तराखंड में क्या कुछ नहीं है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं उत्तराखंड में। केदारनाथ हमारे पास है, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, अन्य टूरिस्ट स्पॉट्स हमारे पास हैं, क्योंकि पहाड़ों पर आप पे खुद का घर है, खुद की जमीन है, खेती है, अलग तरीके के रिसोर्स हैं, दोस्त हैं, एक हिम्मत बनती है, कॉन्फिडेंस बनता है। लेकिन तब भी हमें वो शहरी जिंदगी, जो वेस्टर्न कल्चर हमारे दिमाग में बहुत पहले डाल दिया गया था, वो अभी तक निकला नहीं है। हमें अभी भी दिखावटी रूप में शहरी जिंदगी जाना है ताकि हम बोल सकें कि मैं शहर में नौकरी करता हूँ। लेकिन वो दुख और जो तकलीफें शहर के व्यक्ति को प्लान करके जो सहनी पड़ती हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो क्यों ना हम अपने यूथ को और आसपास जितने भी, उन सभी को समझाएं। आप खुद ये सोचिए कि क्या नहीं हो सकता है उत्तराखंड में। इसे हम देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं, और देवभूमि जिसे हम देवों की भूमि कहते हैं, तो क्या देवों का आशीर्वाद नहीं होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, इको पार्क स्टार्ट कर सकते हैं, होम स्टेज हो सकते हैं, होटल्स हो सकते हैं, अन्य चीजें हैं, आयुर्वेदों से जड़ी बूटियां हो सकती हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो आप इस बारे में सोचिए कि क्या पलायन करना जरूरी है, क्या उत्तराखंड में रोजगार नहीं बनाया जा सकता, नए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आइडियाज जागरूक नहीं किए जा सकते। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

हाय गाइज, माय नेम इज काव्या और मैं अपने बारे में क्या कहूँ, आई थिंक मैं एक रूरल एंटरप्रेन्योर हूँ जो गांव में रहती हूँ, इनफैक्ट जंगल में रहती हूँ। बहुत पसंद करती हूँ भारत की कला और एक विजन है मेरा कि मैं आदिवासी जनजाति को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना चाहती हूँ ताकि उनका हेरिटेज, उनका क्राफ्ट्स बना रहे, और यही कोशिश है। सो दैट इज़ वॉट आई एम एंड बाय एजुकेशन आई एम एन MBA ग्रेजुएट, और कभी नहीं सोचा था कि क्राफ्ट, ट्रैवल और इस तरह के गांव के इकोसिस्टम में काम कर पाऊंगी। आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स MBA बाय एजुकेशन, बट आई थिंक गॉड हैज़ बीन रियली ग्रेशियस। आई वॉज बॉर्न इन राजस्थान एंड नाउ आई लिव फ्रॉम अ फॉरेस्ट इन कोरापुट इन ओडिशा। दैट्स अबाउट मी।

वो कहते हैं ना, जो अपने सपनों के पीछे भागते हैं उनके सपने भी सपने बने रह जाते हैं। पर कोई बात नहीं, जो होता था अच्छे के लिए होता था, शायद वो वक्त ही गलत था।

0: रेडियो।
1: अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के हिसाब से बदल जाएगी, लेकिन अच्छा स्वभाव जीवन भर आपका साथ देगा। आपका स्वभाव ही आपको लोगों के करीब लेकर आता है और आपका स्वभाव ही आपको लोगों से दूर लेकर जाता है। गौरतलब करिए कि आपके होने से क्या लोगों में खुशी होती है, उनमें हैप्पीनेस आती है, लोग आप लोगों से चहक के महक के बात करना चाहते हैं या आपको देख के इग्नोर करते हैं, आपको देख के दूर चले जाते हैं। हमारे जीवन की हर कड़ी हमारे खुद के स्वभाव से जुड़ी हुई है। अपने स्वभाव को चेक करें और जब जहां जाएं अपने स्वभाव अपने व्यवहार से खुशियां बांटें।
0: वॉक टॉक

0: रेडियो।
1: सो आई थिंक क्राफ्ट पोटली का सफर कहाँ से शुरू हुआ, मैं ये कहूँगी 2009 के आसपास शुरू हुआ। हम सभी जब पहली जॉब में होते हैं, पहली सैलरी मिलती है, उसके बाद अपने पैशन खोजने लगते हैं, एंड तब ये इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था। तो आई थिंक तब मेरा ये था कि मुझे एक ऐसा, एंड तब क्राफ्ट के भी बहुत मार्केट प्लेसेस या ऑनलाइन स्टोर्स नहीं थे, तो तब मेरा ये सपना था कि यू नो आई हैव टू क्रिएट दिस वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग हैंडमेड इन इंडिया, ऐसा मैं सोचती थी। तो क्राफ्ट है और वो सब एक पोटली है, क्योंकि मेरी दादी यूज टू ऑलवेज कैरी दिस पोटली, एंड ऑलवेज शी वुड कैरी दिस मुरमुरे एंड सम नट्स, एंड मी बींग कमिंग फ्रॉम अ फैमिली वेयर माई फादर हैज 10 other brothers, sisters. So we were lots of kids, you know, in Rajasthan. So she would always have this and she would give something from her potli to kids. So I was like, okay, craft potli. And back then, wo domain mujhe mil gaya. To wo tab se raha. But uske baare mein, I did nothing. For 10 years, I kept working. And iski shuruaat aise hui ki pandemic aaya. And I think hum sabhi ne apne aap ke baare mein thoda kuch jana. I also understood ki jo main rural travel kar rahi thi for my fun, विद द जॉब ऑन वीकेंड्स, वो रियली ट्रैवल नहीं था। मैं वापस आती थी अपने कम्फर्ट जोन में, जॉब करती थी, सैलरी लेती थी। इट वॉज पैंडमिक दैट मेड मी रियलाइज कि इफ आई हैव अ पैशन देन मुझे उसका टेस्ट लेना चाहिए कि वो पैशन रियली है भी या नहीं, कैन आई लास्ट दैट। सो आई टुक दिस मैसिव जर्नी, इट्स कॉल्ड काव्या ऑन क्वेस्ट। थोड़ा सा अच्छा उसका गूगल अट्रैक्शन है, आप देखिएगा। सो आई टुक दिस विद महिंद्रा ऑन 2nd October. द आइडिया ऑफ काव्या ऑन क्वेस्ट वॉज दैट नॉन स्टॉप आई विल बी ऑन द रोड्स कवरिंग विलेजेस ऑफ इंडिया एंड टेलिंग देयर स्टोरीज विदाउट अ सिंगल डे ब्रेक, विदाउट फॉलिंग इल। आई थिंक आई वुड बी, आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट दिस, आई टुक 42 कोविड टेस्ट्स इन 6 months ऑफ टाइम। I started this journey on 2nd October 2020 after first pandemic and ended this journey in end of May 2021 and covered non-stop without staying in hotels or taking any guides, just covering crafts of India. Early in this journey, I figured ki while I am from Rajasthan, which is like a craft hub or Kutch, I thought that the focus has to be to Eastern India, जहाँ पे बहुत ज़्यादा culture है but ज़्यादा दिखाया नहीं जाता है। तो जब मैं वहाँ पे गई, I still remember, it was January 2021, I first entered the land of Odisha, and Odisha के हम जब भी बात करते हैं, we just know पुरी और भुवनेश्वर। I entered into a land where I saw James Cameron Avatar movie coming to life. मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि ऐसे rolling jungle

मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। अगर आपने सफर शुरू कर दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। तो अपने एम की तरफ बढ़ते रहिए। रुकना और वापस जाना, ये वर्ड अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए।

मैं शेयर करना चाहूँगी मेरा एंट्री इनटू विलेज, क्योंकि बहुत टाइम तक लोग ऐसे सोचते थे. अभी मुझे आई थिंक मैं अगस्त 21 में शिफ्ट हुई थी फुल टाइम इनटू अ फॉरेस्ट विलेज. तो लोग पहले ऐसा सोचते थे कि ये लड़की मिट्टी के घर में रहती होगी लेकिन ऐसा नहीं है. बट बहुत टाइम लगा मुझे, तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ है. जो भी आज हम काम कर रहे हैं बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू बिग स्टार्टअप्स. कई लोग मुझसे बहुत ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने एक साल में क्या किया. मैं देखती हूँ कि यू नो वन ईयर में बहुत सारे स्टार्टअप्स पिवट कर जाते हैं, बट हम लोगों का ग्रोथ हैज़ बीन वेरी स्लो एंड माइंडफुल. बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस उन सभी लोगों के लिए जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की ओर देखते हैं, कि आई थिंक स्लो ग्रोथ एंड एक्सेप्टेंस इज़ वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया. तो मैं ये बताना चाहूँगी ये इंसिडेंट कि मुझे 6 महीने लगे टू स्टार्ट माई फर्स्ट प्रोडक्ट. क्योंकि हो सकता है कि पहले आप किसी नोशन को लेके किसी गांव में आओ, वो चीज़ आपके लिए काम ही ना करे. पहले मैंने सोचा था कि मैं किसी ज्वेलरी पे काम करूंगी, बट वो नहीं वर्क किया. आई हैड नेवर थॉट कि मैं टर्मरिक पे काम करूंगी, यू नो. एंड उसके बावजूद भी लोगों गांव में जनरली भरोसा धीरे धीरे आता है, और जब एक बार आ जाता है फिर वो लोग आपके लिए कुछ भी कर देंगे. तो फॉर मी दैट टुक अ लिटिल टाइम. मुझे 6 मंथ्स लगा टू ब्रेक दैट आइस बोलें या हम केमिस्ट्री बोलें. एंड जब वो 6 महीने का पीरियड पास हुआ एंड इट वेंट थ्रू डिफरेंट प्रोसेस, चाहे आप टैटू कह लीजिए मेरी बॉडी पे, या आप जितने भी फेस्टिवल्स, या आप मेरा इंस्टाग्राम में स्टोरीज देखेंगे. तो आई थिंक इट टुक मी अ वाइल, बट जब वो एक बार वो हो गया देन इट वॉज अ इजी राइड फॉर मी, आई वुड से.

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो आपको हर तरह से तोड़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपकी खूबियों को नजरअंदाज करके सिर्फ आपकी कमियों को ही दर्शाएंगे। हो सकता है बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, लेकिन आपको सिर्फ ये सोचना है कि दुनिया का तो काम ही है आपको बार बार गिराना, और हमारा काम है ढीठ बनकर बार बार उठ खड़ा होना। इसलिए जब जब आपकी हिम्मत जवाब देने लग जाए, तो याद करिए अपनी उन तमाम खूबियों को जिनको आप जानते हैं, और करते रहिए कोशिश लगातार, और बनते रहिए बेहतर हर बार।
0: Tune in for a better life. Tune in for

yearning for a better life.

0: अरे सबके बस की बात नहीं है, छोटे शहर की लड़की है, एक्टिंग में कहाँ जा सकती है। ये सब बातों को अनसुना करके एक लड़की सपनों की नगरी मुंबई जाती है। MS धोनी, रणबीर कपूर, अरमान मलिक सबके साथ काम कर जाती है। हाय, दिस इज RJ गौतम फ्रॉम वॉक टॉक रेडियो। और यार, देहरादून की ना काफी चीजें फेमस हैं, जैसे कि मोमोज, FRI, यहाँ का घूमना, यहाँ का मौसम, यहाँ की एजुकेशन, शिक्षा, और अब इस लिस्ट में जुड़ गई है दून की दीक्षा। A very warm welcome to you, Diksha Chatwal, in Walk Talk Radio.
1: Thank you so much. Wow, it's a great feeling. I'm super excited to be here and have a great conversation with you guys.
0: सबसे पहले एक्टिंग की बात करते हैं। एक्टिंग कैसे और क्यों स्टार्ट करी आपने?
1: मुझे शुरू से ही था एक्चुअली, बचपन से, पर लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था और अंदर से मुझे वो आई नेवर हैड द करेज to accept the fact that I want to get into it. मतलब I loved watching films जब मैं छोटी थी. I used to imitate actresses also. I used to love dancing.
0: Bollywood kid.
1: Yeah. And my grandfather, he was a musician, and my dad, he sings. So वो कहीं ना कहीं अंदर genes में है. But मुंबई आने से पहले I used to work for Indigo Airlines. I used to fly with them as a cabin crew. और मेरा प्रमोशन होने वाला था, बट कुछ चीजें ऐसी हो गई वहां पे. आई वॉज बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद, तो मुझे ऐसा लगा कि नो, आई थिंक आई शुड जस्ट स्टॉप एंड प्रोबेबली जस्ट यू नो फॉलो माई हार्ट नाउ. तो दिल वहां नहीं था, दिल कहीं और था. तो आई जस्ट फॉलोड माई हार्ट एंड आई मूव टू बॉम्बे.

जैसे अंधेरे के बाद रोशनी आती है, ठीक वैसे ही बुरे के बाद एक अच्छा वक्त भी तो आता है। सोचने वाली बात है कि जिंदगी में हम इतना घबरा जाते हैं मुश्किलों को देखकर। हम लड़ते नहीं है, लड़ना नहीं चाहते। देखिए, लाइफ को जीना है ना तो वॉरियर बनना पड़ेगा, खुद को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और जब तक हम खुद को स्ट्रांग नहीं करेंगे, दूसरे लोग हमारी मुश्किलों का हमारा फायदा उठाते जाएंगे। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद पर विश्वास करना चाहिए। कभी भी किसी के सामने झुको मत, बस काम पे फोकस करो। और कभी भी डरना नहीं है। सिचुएशन हर किसी के साथ होती है, प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ आती है। आपको अपनी प्रॉब्लम्स को समझना है और उन्हें सॉल्व करना है, और उसके लिए खुद को टाइम भी तो देना है। इसीलिए जिंदगी में वॉरियर बने।

0: काफी सारे ब्रांड्स के साथ आपने कोलैब किया है, काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं कि कौन कौन से ब्रांड्स के साथ आपने अभी तक काम किया है।
1: हाँ जी, मैंने कोको कोला के लिए काम किया है, मैंने फेसबुक के लिए और मूव और GSK, कैरेट लेन, मैकडॉनल्ड्स नंबर वन सोडा, एंड मैंने म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं। मैंने अंकुर तिवारी के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया है फॉर MTV साउंड ट्रिपिन, एंड रिसेंटली मैंने एक और म्यूजिक वीडियो किया है जो टी सीरीज में आने वाला है। सो यस एंड या।
0: तो ये फीलिंग कैसी होती है जब आपने सपना देखा था कि मैं मुंबई जाती हूँ, कुछ करती हूँ, और अब जब आपकी वीडियो आती है, आपका एड आता है, आप बड़े पर्दे पे आते हैं और घर वाले देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं, तो वो फीलिंग कैसी होती है?
1: आई थिंक दैट फीलिंग इज समथिंग आई रियली कैन नॉट एक्सप्रेस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो वो फीलिंग ही अलग ही होती है। मतलब आप सब कुछ भूल जाते हो, बिकॉज दैट इज वॉट आई लव टू डू। आई मीन कैमरा, आई लव कैमरा, आई लव बींग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो इट इज अ ग्रेट फीलिंग विच आई लिटरली कैन नॉट एक्सप्रेस। इट्स लवली।
0: टॉकिंग अबाउट योर एजुकेशन, तो आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है अभी तक?
1: So, I have not really gone to college. I don't have a degree. I have a diploma in acting and production. Mm-hmm. I was in Noida Film City after my school. After my schooling, I told my family that मुझे बॉम्बे आना है, but लेकिन उन्होंने मुझे आने नहीं दिया बॉम्बे.
0: I was
1: मैं बहुत ज़्यादा young थी उस time, and my dad never took me seriously कि आ रे यार कहाँ इतनी छोटी हो अभी, तुम बॉम्बे जाओगी, auditions वगैरह दोगी, you know, नहीं जाना। तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा ना रिबेलियस हो गई थी कि नहीं यार, फिर मुझे भेजा ही क्यों आपने, यू नो, नोएडा क्यों भेजा आपने मुझे ये कोर्स करने के लिए। तो आई वाज लाइक अब तो मुझे निकलना ही है घर से। तो मैंने रैंडमली फिर जॉब अप्लाई कर दिया इंडिगो में, एंड आई गॉट थ्रू एंड आई गॉट द जॉब, एंड मैं भूल गई अपना, यू नो, एक्टिंग वैक्टिंग भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माई जॉब। बट
0: वो कहते हैं ना कि जहाँ पहुंचना होता है इंसान को,
1: हाँ,
0: तो कैसे भी पहुंच जाता है।
1: एग्जैक्टली, आई थिंक वो चीज है, वो चीज मैं समझ चुकी हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा करके ना वो लाइफ इज लाइक अ सर्कल, तो कहीं ना कहीं वो आपको पहुंचा ही देती है जहाँ पे एक्चुअली आपको पहुंचना होता है। सो इट इज लाइक दैट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो चीजें आप प्लान करके चलते हो ना लाइफ में, वो कभी नहीं होती, वो कभी नहीं होती है। सो आई फील दैट इट्स बेटर नॉट टू प्लान थिंग्स। आई डोंट नो, इट्स जस्ट Let life happen to you.

0: रेडियो।
1: कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है।

0: So you work in Bombay, but you are a Dunite girl. So quickly answer Bombay and or Dehradun and why?
1: Always Dehradun. I think मैंने काफी travel किया है और travel करके मुझे ये पता चला कि Dehradun जैसी city इस दुनिया में नहीं है. I think Dehradun is an emotion and हर चीज मैं देहरादून की मिस करती हूँ जब भी मैं बॉम्बे में रहती हूँ. देयर इज नथिंग व्हिच आई डू नॉट मिस अबाउट देहरादून.
0: जैसे क्या क्या चीजें हैं जो आप मिस करती हैं देहरादून की?
1: फर्स्ट इज मोमोज. आई लव मोमोज. मतलब एक तो बॉम्बे का खाना इतना खास नहीं है. बिकॉज हम नॉर्थ इंडियंस हैं तो यार हमें चाहिए थोड़ा स्पाइसी और बटर चिकन प्रॉपरली, यू नो, मोमोज की चटनी ये वो सब कुछ. तो आई मिस द फूड, आई मिस द वेदर, I miss the people from Dehradun because यहाँ पे वो simplicity है लोगों के अंदर अभी भी. अभी भी लोग इतने grounded हैं. मतलब it's just I miss that thing a lot from Dehradun.
0: और आपको क्या लगता है एक actor के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी personal और professional life को एक साथ manage करना?
1: I think it is difficult. It is difficult for a lot of people. मतलब वो आपकी वायरिंग पे डिपेंड करता है, हाउ यू बेसिकली परसीव थिंग्स. बट बॉम्बे में सब कुछ इतना ज़्यादा फास्ट है, सब लोग भाग रहे हैं, लाइक पीपल आर जस्ट रनिंग बिहाइंड थिंग्स. तो कभी कभी ऐसा होता है कि यू जस्ट लूज इट, आप खो देते हो खुद को भी. हाँ, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ हाउ यू परसीव थिंग्स एंड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ all these things that you need to keep your personal life separate and your professional life separate because har cheez aapke kaam ke aas pass revolve nahi karti. Everything doesn't revolve around your work. You have a personal life also which is separate and just enjoy it. I mean, theek hai
2: yaar, kahan ho? I've been trying your number for past 3 days. Tumse gana nahi ban raha to mana kar do, but we don't have any more time to waste. Okay, please complete this as soon as possible.

0: काफिला भी तेरे पीछे होगा, तू अकेले चलना शुरू कर तो सही। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: Walk Talk Radio.
1: So what is that feeling जब आप वापस आती है मुंबई से या बॉम्बे से काम करके देहरादून आ रही होती हैं, तो कैसा लगता है आपको?
2: मतलब आई थिंक दैट इज वन फीलिंग विच आई लिटरली लिव फॉर. जो मैं ये चीजें जो मैं कर रही हूँ वो मैं इसी फीलिंग के लिए कर रही हूँ, इज दैट कि जब मैं शूट के बाद जब मैं वापस घर आ रही होती हूँ या मैं अपने बॉम्बे वाले घर या यहाँ पे आ रही होती हूँ, आई थिंक दैट फीलिंग इज समथिंग विच इज मतलब एक वो सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग होती है कि यार आज कुछ किया है, आज मैंने वो किया है जिससे मैं प्यार करती हूँ. यू नो लाइक आई लव वॉट आई डू राइट नाउ एंड आई एम गोइंग बैक होम डूइंग दैट. तो दैट वो फीलिंग के लिए आई लिव फॉर दैट फीलिंग. सो आई थिंक वही है.
1: और बहुत कम लोग होते हैं जो ना अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कर रहे हैं तो वो उसी में रह जाते हैं, यार काश मैं ये बन जाता या काश मैं वो कर लेता.
2: एग्जैक्टली.
1: लेकिन आपने बहुत से बड़े बड़े एक्टर्स और सिंगर्स के साथ भी काम किया है, रणबीर कपूर, अरमान मलिक, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस जिनको आपने पहले कभी टीवी पे देखा है या सुना है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था?
2: वो एक्सपीरियंस मतलब जब मुझे व्हेन आई गेट दीज प्रोजेक्ट्स, तो वो बहुत मुझे ऐसा ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि मुझे ऐसा एक्साइटमेंट नहीं हुई कि यार आज मैं ओह माय गॉड इनके साथ काम कर रही हूँ उनके साथ. बट द एक्सपीरियंस द फीलिंग आपको वो तभी आती है जब आप सेट पे उनके साथ होते हो. देन यू गेट दैट कि यार ओके आई एम एक्चुअली वर्किंग फॉर दीज, इट इज हैपनिंग, आई एम एक्चुअली वर्किंग विद दीज पीपल. बट व्हेन आई वर्क्ड विद एमएस धोनी, आई डिड दिस एड, ओह माय गॉड, आई थिंक ही इज सो स्वीट,
1: कैप्टन कूल,
2: वेरी लाइक हम्बल एंड ग्राउंडेड, एंड ही इज टॉकिंग टू मी, इज लाइक हाँ, इवन माय वाइफ इज आल्सो फ्रॉम देहरादून, सो आई वाज लाइक हाँ हाँ आई एम आल्सो फ्रॉम देहरादून, एंड इट्स जस्ट लाइक तब मुझे ऐसा लगा कि वाओ यार लाइक ही इज सच अ,
1: ही इज एमएस धोनी, और
2: या
1: और एमएस धोनी होके भी इतना काम और
2: एग्जैक्टली एग्जैक्टली.
1: आपने अभी ट्रैवलिंग की बात भी करी, आप अपने काम के सिलसिले से ट्रैवल करती हैं, और जब इंडिगो में थी तब भी ट्रैवलिंग होती थी, तो व्हेन यू वर्क इन सच अ फील्ड, तो हाउ डज ट्रैवलिंग टू डिफरेंट सिटीज और इवन कंट्रीज इवॉल्व्स यू एज अ पर्सन?
2: इट डज इवॉल्व यू, एंड आई थिंक ट्रैवलिंग इज वन थिंग के मुझे ऐसा लगता है कि काम के अलावा आप हम सबको ट्रैवल करना चाहिए. मतलब आप जितना भी कमा रहे हो उससे थोड़ा सा आप अपना 20-30% पैसा अलग करके वी ऑल शुड ट्रैवल. मतलब आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ विच विल इवॉल्व यू इन टू अ डिफरेंट ह्यूमन बींग. सो सर्टन थिंग्स जो मैंने लाइफ में अडेप्ट करी है वो ट्रैवलिंग से ही करी है. आप जिस तरीके के लोगों से मिलते हो, आप अलग अलग लाइफ स्टाइल, अलग अलग कल्चर्स देखते हो, इट्स सो डाइवर्स आउट देयर, सो या इट विल चेंज यू समवेयर.
1: मैंने कहीं पे पढ़ा था आपने एक गाना लिखा भी, आप लिखती भी हैं.
2: हाँ.
1: तो उस गाने की अगर एक दो लाइन अगर आप गा दें बता ही दें मतलब no. की
2: हाँ हाँ मैंने गाने लिखे हैं एक्चुअली. देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु इज वन ऑफ द रेनाउंड लिरिसिस्ट इन द इंडस्ट्री, तो उनके साथ मैंने काम किया है. बट एक गाना है जिसमें मुझे एक्चुअली एज अ लिरिसिस्ट मेरा नाम आया था, विच इज कॉल्ड किलर हसीना फॉर टी सीरीज, एंड दिस वन वॉज फॉर अर्जुन काननगू एंड तुलसी कुमार. सो मी एंड द अदर पर्सन वायु.

0: हम दोनों ने साथ में ये गाना लिखा था. तो नॉट जस्ट दिस, आई डू राइट स्टोरीज ऑल्सो. आई एम राइट नाउ लर्निंग कॉपी राइटिंग एंड कॉन्टेंट राइटिंग ऑल्सो. सो बेसिकली आई एम गोना बी वर्किंग ऑन एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड कैंपेन्स. तो आई जस्ट वॉन्ट टू, एज एन आर्टिस्ट आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर,
1: क्रिएटिविटी होनी चाहिए.
0: हाँ, मतलब और जगह भी मुझे एक्सप्लोर करना है. सो इस वजह से अभी मैं कॉपी राइटिंग में भी घुस रही हूँ. सो बेसिकली आई विल बी अ कॉपी राइटर, सर्टिफाइड कॉपी राइटर नेक्स्ट मंथ. तो मेरा नेक्स्ट मंथ मेरा कोर्स खत्म हो रहा है.
1: अच्छा,
0: या

इंसान हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत सिर्फ कुछ चुनिंदा घरों में ही होती है। आज के जमाने में हर व्यक्ति अपना फायदा चाहता है, मैं ये बन जाऊं, मैं वो कर लूं, मैं सबसे आगे, फिर चाहे वो दूसरे का नुकसान पहुंचा के क्यों ना मिले। ऐसी सोच रखने वाले लोगों को शॉर्ट टर्म में खुशी मिल सकती है, लेकिन आगे चल के इसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें खुद भुगतने पड़ते हैं।

0: किलर हसीना की कोई हुक लाइन या दो लाइंस, कुछ भी।
1: किलर हसीना हसीना आ जान ले ले, किलर हसीना नणणा टणणा टणणा।
0: तो ये डांस और पेपी टाइप का सॉन्ग होगा,
1: इट्स अ प्रॉपर बॉलीवुड नंबर। मतलब ये तो बहुत मजा भी आता एक्चुअली इसको लिखने में, बट प्रॉपर बॉलीवुड नंबर है ये।
0: तो ये लिखने की जो जर्नी है ये भी बहुत पहले से ही है या अभी साथ साथ आप लिखने लगी हैं?
1: ये बहुत पहले से है एक्चुअली, बचपन से है, पर लेकिन अब मैंने इस पे प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दिया है बिकॉज बहुत ज्यादा जरूरी है। एट द एंड ऑफ द डे आई वॉन्ट टू गेट इन टू समथिंग विच इज कि कैमरे के पीछे भी क्या होता है, मतलब मुझे उस पर भी काम करना है। दैट आई वॉन्ट टू गेट इन टू स्क्रिप्ट राइटिंग एंड यू नो लाइक एक एड को, मैंने एड्स वैसे बहुत सारे किए हुए हैं एज एन एक्टर, बट नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट एड्स ऑल्सो।
0: बनता कैसे है,
1: बनता कैसे है, लिखते कैसे हैं, यू नो प्रॉब्ली आई वॉन्ट टू डायरेक्ट ऑल्सो वन डे एड्स और फिल्म्स व्हाटसोएवर। सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग इन टू कॉन्टेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग।
0: बहुत ही अच्छी बात है कि सीखने की चाह हर चीज में है। हाँ। किसी एक चीज को आप स्टिक नहीं कर रही हैं।

Radio. वो कहते हैं ना कि बांटने से प्यार बढ़ता है, फिर चाहे हम अपनी खुशियां बांटें, अपना गम बांटें, खाने की चीजें बांटें या कुछ भी चीज शेयर करें, जब हम किसी के साथ कुछ बांटते हैं तो उस इंसान के चेहरे पे एक स्माइल आती है और फिर वो भी आपके साथ चीजें बांटना शुरू करता है, रिश्ते गहरे होते हैं। तो यार, जब भी मौका लगे अपनी फीलिंग्स, अपना लंच, अपनी खुशियाँ शेयर करके देखो, अच्छा लगता है।

ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख।

0: कई लोगों को जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अपनी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी प्यारी लगती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो वो भी करते हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो, ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक
2: रेडियो। अगर मैं कहूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा वेपन यानी हथियार क्या है, तो हो सकता है आप कहें कि न्यूक्लियर बॉम्ब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन अगर आपके दिमाग में दुनिया को बदलने का विजन है, आपका मन चाहता है कि आप कई बातों में दुनिया को बदल कर रख दे, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। अगर हमें दुनिया बदलनी है, मेंटालिटी बदलनी है, अपने समाज को बदलना है, अपनी सोसाइटी को बदलना है, तो उसके लिए जरूरी है कि एजुकेशन हर एक तक पहुंच जाए। यानी अगर हम एजुकेटेड हैं, तो हम अपने आने वाली जनरेशन को भी एजुकेट करके दुनिया को सही दिशा में बदल सकते हैं।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: कभी कभी ना हम दूसरों की बातें दिल पे ले लेते हैं, अरे यार उसने ऐसे कैसे बोल दिया एक्सेट्रा। हम खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं और यही चीज हमें लाइफ में काफी डिस्ट्रैक्ट करती है। हम अपना सारा काम छोड़कर दूसरों पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। सोचो हम खुद के साथ, खुद की लाइफ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर जरा गौर करना। हमेशा जो है दूसरों की बातें दिल पर लेने की बजाय एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो और अपने टाइम को सही यूटिलाइज करो, क्योंकि वक्त जब एक बार चला जाता ना दोस्त, दोबारा वापस नहीं आता, उसके बाद सिर्फ पछतावा होता है। इसलिए पछताने से अच्छा है खुद को टाइम दो।
1: वक्त

मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: रेडियो।
1: क्यों इतना डरते हो जिंदगी से? क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा आगे तजुर्बा ही होगा, और तजुर्बा ही इंसान को जीना सिखलाता है।
0: वॉक टॉक रेडियो।
2: वॉक टॉक
0: रेडियो।
2: सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: रेडियो। कुछ बनना है तो अपने आप की तरह बनो, किसी और की तरह कोई ना कोई हर रोज यहाँ बन रहा है, तैयारी ही सफलता है।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

दोस्तों, हमें कभी छोटी छोटी परेशानियों या हार से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए ही हो रहा है। इसलिए हर वक्त हर हाल में हमें जीतने का जज्बा रखना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। ऐसी और बातों के लिए सुनते रहे वॉक टॉक रेडियो।

0: बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब ही बोलें, हमेशा नाप तोल कर बोलें। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक टॉक रेडियो, वॉक।

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: रेडियो।
1: परिवर्तन और संघर्ष से डरने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता। परिवर्तन इस संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा, सुबेरे हुई है शाम होगी, कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं बदलती। लेकिन अगर हम हार्डकोर हो जाते हैं, किसी बात पे अड़ जाते हैं, तो दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाती है। परिवर्तन संसार का नियम है, बदलिए और देखिए, आप खुद नहीं बदलेंगे, आप अपने आसपास की सिचुएशन को भी बदलने का मौका देंगे। संघर्ष से डरना, पीछे रह जाना, हमेशा डरते रहना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। हिम्मत करिए और फेस करिए अपनी उस प्रॉब्लम को, ऐसा फेस करिए कि प्रॉब्लम भी आपसे डर जाए, और देखिए जिन चीजों से आपको डर लग रहा था वो कितनी आसानी से दूर हो जाती हैं। कोशिश तो करके देखिए।
0: वॉक टॉक रेडियो।
2: वॉक टॉक
0: रेडियो।
2: सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: Walk Talk Radio.
1: फोकस ऐसा रखो कि आपके और आपके सपनों के बीच कोई ना आ सके, समझ रहे हैं आप?

0: रेडियो।
1: हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे।
2: आई वॉज नेवर दिस कॉन्फिडेंट इन लाइफ।
1: ओके, आई हैड अ फेज वेर आई वॉज गोइंग थ्रू अ बैड यू नो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। दैट वॉज बिकॉज ऑफ यू नो जो आउटसाइड सर्कमस्टेंसेज होती हैं, जो तुम्हारे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बेसिस पे तुम बहुत यू नो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फेस करते हो। आई वॉज गोइंग थ्रू दैट बैड फेज ऑब्वियसली। आफ्टर यू नो 2 years ऑफ गोइंग थ्रू दैट फेज, आई रियलाइज दैट ओ वेर इज दैट चार्म दैट वॉज इन मी, यू नो समथिंग इज मिसिंग। I have stopped talking, I have stopped going out. Why? Then I understood that and उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई and then you know I traveled throughout that year. मैंने उस year में 10 जगहें इंडिया में travel करी, you know, to sort of get back my confidence. And उसके बाद I understood that you know जो भी outside circumstances थी जो which were you know pulling me down, they could no longer affect me after that 1 year. And then I started you know getting back on the track, meeting people, doing some things jo mujhe achhi lagti thi, doing events, going out to different places and working with different people, and unse seekha maine bahut kuch. Maine 12th tak science padhi, uske baad maine mass communication kiya, uske baad maine events kiya. Theek hai, to I think I had enough backups ko शन अवे करना एंड देन आई केम टू दिस कंक्लूजन दैट आई हैव टू डू दिस एंड आई एम मेंट टू सी द ऑपरेशंस ऑफ थिंग्स। सो अगर आज की डेट में आप पूछे मेरा बैकअप प्लान क्या है, आई टेक्निकली डोंट हैव अ बैकअप प्लान, बट इफ आई हैव टू डू समथिंग आई नो आई कैन डू ऑपरेशंस वेरी वेल, ऑपरेशंस ऑफ एनी कंपनी ऑफ एनी जॉब आई कैन डू दैट वेरी वेल, बिकॉज मैंने एक मास्टर ऑपरेशंस वाली फील्ड में काम किया हुआ है, जो इवेंट्स है जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस देखने होते हैं। तो इफ आई कैन डू दिस आई कैन सी द ऑपरेशंस ऑफ एनी प्लेस एंड एनी बिजनेस।
0: वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो।
1: हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। किसी भी ह्यूमन बीइंग का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है मेरे हिसाब से। जब व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तब मेरी मदर मेरे को खाना बनाना कहती थी कि सीखो एंड यू शुड नो हाउ टू कुक। मैं उन पे बहुत गुस्सा हुआ करती थी कि यू नो मम्मी आप भाई को क्यों नहीं कहते, आप मुझे ही क्यों कहते हो कि खाना बनाना सीखो। उस टाइम मैं बहुत गुस्सा हुआ करती थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग अवे फ्रॉम माय हाउस आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग फूड फॉर योरसेल्फ। जितना यू नो तुम बाहर पैसा वेस्ट करते हो खाने पे, वो कितना बचता है इफ यू कुक योरसेल्फ। तुम कहीं पहाड़ों में कहीं अनकन्वेंशनल जगह पे चले जाओ, इफ यू हैव द बेसिक रॉ इंग्रेडिएंट्स तुम अपना पेट भर सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से इंडिपेंडेंट होना एंड अपनी लाइफ को सस्टेन करना, खुद कमाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खुद के लिए खाना बनाना है। क्योंकि यू नो इतने सारे हम इंसिडेंट सुनते हैं जिसमें यू नो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है एंड यू नो फीमेल्स को अपने गांव से बाहर आने का मौका नहीं मिल रहा। मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि अगर मैं एक भी फीमेल की लाइफ ऑल्टर कर पाऊँ, वो मेरे लिए एक बहुत पुण्य का काम होगा। मेरी टीम में भी अगर आप देखें, देर आर 80-90% फीमेल्स इन माई टीम। और उस चीज को अगर हम ध्यान में रखें और हम फीमेल्स को सपोर्ट करें, अपलिफ्ट करें, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि फीमेल रन ऑर्गेनाइजेशंस और फीमेल लेड ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं। उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज मेल रन। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ रिसर्च कि हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा होता है।
0: वॉक टॉक रेडियो।
1: हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर। अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं। सबकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है। तो
2: उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम, देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग. तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो. इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड. हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर. एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटिफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स. देन वी ट्राइड टू यूज जूट instead of you know cloth and synthetic cloth and nylons जो environment को harm करते हैं, हमने reusable cloths जो कि jute है वो maximum जगहों पे use करा. Then we tried to avoid using iron structures as much as possible and we tried using more of bamboo structures. हमने bamboo and लकड़ी से कुछ structures create किए. Vinyl को ना use करके हमने for welcome boards and flex हमने बनाना लीव्स यूज किए, हमने जूट यूज किया इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स. तो इस तरीके से हमने उनकी वेडिंग को जस्टिस करने का ट्राई किया. दिस इज वन एग्जांपल ऑफ हाउ वी टेक इनपुट्स फ्रॉम द कपल्स पर्सनालिटी एंड ट्राई टू क्यूरेट समथिंग आउट ऑफ इट.
0: वॉक टॉक रेडियो.
2: हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है. सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं. इनफैक्ट हम नहीं, सारे ही ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं. एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है. ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है. ठीक है, आई कॉल दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा एंड तब तो भौकाल मच जाएगा. आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ. परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ rather than being perfect, I think results आएंगे after some time. मुझे पूरा भरोसा रहता है if I am persistent. और perfection को अगर हम obviously कई days पे हमारा perfect output आता है, कई days पे थोड़ा कम अच्छा output आता है, कई days हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम humans है, सबके साथ होता है. But then you know, रोज थोड़ा थोड़ा करना is very important.
0: Walk Talk Radio.

0: रेडियो।
1: मजबूत होने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। अपने आसपास बहुत लोग हो सकते हैं आपके जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हो, डरा रहे हो, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। क्या फर्क पड़ता है, शायद वो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाए या उसी सिचुएशन में उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी सोच और ऐसे लोगों से अपने आप को सतर्क रखिए, क्योंकि उनसे सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिविटी, डराना यही मिल सकता है। अगर किसी के पास सॉल्यूशन है तो वो आप खुद हैं। खुद से बात करिए, खुद की सोच और खुद के निर्णय पे यकीन करिए, उस पे आगे बढ़िए और देखिए आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी आपके खुद के भरोसे से, जो आपका खुद पे होगा।
0: वॉक टॉक रेडियो।

हमारे बचपन को याद दिलाती है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी हमने चीज़ें रखी हुई पुरानी, जो हमारे जो जनरेशन है, यूथ है, उनको अपने गांव से अटैच करे, ऐसी चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हुई हैं। तो छानी का उद्देश्य यही था कि हम इमोशनली यूथ को या जो भी हमारे पहाड़ी समाज में रहने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने गाँव की तरफ अट्रैक्ट करें। तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ छानी। बट इन जनरल मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि आई थिंक हम कहीं पर भी अगर हैं, चाहे हम देहरादून है, दिल्ली है, अपनी प्रतिभा के अनुसार जॉब कर रहे हैं, बट जो भी हमारा सेक्टर है उसमें जॉब कर रहे हैं, कि हो सकता है वो सेक्टर हमारे अपने होम टाउन में ना हो, विलेज में ना हो, बट हमें बहुत मजबूती से अपने रूट्स को पकड़ के रखना चाहिए। और अपने रूट्स को पकड़ने का केवल ये नहीं है कि आपको इस्टेब्लिशमेंट बना दें, कोई आप कोई नई चीज़ स्टार्ट कर दें, बट आप उसमें इन्वॉल्व होइए, अपने फूड में, कल्चर में, क्राफ्ट में, अपने लोगों के साथ, अपने गांव के लोगों, अपने पुराने जहां जिस टाउन में आप रहते थे उस टाउन के लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाइए, तो मतलब बहुत आनंद आएगा। तो यही मैसेज है कि आई थिंक अंगद की पाँव की तरह एक पाँव हमें अपने वर्किंग लोकेशन पर रखना चाहिए, जहां पर भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, और एक हमें अपने रूट्स को बहुत मजबूती से पकड़ के रखना चाहिए। ये मैसेज आई थिंक कोविड ने भी हमें दिया है। कोविड में सारे लोग गए ना अपने रूट्स पे, तो अब तो मैसेज तो ऑलरेडी नेचर ने दे दिया है कि हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू। Walk Talk Radio. हमें बहुत मजबूती से अपने रूट्स को पकड़ के रखना चाहिए, उसमें इन्वॉल्व होइए, अपने फूड में, कल्चर में, क्राफ्ट में।

नमस्कार, मेरा नाम रमेश पेटवाल है और मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ और बड़ी फेमस जगह एक परियों का देश खैट पर्वत, वहाँ मेरा गांव है। छानी जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक हम सब लोगों ने देखा है कि जो कोरोना काल था, कोविड का दौर था, तो उस समय सभी लोग हम वर्क फ्रॉम होम पे थे। तो मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, बट वो दौर था कि हम सब अपने घरों में थे और कई सारे यूथ और कई सारे लोग जो बाहर काम करते थे, मतलब देश विदेश में काम करते थे, वो सब अपने गांव की तरफ चले गए थे। और गांव से गांव में जाने के बाद उनके थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहे थे कि क्यों ना अपने गांव, अपने क्षेत्र के लिए कुछ किया जाए। तो उसी दौरान जब हम साइकिलिंग करके इस जगह पे आते थे, हमारे यहाँ से मेरा जो देहरादून वाला घर है वो लगभग 9 किलोमीटर दूर है, तो जब हम यहाँ पे आते थे तो सोचते थे कि यार इस जगह का कैसे उपयोग किया जाए और कैसे इसको थोड़ा अपनी कल्चर से, अपनी संस्कृति से हम इसको जोड़ पाएं। तो इसके लिए फिर काफ़ी सारा थॉट प्रोसेस हम लोगों ने किया, मेरे कई सारे फ्रेंड्स इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो हमारे विचार में ये, हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा लैक क्या कर रहा है यूथ के बीच में, तो वो कर रहा है कि हमें अपने कल्चर, क्राफ्ट एंड फूड, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हमने पहले तो डिसाइड किया कि हम कल्चर, क्राफ्ट एंड फूड पे थोड़ा काम करेंगे साइड बाय साइड। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो कभी आया कि गेटवे ऑफ देहरादून, हिमालय, बहुत सारे नाम आए। फिर सडनली एक डिस्कशन हो रहा था कि इसका नाम कुछ भावनात्मक राम होना चाहिए इसका। तो मैंने प्रपोज किया अपनी टीम को कि हम इसका नाम छानी रखते हैं। तो छानी इज़ अ वर्ड, पहाड़ी वर्ड है, जिसको पौड़ी में अगर आप जाएंगे, पौड़ी गढ़वाल में, इसको छन्नी नाम से बोलते हैं। टिहरी में जाएंगे तो छैणु बोलते हैं, और इन जनरल अगर पूरे उत्तराखंड में छानी नाम से इसको बोला जाता है। तो छानी क्या होता है कि हमारे पहाड़ियों के दो घर होते हैं। जब सर्दियाँ होती हैं तो उस समय तो हम अपने नॉर्मल घर में रहते हैं, लेकिन गर्मियों में हमारे जो जानवर होते हैं या जो व्यक्ति उनके साथ रहते हैं, वो पहाड़ में ऊपर चले जाते हैं। वो टेम्परेरी हाउस होता है अप्रैल में, जून, जुलाई का, और उस टेम्परेरी हाउस में सारे वो अरेंजमेंट्स होते हैं जो एक घर में अरेंजमेंट्स होते हैं। तो हमने इसका नाम भी छानी रखा। ये हमारे लिए नहीं, सभी के लिए टेम्परेरी हाउस है, किसी के लिए 4 घंटा, किसी के लिए 10 घंटा, कोई कोई यहाँ पर रुकते भी। हमने एक पठाल का छोटा सा घर भी बनाया हुआ है। तो यही एक थॉट प्रोसेस था कि छानी नाम क्यों रखा जाए। तो कई बहुत मेरा इमोशनल अटैचमेंट है छानी वर्ड से, मेरे भी नहीं, मेरा तो बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि मैं खुद छानी में पैदा हुआ हूँ, तो और परियों के देश के नीचे की छानी थी वो खैट पर्वत की, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, और मैं अपने गांव से, अपने उस जगह से जहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखता हूँ। इसलिए मैंने और मेरी टीम ने इस जगह का नाम छानी रखा।

0: जिन लोगों को दूसरे के सुनने की आदत नहीं है, छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो जाते हैं। आपको आगे बढ़ते देखने में बाकी हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको भटकाने की। तो आपसे मेरा यही कहना है कि सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि इस दुनिया में रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो दोस्तों, क्योंकि यहाँ टांग खींचने वालों की कमी नहीं है।
1: Lockdown Radio, tune in for a better life.

इश्क के रेगिस्तान में तू बारिश बन के आई है, भीग उठा है दिल मेरा, आंखें भी भर आई है, पार किए कई तेरे लिए मोहब्बत के इंतहा, तो जाना मौत से भी ज्यादा दर्द है।

हाय गाइस, माय नेम इज काव्या और मैं अपने बारे में क्या कहूँ. आई थिंक मैं एक रूरल एंटरप्रेन्योर हूँ जो गांव में रहती हूँ. इनफैक्ट जंगल में रहती हूँ. बहुत पसंद करती हूँ भारत की कला और एक विजन है मेरा कि मैं आदिवासी जनजाति को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना चाहती हूँ ताकि उनका हेरिटेज, उनका क्राफ्ट्स बना रहे, और यही कोशिश है. सो दैट इज व्हाट आई एम. एंड बाय एजुकेशन आई एम एन MBA ग्रेजुएट और कभी नहीं सोचा था कि क्राफ्ट, ट्रैवल और इस तरह के गांव के इकोसिस्टम में काम कर पाऊंगी. आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स MBA बाय एजुकेशन, बट आई थिंक गॉड हैज बीन रियली ग्रेशियस. आई वॉज बॉर्न इन राजस्थान एंड नाउ आई लिव फ्रॉम अ फॉरेस्ट इन कोरापुट इन ओडिशा. दैट्स अबाउट. आई थिंक क्राफ्ट पोटली का सफर कहाँ से शुरू हुआ, मैं ये कहूंगी 2009 के आसपास शुरू हुआ. हम सभी जब पहली जॉब में होते हैं, पहली सैलरी मिलती है, उसके बाद अपने पैशन खोजने लगते हैं. एंड तब ये इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था, तो आई थिंक तब मेरा ये था कि मुझे एक ऐसा, एंड तब क्राफ्ट के भी बहुत मार्केट प्लेसेस या ऑनलाइन स्टोर्स नहीं थे, तो तब मेरा ये सपना था कि यू नो आई हैव टू क्रिएट दिस वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग हैंडमेड इन इंडिया, ऐसा मैं सोचती थी. तो क्राफ्ट है और वो सब एक पोटली है, क्योंकि मेरी दादी यूज टू ऑलवेज कैरी दिस पोटली एंड ऑलवेज शी वुड कैरी दिस मुरमुरे एंड सम नट्स. एंड मी बींग कमिंग फ्रॉम अ फैमिली वेयर माई फादर हैज 10 other brothers, sisters. So we were lots of kids, you know, in Rajasthan. So she would always have this and she would give something from her potli to kids. So I was like, okay, craft potli. And back then, wo domain mujhe mil gaya. To wo tab se raha. But uske baare mein, I did nothing. For 10 years, I kept working. And iski shuruaat aise hui ki pandemic aaya. And I think hum sabhi ne apne aap ke baare mein thoda kuch jana. I also understood ki jo main rural travel kar rahi thi for my fun, with the job on weekends, वो really travel नहीं था. मैं वापस आती थी अपने comfort zone में, job करती थी, salary लेती थी. It was pandemic that made me realize कि if I have a passion, then मुझे उसका test लेना चाहिए कि वो passion really है भी या नहीं. Can I last that? So I took this massive journey. It's called Kavya on Quest. थोड़ा सा अच्छा उसका गूगल अट्रैक्शन है, आप देखिएगा. सो आई टुक दिस विद महिंद्रा ऑन 2nd October. द आइडिया ऑफ काव्या ऑन क्वेस्ट वॉज दैट नॉन स्टॉप आई विल बी ऑन द रोड्स कवरिंग विलेजेस ऑफ इंडिया एंड टेलिंग देयर स्टोरीज विदाउट अ सिंगल डे ब्रेक, विदाउट फॉलिंग इल. आई थिंक आई वुड बी, आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट दिस. आई टुक 42 कोविड टेस्ट इन 6 months ऑफ टाइम. I started this journey on 2nd October 2020 after first pandemic and ended this journey in end of May 2021 and covered non-stop without staying in hotels or taking any guides, just covering crafts of India. Early in this journey, I figured ki while I am from Rajasthan, which is like a craft hub or Kutch, I thought that the focus has to be to Eastern India, जहाँ पे बहुत सारा culture है but ज़्यादा दिखाया नहीं जाता है. तो जब मैं वहां पे गई, I still remember, it was January 2021, I first entered the land of Odisha. And Odisha के हम जब भी बात करते हैं, we just know पुरी और भुवनेश्वर. I entered into a land where I saw James Cameron Avatar movie coming to life. मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि ऐसे rolling jungles हैं, clouds हैं, and उसमें आदिवासी people live freely. It was like Avatar movie came in front. I had never seen, like I've been to Ladakh, I've been to beautiful places like Spiti, Andaman, but Koraput was something else for me. And when that journey ended in June, I was like, either go back to my job in Gurgaon, which was paying me well, or do something about your life. And I had 2-3 options. So I thought, okay, ya to West Bengal mein kahin pe jaate hain ya Chhattisgarh mein or Odisha. Now Odisha being very well connected by air, and generally since I also live solo, I felt it was a great opportunity for me to kind of relocate. So I relocated to Koraput and started with something really small. Craft Potli started its operations with a mere turmeric bar. That has now become a case study with the Tata Institute of Social Sciences in Bombay. It was a breakthrough product in itself. First 6 months of me living from August 21, when I moved to the village, till about, I would say, October or November 21, I would just go village to village, go to Adivasi Haats on weekly basis. घूमती रहती थी, उन लोगों को लगता था ये कौन सी लड़की है, क्या कर रही है. तब मैंने डिस्कवर किया कि ईस्टर्न घाट्स में बहुत ज्यादा हल्दी उगता है, विच इज नॉट गेटिंग यूटिलाइज्ड एंड इट डजंट गो आउट ऑफ
their own villages. So coming from the learning that I was having with my jobs, with a fashion brand that I was working before pandemic, we decided to turn that turmeric bar into a bathing bar. Now these people, जिनके भी हम बात कर रहे हैं, वो लोग एक पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, जो आज भी सुबह उठ के जंगल जाते हैं एंड फ्रूट्स तोड़ के लाते हैं, उसके बेसिस पे या थोड़ा हल्दी उगाते हैं या कुछ कॉफी उगाते हैं या सब्जी उगाते हैं, उसी पे ही जिंदा रहते हैं. फॉर देम दैट इज देयर लाइफ स्टाइल. सो टू मेक देम लर्न हाउ टू मेक अ बेदिंग बार वॉज अ चैलेंज इन इटसेल्फ. वी गैदर्ड अबाउट 62 वुमेन फ्रॉम 5 विलेजेस. ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द कोंधा ट्राइब. And they learned in 7 days how to mix the right proportions, the right percentage, usko dry kaise karna hai. Ye sab seekh liya, lekin beche kahan? That was the major question. So friends and family came into picture. I think every entrepreneur does that. I can say that now. So I sent these bars packed in brown paper, jo hum bachpan mein use karte the, kitabe chadhane ke liye. Usse bheja and the reviews were fantabulous. It was something that I had not expected. People kept on repeating, my own relatives kept on asking. And that's where we thought, okay, let's increase the production. Thoda sa apna paisa dala and we worked on the packaging a little bit. Then it was, I think, April 2022, very recently, that a Bangalore customer reached out to us that, can you make a lot more of this bar? Like, volume aap kar sakte ho? So, humne kaha, haan, abhi humare paas 14 women actively work kar rahi hai, but we have 62 trained and we can train more people. So, yeah, and I think that was the pivot for Craft Portly. In April 22, we started supplying to one of the United Nations agency in Guatemala in Central America. And that is where volumes came in. When volumes came in, we got some confidence to add more products to Craft Portly and also define ourselves ki we will not be working in rural but Adivasi belts of the country. And that was like a long story to a short question that Craft Portly ki shuruaat kaise hui. मैं शेयर करना चाहूंगी मेरा एंट्री इनटू विलेज, क्योंकि बहुत टाइम तक लोग ऐसा सोचते थे. अभी मुझे आई थिंक मैं अगस्त 21 में शिफ्ट हुई थी फुल टाइम इनटू अ फॉरेस्ट विलेज. तो लोग पहले ऐसा सोचते थे कि ये लड़की मिट्टी के घर में रहती होगी लेकिन ऐसा नहीं है. बट बहुत टाइम लगा मुझे, तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ है. जो भी आज हम काम कर रहे हैं बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू बिग स्टार्टअप्स. कई लोग मुझसे बहुत ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने एक साल में क्या किया. मैं देखती हूँ कि ना वन ईयर में बहुत सारे स्टार्टअप्स पिवट कर जाते हैं, बट हम लोगों का ग्रोथ हैज बीन वेरी स्लो एंड माइंडफुल. बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस उन सभी लोगों के लिए जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की ओर देखते हैं, कि आई थिंक स्लो ग्रोथ एंड एक्सेप्टेंस इज वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया. तो मैं ये बताना चाहूंगी ये इंसिडेंट कि मुझे 6 महीने लगे टू स्टार्ट माई फर्स्ट प्रोडक्ट. क्योंकि हो सकता है कि पहले आप किसी नोशन को लेके किसी गांव में आओ, वो चीज आपके लिए काम ही ना करे. पहले मैंने सोचा था कि मैं किसी ज्वेलरी पे काम करूंगी, बट वो नहीं वर्क किया. आई हैड नेवर थॉट कि मैं टर्मरिक पे काम करूंगी, यू नो. एंड उसके बावजूद भी लोगों गांव में जनरली भरोसा धीरे धीरे आता है, और जब एक बार आ जाता है फिर वो लोग आपके लिए कुछ भी कर देंगे. तो फॉर मी दैट टुक अ लिटिल टाइम. मुझे 6 मंथ्स लगा टू ब्रेक दैट आइस बोलें या हम केमिस्ट्री बोलें. एंड जब वो 6 महीने का पीरियड पास हुआ एंड इट वेंट थ्रू डिफरेंट प्रोसेस, चाहे आप टैटू कह लीजिए मेरी बॉडी पे, या आप जितने भी फेस्टिवल्स, या आप मेरा इंस्टाग्राम में स्टोरीज देखेंगे. तो आई थिंक इट टुक मी अ वाइल, बट जब वो एक बार वो हो गया देन इट वॉज अ इजी राइड फॉर मी. I think for me, traveling is like breathing. I literally breathe that. Abhi bhi, it was my birthday on 9 July and I decided that living in a village, I am also lacking learning. Like I keep seeing my village. It's like one keep seeing Gurgaon skies, or you keep seeing, let's say, the place where you live, the people you meet. Aapka ek routine ban jata hai. Mera bhi apna ek gaon mein routine hai. But mujhe laga ki I need some learning. So I literally took this self-funded trip to very different cities in India. हम लोग जाते हैं लद्दाख जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं. आई डिसाइडेड टू ट्रैवल टू कोटा इन राजस्थान एंड देन भोपाल इन मध्य प्रदेश, बिकॉज आई रियलाइज दैट भोपाल हैज अ गुड चंक ऑफ आर्टिस्ट हु बिलोंग टू दिस गोंडवाना बेल्ट और द गोंडी ट्राइब
हु आर नाउ परस्यूइंग और वर्किंग ऑन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स. तो मैं जनरली उनसे कुछ सीखना चाहती थी. एंड कोटा में भी एक पर्टिकुलर टेक्सटाइल बनता है. एंड देन आई वेंट टू नेपाल टू जस्ट अंडरस्टैंड एंड प्रेप माई ट्रिप फॉर अपर मस्टैंग वेयर वी आर प्लानिंग टू डॉक्यूमेंट द डिफरेंट स्टोन यूटेंसिल्स. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ट्रैवल करते हो इट्स लाइक अ लाइव स्कूल. तो हम लोग बुक्स पढ़ते हैं. लाइक व्हेन आई डिड माय ग्रेजुएशन और एमबीआई रेड सो मेनी बुक्स. सो बुक्स एक तरफ है बट दिस इज लाइक अ लाइव लाइक इंस्टाग्राम लाइव. सो इट्स लाइक अ लाइव स्कूल वेयर यू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम मैनेजमेंट टू एंगर मैनेजमेंट टू फ्रेंडशिप्स टू ईटिंग टू लाइफ हाउ यू आर वॉट यू आर. सो आई थिंक आई एम वॉट आई एम बिकॉज ऑफ ट्रैवल एंड आई थिंक दैट्स समथिंग.

0: आपकी कमियों को ही दर्शाएंगे। हो सकता है बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, लेकिन आपको सिर्फ ये सोचना है कि दुनिया का तो काम ही है आपको बार बार गिराना, और हमारा काम है ढीठ बनकर बार बार उठ खड़ा होना। इसलिए जब जब आपकी हिम्मत जवाब देने लग जाए तो याद करिए अपनी उन तमाम खूबियों को जिनको आप जानते हैं, और करते रहिए कोशिश लगातार, और बनते रहिए बेहतर हर बार।
1: Tune in for a better life. Tune in.

0: अरे सबके बस की बात नहीं है, छोटे शहर की लड़की है, एक्टिंग में कहाँ जा सकती है। ये सब बातों को अनसुना करके एक लड़की सपनों की नगरी मुंबई जाती है। MS धोनी, रणबीर कपूर, अरमान मलिक सबके साथ काम कर जाती है। हाय, दिस इज RJ गौतम फ्रॉम वॉक टॉक रेडियो। और यार देहरादून की ना काफी चीजें फेमस है, जैसे कि मोमोज, FRI, यहाँ का घूमना, यहाँ का मौसम, यहाँ की एजुकेशन, शिक्षा। और अब इस लिस्ट में जुड़ गई है दून की दीक्षा। A very warm welcome to you, Diksha Chatwal, in Walk Talk Radio.
1: Thank you so much. Wow. It's a great feeling. I'm super excited to be here and have a great conversation with you guys.
0: सबसे पहले एक्टिंग की बात करते हैं। एक्टिंग कैसे और क्यों स्टार्ट करी आपने?
1: मुझे एक्टिंग का मुझे शुरू से ही था एक्चुअली, बचपन से, पर लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था और अंदर से मुझे वो आई नेवर हैड द करेज टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई वॉन्ट टू गेट इन टू इट। मतलब आई लव वॉचिंग फिल्म जब मैं छोटी थी। आई यूज टू इमिटेट एक्ट्रेसेस ऑल्सो, आई यूज टू लव डांसिंग
0: एंड
1: या एंड माई ग्रैंड फादर ही वॉज अ म्यूजिशियन एंड माई डैड ही सिंग्स, सो वो कहीं ना कहीं अंदर जीन्स में है। बट मुंबई आने से पहले आई यूज टू वर्क फॉर इंडिगो एयरलाइंस, आई यूज टू फ्लाई विद देम एज अ कैबिन क्रू।

0: और मेरा प्रमोशन होने वाला था, बट कुछ चीजें ऐसी हो गई वहां पे. आई वॉज बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद, तो मुझे ऐसा लगा कि नो, आई थिंक आई शुड जस्ट स्टॉप एंड प्रोबेबली जस्ट यू नो फॉलो माई हार्ट नाउ. तो दिल वहां नहीं था, दिल कहीं और था. तो आई जस्ट फॉलोड माई हार्ट एंड आई मूव टू बॉम्बे.
1: काफी सारे ब्रांड्स के साथ आपने कोलैब किया है, काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं कि कौन कौन से ब्रांड्स के साथ आपने अभी तक काम किया है.
0: हाँ जी, मैंने कोको कोला के लिए काम किया है, मैंने फेसबुक के लिए और मूव और GSK, कैरेट लेन, मैकडॉवल्स नंबर वन सोडा, एंड मैंने म्यूजिक वीडियोज भी किए हैं. मैंने अंकुर तिवारी के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया है फॉर MTV साउंड ट्रिपिन, एंड रिसेंटली मैंने एक और म्यूजिक वीडियो किया है जो टी सीरीज में आने वाला है. सो यस एंड या.
1: तो ये फीलिंग कैसी होती है जब आपने सपना देखा था कि मैं मुंबई जाती हूँ, कुछ करती हूँ, और अब जब आपकी वीडियो आती है, आपका एड आता है, आप बड़े पर्दे पे आते हैं और घर वाले देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं, तो वो फीलिंग कैसी होती है?
0: आई थिंक दैट फीलिंग इज समथिंग आई रियली कैन नॉट एक्सप्रेस. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो वो फीलिंग ही अलग ही होती है. मतलब आप सब कुछ भूल जाते हो, बिकॉज दैट इज वॉट आई लव टू डू. आई मीन कैमरा, आई लव कैमरा, आई लव बींग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. सो इट इज अ ग्रेट फीलिंग विच आई लिटरली कैन नॉट एक्सप्रेस. इट्स लवली.
1: टॉकिंग अबाउट योर एजुकेशन, तो आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है अभी तक?
0: So, I have not really gone to college. I don't have a degree. I have a diploma in acting and production. Mm-hmm. I was in Noida Film City after my school. After my schooling, I told my family that मुझे बॉम्बे आना है, but लेकिन उन्होंने मुझे आने नहीं दिया बॉम्बे. मैं बहुत ज्यादा यंग थी उस टाइम, एंड my dad never like took me seriously कि आ रहे यार, कहाँ इतनी छोटी हो अभी, तुम बॉम्बे जाओगी, ऑडिशंस वगैरह दोगी, यू नो नहीं जाना. तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा ना रिबेलियस हो गई थी कि नहीं यार, फिर मुझे भेजा ही क्यों आपने, यू नो नोएडा क्यों भेजा आपने मुझे ये कोर्स करने के लिए. तो आई वाज लाइक अब तो मुझे निकलना ही है घर से. तो मैंने रैंडमली फिर जॉब अप्लाई कर दिया इंडिगो में, एंड आई गॉट थ्रू एंड आई गॉट द जॉब. एंड मैं भूल गई अपना यू नो एक्टिंग वैक्टिंग भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माय जॉब. बट
1: वो कहते हैं ना कि जहां पहुंचना होता है इंसान को,
0: हाँ,
1: तो कैसे भी पहुंच जाता है.
0: एग्जैक्टली, आई थिंक वो चीज है, वो चीज मैं समझ चुकी हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा करके ना वो लाइफ इज लाइक अ सर्कल, तो कहीं ना कहीं वो आपको पहुंचा ही देती है जहाँ पे एक्चुअली आपको पहुंचना होता है. सो इट इज लाइक दैट. बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो चीजें आप प्लान करके चलते हो ना लाइफ में, वो कभी नहीं होती.
1: वो कभी नहीं होती है.
0: सो आई फील दैट इट्स बेटर नॉट टू प्लान थिंग्स. आई डोंट नो, इट्स जस्ट Let life happen to you.
1: Walk Talk Radio. So you work in Bombay, but you are a Dunite girl. So quickly answer Bombay and or Dehradun and why?
0: Always, always, always Dehradun. I think मैंने काफी travel किया है, और travel करके मुझे ये पता चला कि देहरादून जैसी city इस दुनिया में नहीं है. I think देहरादून is an emotion and हर चीज मैं देहरादून की मिस करती हूँ जब भी मैं बॉम्बे में रहती हूँ. देयर इज नथिंग विच आई डू नॉट मिस अबाउट देहरादून.
1: जैसे क्या क्या चीजें हैं जो आप मिस करती हैं देहरादून की?
0: फर्स्ट इज मोमोज. आई लव मोमोज. मतलब एक तो बॉम्बे का खाना इतना खास नहीं, बिकॉज हम नॉर्थ इंडियंस हैं, तो यार हमें चाहिए थोड़ा स्पाइसी और बटर चिकन प्रॉपरली, यू नो मोमोज की चटनी, ये वो सब कुछ. तो आई मिस द फूड, आई मिस द वेदर, आई मिस द पीपल फ्रॉम देहरादून, बिकॉज यहाँ पे वो सिंप्लिसिटी है लोगों के अंदर अभी भी. अभी भी लोग इतने ग्राउंडेड हैं, मतलब इट्स जस्ट आई मिस दैट थिंग अ लॉट फ्रॉम देहरादून.
1: और आपको क्या लगता है एक एक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ मैनेज करना?
0: आई थिंक इट इज डिफिकल्ट. It is difficult for a lot of people. मतलब वो आपकी वायरिंग पे डिपेंड करता है, हाउ यू बेसिकली परसीव थिंग्स. बट बॉम्बे में सब कुछ इतना ज्यादा फास्ट है, सब लोग भाग रहे हैं, लाइक पीपल आर जस्ट रनिंग बिहाइंड थिंग्स. तो कभी कभी ऐसा होता है कि यू जस्ट लूज इट, आप खो देते हो खुद को भी. हाँ, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ हाउ यू परसीव थिंग्स, एंड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ all these things that you need to keep your personal life separate and your professional life separate, because har cheez aapke kaam ke aas pass revolve nahi karti. everything doesn't revolve around your work. You have a personal life also, which is separate, and just enjoy it. I mean, theek hai.
1: So what is that feeling जब आप वापस आती है मुंबई से या बॉम्बे से काम करके देहरादून आ रही होती हैं, तो कैसा लगता है आपको?
0: मतलब आई थिंक दैट इज वन फीलिंग विच आई लिटरली लिव फॉर. जो मैं ये चीजें जो मैं कर रही हूँ वो मैं इसी फीलिंग के लिए कर रही हूँ, इज दैट कि जब मैं शूट के बाद जब मैं वापस घर आ रही होती हूँ या मैं अपने बॉम्बे वाले घर या यहाँ पे आ रही होती हूँ, आई थिंक दैट फीलिंग इज समथिंग विच इज मतलब एक वो सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग होती है कि यार आज कुछ किया है, आज मैंने वो किया है जिससे मैं प्यार करती हूँ. नो लाइक आई लव व्हाट आई डू राइट नाउ एंड आई एम गोइंग बैक होम डूइंग दैट. तो दैट वो फीलिंग के लिए आई लिव फॉर दैट फीलिंग. सो आई थिंक वही है.
1: और बहुत कम लोग होते हैं जो ना अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो वो उसी में रह जाते हैं, यार काश मैं ये बन जाता या काश मैं वो कर लेता.
0: एग्जैक्टली.
1: लेकिन आपने बहुत से बड़े बड़े एक्टर्स और सिंगर्स के साथ भी काम किया है, रणबीर कपूर, अरमान मलिक, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, जिनको आपने पहले कभी टीवी पे देखा है या सुना है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था?
0: वो एक्सपीरियंस मतलब जब मुझे व्हेन आई गेट दीज प्रोजेक्ट्स, तो वो बहुत मुझे ऐसा ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि मुझे ऐसा एक्साइटमेंट नहीं हुई कि यार आज मैं माय गॉड इनके साथ काम कर रही हूँ उनके साथ. बट द एक्सपीरियंस द फीलिंग आपको वो तभी आती है जब आप सेट पे उनके साथ होते हो. देन यू गेट दैट कि यार ओके I'm actually working with these people. But when I worked with MS Dhoni, I did this ad. Oh my God, I think he is so sweet.
1: Captain Cool.
0: Very like humble and grounded, and he's talking to me. He's like, even my wife is also from Dehradun. So I was like, I'm also from Dehradun. And he's just like, तब मुझे ऐसा लगा कि वाओ यार लाइक सच अ
1: ही इज MS Dhoni और MS Dhoni होके भी इतना काम और
0: Exactly.
1: आपने अभी ट्रैवलिंग की बात भी करी, आप अपने काम के सिलसिले से ट्रैवल करती हैं और जब इंडिगो में थी तब भी ट्रैवलिंग होती थी. तो व्हेन यू वर्क इन सच अ फील्ड, तो हाउ डज ट्रैवलिंग टू डिफरेंट सिटीज और इवन कंट्रीज इवॉल्व यू एज अ पर्सन?
0: इट डज इवॉल्व यू एंड आई थिंक ट्रैवलिंग इज वन थिंग के मुझे ऐसा लगता है कि काम के अलावा हम सबको ट्रैवल करना चाहिए. मतलब आप जितना भी कमा रहे हो उससे थोड़ा सा आप अपना 20-30% पैसा अलग करके वी ऑल शुड ट्रैवल. मतलब आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ विच विल इवॉल्व यू इनटू अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग. सो सर्टेन थिंग्स जो मैंने लाइफ में अडेप्ट करी है वो ट्रैवलिंग से ही करी है. आप जिस तरीके के लोगों से मिलते हो, आप अलग अलग लाइफ स्टाइल, अलग अलग कल्चर्स देखते हो, इट्स सो डाइवर्स आउट देयर. सो या इट विल चेंज यू समवेयर.
1: मैंने कहीं पे पढ़ा था आपने एक गाना लिखा भी, आप लिखती भी हैं.
0: हाँ.
1: तो उस गाने की अगर एक दो लाइन अगर आप गा दें, बता ही दें मतलब कि
0: हाँ मैंने गाने लिखे हैं. एक्चुअली देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु इज वन ऑफ द रेनाउंड लिरिसिस्ट इन द इंडस्ट्री, तो उनके साथ मैंने काम किया है. बट एक गाना है जिसमें मुझे एक्चुअली एज अ लिरिसिस्ट मेरा नाम आया था, विच इज कॉल्ड किलर हसीना फॉर टी सीरीज, एंड दिस वन वॉज फॉर अर्जुन काननगू एंड तुलसी कुमार. सो मी एंड द अदर पर्सन वायु, हम दोनों ने साथ में ये गाना लिखा था. तो नॉट जस्ट दिस, आई डू राइट स्टोरीज ऑल्सो. आई एम राइट नाउ लर्निंग कॉपी राइटिंग एंड कॉन्टेंट राइटिंग ऑल्सो. सो बेसिकली आई एम गोन बी वर्किंग ऑन एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड कैंपेन्स. तो आई जस्ट वॉन्ट टू एज एन आर्टिस्ट आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर
1: क्रिएटिविटी होनी चाहिए.
0: हाँ मतलब और जगह भी मुझे एक्सप्लोर करना है. सो इस वजह से अभी मैं कॉपी राइटिंग में भी घुस रही हूँ. सो बेसिकली आई विल बी अ कॉपी राइटर, सर्टिफाइड कॉपी राइटर नेक्स्ट मंथ. तो मेरा नेक्स्ट मंथ मेरा कोर्स खत्म हो रहा है.
1: अच्छा. किलर हसीना की कोई हुक लाइन या दो लाइंस कुछ भी?
0: किलर हसीना हसीना आ जान ले ले किलर हसीना
1: तो ये डांस और पेपी टाइप का सॉन्ग होगा.
0: इट्स अ प्रॉपर बॉलीवुड नंबर. मतलब ये तो बहुत मजा भी आता एक्चुअली इसको लिखने में, बट प्रॉपर बॉलीवुड नंबर है ये.
1: तो ये लिखने की जो जर्नी है ये भी बहुत पहले से ही है या अभी साथ साथ आप लिखने लगी हैं?
0: ये बहुत पहले से है एक्चुअली, बचपन से है. पर लेकिन अब मैंने इस पे प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दिया है बिकॉज बहुत ज्यादा जरूरी है. एट द एंड ऑफ द डे आई वॉन्ट टू गेट इन टू समथिंग विच इज कि कैमरे के पीछे भी क्या होता है, मतलब मुझे उस पर भी काम करना है, दैट आई वॉन्ट टू गेट इन टू स्क्रिप्ट राइटिंग एंड यू नो लाइक एक एड को, मैंने एड्स वैसे बहुत सारे किए हुए हैं एज एन एक्टर, बट नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट एड्स ऑल्सो.
1: बनता कैसे
0: है? लिखते कैसे हैं, यू नो प्रॉब्ली आई वॉन्ट टू डायरेक्ट ऑल्सो वन डे एड्स और फिल्म्स व्हाटसोएवर. सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग इन टू कॉन्टेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग.
1: बहुत ही अच्छी बात है कि सीखने की चाह हर चीज में है.
0: हाँ.
1: किसी एक चीज को आप स्टिक नहीं कर रही हैं.

0: रॉक टॉक
1: रेडियो। जीवन में कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम नहीं बढ़ाते। अगर आप कहीं जा रहे हैं और सोचे कि बहुत दूर है और वहाँ के लिए आप निकल ही ना पाओ, तो जहाँ हो वहीं रह जाओगे। लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम ही सही अपने एम की तरफ बढ़ाते हो, तो धीरे धीरे करके रास्ता पार हो ही जाएगा।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और वॉक टॉक रेडियो में मैं हूँ आपके साथ किरण। वॉक टॉक रेडियो पर जो हमारी पॉडकास्ट सीरीज है उसमें बहुत सारे अलग अलग लोग अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेकर और अपने बहुत सारे थॉट्स को लेकर हमारे साथ बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। और इसी पर आज हमारे साथ हमारी पॉडकास्ट सीरीज में मेरे साथ इस वक्त जो स्टूडियो में मौजूद है उनके बारे में आपको बता दूं, इनका नाम है कृतिका गुरुंग और एक बहुत ही प्यारा सा स्टार्टअप इनका है जिसका नाम है एवांते। तो सबसे पहले कृतिका बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉक टॉक रेडियो पर।
2: थैंक यू सो मच किरण फॉर हैविंग मी।
1: कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आकर?
2: बहुत अच्छा लग रहा है।
1: रेडियो का मतलब क्या है आपकी लाइफ में?
2: रेडियो का मतलब है टू कनेक्ट पीपल थ्रू आर वॉइसेस, थ्रू आर स्टोरीज, थ्रू आर जर्नीज।
1: हाँ, सो कृतिका सबसे पहले जो है मैं आपसे ये पूछूंगी कि कृतिका गुरुंग कौन है, क्या करती है एंड क्या करना चाहती है लाइफ में आगे, क्योंकि जो हमारे लिसनर्स सुनेंगे उन्हें आपके बारे में अभी कुछ नहीं पता।
2: सो कृतिका गुरुंग, शी इज अ ऑर्डिनरी गर्ल हु लव्स शॉपिंग, हु लव्स क्रिएटिविटी एंड छोटे से शहर से है, छोटी सी जगह से है, डोईवाला।
1: हाई फाई, मैं पासी से हूँ,
2: पास पास वाली जगह से है। और मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ग्राफिकेर हिल यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश ऑनर्स, देन एम ए इंग्लिश 2021 में कंप्लीट हुआ है। सो लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, खाली थी और क्लासेस भी ऐसी चल रहे थे, ऑनलाइन चल रहा था, तो क्या हुआ कुछ ना कुछ चलता रहता था क्रिएटिविटी ना, कि क्या किया जाए, मतलब कुछ ना कुछ लाइक स्क्रैप बुक वगैरह हो गया या फिर कार्ड्स बनाना, ये सारी चीजें मुझे पहले से बहुत पसंद था। एकदम से माइंड में क्लिक हुआ कि एक आईडी बना लेते हैं, तो फिर माइंड में आया कि चलो स्क्रंची से स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रंची से स्टार्ट किया मैंने एंड उस टाइम पे मेरे जो जूनियर्स रहे हैं कॉलेज के इंग्लिश ऑनर्स के बैच के, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे ना।
1: कैसा सपोर्ट?
2: उन्होंने काफी ज्यादा पोस्ट वगैरह शेयर किया, खरीदा मुझसे काफी स्क्रंचीज, तो मेरे लिए वो काफी मोटिवेटिंग था उस टाइम पे ना। अगर आप कुछ सामान बना रहे हो या फिर कुछ आपने ला के रख दिया दुकान में, आपने दुकान भी खोली, कोई खरीद ही नहीं रहा है, कोई कस्टमर ही नहीं है, तो एक बहुत ज्यादा ना डीमोटिवेशन टाइप का हो जाता है आपके लिए। हाँ, लेकिन आपने कुछ स्टार्ट किया है एंड लोग आपको
1: अप्रिशिएट
2: कर रहे हैं, आपको आगे वो कर रहे हैं, फेमस टाइप का कर रहे हैं थोड़ा बहुत छोटा मोटा करके, लेकिन हाँ वो काफी मेरे लिए उस टाइम पे मैटर करता था, उस टाइम पे अभी भी मैटर करता है। तो ऐसे स्टार्ट हुआ एवांते का जर्नी।
0: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो।
1: तो जब ये स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बिल्कुल डिफरेंट है ना, वो बिल्कुल पढ़ाई वाला है एकदम, और ये जो आप काम कर रहे हो एवांते के अंदर वो एक क्रिएटिव साइड है आपका, तो उस टाइम पे घर वालों को ऐसा नहीं लगा कि क्या कर रहे हो, कॉलेज तो किसी और चीज की फीस हम दे रहे हैं और तुम जो चूज कर रही हो, काम कर रही हो, वो कुछ और ही है, तो उनका क्या रिएक्शन था उस पर?
2: बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफरेंट, बट मेरा ये है कि अगर मैंने कुछ चीज स्टार्ट किया है या फिर कुछ ठान लिया ना, फिर फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी बोले, तो करना है तो करना है, चाहे मैं रात के 2 बजे तक करूँ, चाहे 3 बजे तक करूँ, और मॉर्निंग में उठ के और फिर मुझे कॉलेज भी जाना पड़े ना 7 बजे, तो चलता है मेरे लिए ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है।
1: बड़ी बिंदास आपका जो थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे था,
2: ये चीज माइंड में थी तो फिर करती गई। हाँ, पेरेंट्स बोलते थे कि कुछ जॉब वॉब का देख लो, बाकी साइड बाय साइड में अपना पढ़ रही थी उस टाइम पे, और कॉलेज भी फिर खत्म हो गया और कॉलेज में कुछ प्लेसमेंट का भी कुछ आया नहीं उस टाइम पे, तो एक तरह से ना माइंड में थोड़ा डिप्रेसिंग भी हो रहा था वो साइड बाय साइड, बट एवांते मेरे लिए ना एक वो था खुद को हील करने का ना। हम किसी न किसी चीज के थ्रू खुद को हील करते हैं, कोई घूम के करता है ना, और तो मेरे लिए वो थी क्रिएटिविटी।
1: अच्छा,
2: तो उसी में मैं बिजी रहती थी, कभी उसका कंटेंट बनाने में, कभी उसको बनाने में उसी चीज को, या फिर उसको पिक्चर्स क्लिक करने में, फिर सोचने में कि अरे इसका क्या नाम रखना चाहिए, इस वाली स्क्रंची का इसको कैसे हम डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे रीच बढ़ाया जाए, तो माइंड में वो चलता रहता था। तो मैंने ज्यादा ना उस चीज को, जो चीज है नहीं उस चीज को मैंने ना ज्यादा उस टाइम पे सोचा नहीं कि जॉब नहीं है करके, तो इसी सोच के लेके मैं

0: आगे बढ़ती गई, तो
1: हाँ
0: ऐसे ही अब 2 साल भी हो गए बांधे को।
1: हाँ हाँ हाँ मतलब वो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उस बात का दुख नहीं मनाया, बट ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने अपने आप को टाइम दिया उस टाइम के लिए कि कोई बात नहीं, वो कर रहे हैं तो करने दो, मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी।
2: Walk Talk Radio, tune in for a better life. Walk Talk Radio.
1: कि जब आपके घर वाले आपका सपोर्ट करते हैं, उसके बाद जो बाहर वाले होते हैं ना, वो बहुत बड़े हमारे क्रिटिक्स बहुत सारे आते हैं इधर उधर से, कुछ कहते हैं कुछ कहते हैं, लेकिन कई लोगों को ना वो चीज तोड़ देती है।
0: लाइक मैंने आपको बताया मैंने स्क्रंची से स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, मार्केट में जाके फैब्रिक चूज करती थी। अगर आप कुछ अपने लिए लहंगा भी बना रहे हो या फिर नॉर्मल एक सूट या कुर्ती ले लो, तो आप कुछ फैब्रिक देख के लड़के को होता है ना, खुद को इमेजिन कर लेती हो कि इसका ये वाला इस फैब्रिक का कि ओके इस फैब्रिक में और इस प्रिंट में और इस एम्ब्रॉयडरी में ये स्क्रंची बहुत अच्छी
1: एस्थेटिक
0: लगेगी।
1: सेंस
0: हाँ, तो वो चीज था पहले से ही ना, बट सुनने में ये आता है कहीं से, पता लगता है कि ये ना बचे हुए कपड़ों का बनाती होगी ये लड़की, उन्हें पता भी नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं वांथे में चल क्या रहा है, बट बातें कैसे बनाएंगे ना फिर अगर देख लेंगे तो। तो ये चीज सुनने में आती थी, तो लगता था कि भाई क्या ही क्यों ही बोलना है ऐसे लोगों से, सोचने दो उन्हें जो सोचना है, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, सो लेट इट बी, आप जाओ आप जिसको जो बातें करनी है करो, मैं ऐसी खुश हूँ मैं ऐसी कर रही हूँ।
1: तो उस वक्त, अब ये तो रही क्रिटिसिज्म वाली बात, एप्रिसिएशन की बात करूँ या फिर कॉम्प्लीमेंट्स की बात करूँ आपके वर्क को लेके, लेकिन जब किसी का कॉम्प्लीमेंट आता है, जब कोई कह देता है यार बहुत अच्छा कर रही हो, तो बड़ा अच्छा लगता है, तब सेटिस्फेक्शन होता है, हाँ मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ। तो वो कॉम्प्लीमेंट्स कौन कौन से थे, कहाँ से आए हो?
0: जब स्टार्टिंग में क्या हुआ, नॉट स्टार्टिंग, लास्ट ईयर की बात है, जब मैंने एक मैम है दैट सिली वॉन्डर करके उनका इंस्टाग्राम में नेम है, मिनर्वा मैम उनका नाम मिनर्वा है, तो उस टाइम पे मैंने उनको कोलैबोरेशन के लिए पूछा था, तो उन्होंने पेज वगैरह चेक किया, उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कोलैबोरेट किया, और उनके मतलब जब उन्होंने कोलैबोरेशन किया तो काफी फॉलोवर्स भी आए, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया उस चीज को ना, काफी अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया अपने कोलैबोरेशन वाली रील पे, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा ना एक माइलस्टोन टाइप था उस टाइम पे। ओके, और उसके बाद चीजें काफी अच्छी होने लगी।

0: के लिए खराब भी है, और अगर हम उसको अच्छे से इस्तेमाल करें, उसका सही इस्तेमाल करना जाने, तो वो हमारे लिए एक एडवांटेज भी हो सकता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस है?
1: ऐसे कलेब्रेशन को लेके बोला ना आपने, लाइक उस टाइम भी मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले, जैसे मैंने आपको मिनर्वा मैम का बताया, और भी है दो तीन जो बहुत सपोर्ट करते हैं, जो रील्स वगैरह शेयर करते हैं, पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं, जिनकी ऑलरेडी मतलब केज में है फॉलोवर्स। इस बीच ऐसी चीजें भी हुई है जब मैंने ऐसे गलत लोगों के साथ कोलैबोरेट कर लिया, वो भी पेड कोलैबोरेशन, फर्स्ट और लास्ट टाइम था वो, जहाँ पे मैंने अपने प्रोडक्ट्स भी बहुत दिए, ठीक है, और पेड कोलैबोरेशन था, पैसे भी दिए, लेकिन ना उसमें एक फॉलोवर आया, ना उसमें कोई कुछ रिव्यू वगैरह इतना कुछ था नहीं, क्योंकि उन्होंने अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं किया, और वो भी चीज बार बार बार बार बोलने पे। एंड जब आप बार बार किसी को बोलते, फिर वो बोलते हैं कि यू आर रेस्टलेस, वाई यू आर बींग सो रेस्टलेस। तो हम बोलते हैं ना, जैसे अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, आई एम नॉट से कि वो बुरी है या वो, लेकिन जब आप कुछ काम कर रहे हो, आप उस चीज पे प्रोफेशनली उस चीज को डील कर रहे हो, तो भले वो स्मॉल बिजनेस हो या बिग बिजनेस हो, आप उस चीज को जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपको पेमेंट मिल चुकी है, तो आपको वो चीज भी उतनी ही श्रद्धा से करनी चाहिए जितनी आपने बाकी चीज को किया है। एंड वो चीज उन्होंने की नहीं, तो वो बहुत डिसहार्टनिंग था मेरे लिए। तो ये चीज भी आई डोंट नो कि कितनी आनी चाहिए उस सोशल मीडिया में, लोगों को कैसे पता लगना चाहिए कि हाँ कौन फेक है, कौन ऑथेंटिक है, कौन रॉ है, और कैसे कर रहा है अपनी चीजों को। सबका अपना अपना वे है, बट इन सब चीजों में बिजनेस ओनर्स को मैं यही बोलूंगी कि बहुत सोच समझ के स्टेप ले जब हम कोलैबोरेशन वगैरह करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर्स कैसे आते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, एक टाइम पे एक वो हाइट पे भी चले जाते हैं कि बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, बट फिर वही ना, जैसे हम बिजनेस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं,
0: हाँ,
1: बहुत ऊपर भी जाते हो तो फिर उसी हिसाब से नीचे भी
0: नीचे
1: आते हो,
0: भी आते
1: तो वो
0: हैं।
1: बैलेंस करना भी है। तो जब हम किसी पे स्पेंड कर रहे हैं कोलैबोरेशन वगैरह में, तो सोच समझ के उतना आपको रीच आना भी चाहिए जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं।
2: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। और आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेशन, जिसे आप पलायन भी जानते हैं। बाकी नहीं, हम अपने उत्तराखंड की बात करें, जो 2000 में बनाया गया था, इसमें बहुत सारे रीजंस थे उत्तराखंड को बनाने के लिए, लेकिन उसमें से दो तीन रीजन ये थे कि उत्तराखंड एक छोटा स्टेट रहेगा, उसमें डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है और रोजगार मिलेगा, लोग पलायन नहीं करेंगे। लेकिन आज शहरी जिंदगी के आकर्षित होकर जो हमारे युवक हैं और अन्य लोग हैं उत्तराखंड के, वो पहाड़ छोड़कर शहरी जिंदगी जीने के लिए अलग अलग जगह जा रहे हैं। वो दिल्ली जाते हैं, अलग शहरों में जाते हैं, और वहां जाते ही उनके सपने टूट जाते हैं। एक छोटा सा कमरा होता है, रोजगार के लिए छोटे मोटे उन्हें काम करने पड़ते हैं, वो लौट के नहीं आते हैं, जिंदगी में वैसे ही निकल जाते हैं। पहाड़ों पर होते हैं, वो ये सोचते हैं कि शहर में उनको सैलरी अच्छी मिल रही है, वहां जाके उनकी कमाई अच्छी होगी, लेकिन वो एक चीज ये भूल जाते हैं कि शहरी जिंदगी में शहरी खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं, तो जितना वो पहाड़ों पे उन्हें मिल रहा था, उतना ही उन्हें शहर में भी मिलता था। सरकार ने बहुत सारी नीतियां निकाली हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों के लिए, होम स्टे जैसी चीजें, छोटी मोटी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने, उन्हें प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बहुत सारी चीजें प्रयास करी है। अगर आप उत्तराखंड में ही रहें और उत्तराखंड को देखें, उत्तराखंड में क्या कुछ नहीं है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं उत्तराखंड में। केदारनाथ हमारे पास है, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, अन्य टूरिस्ट स्पॉट्स हमारे पास हैं, क्योंकि पहाड़ों पर आप पे खुद का घर है, खुद की जमीन है, खेती है, अलग तरीके के रिसोर्स हैं, दोस्त हैं, एक हिम्मत बनती है, कॉन्फिडेंस बनता है। लेकिन तब भी हमें वो शहरी जिंदगी, जो वेस्टर्न कल्चर हमारे दिमाग में बहुत पहले डाल दिया गया था, वो अभी तक निकला नहीं है। हमें अभी भी दिखावटी रूप में शहरी जिंदगी जाना है, ताकि हम बोल सकें कि मैं शहर में नौकरी करता हूँ। लेकिन वो दुख और जो तकलीफें शहर के व्यक्ति को प्लान करके जो सहनी पड़ती हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो क्यों ना हम अपने यूथ को और आसपास जितने भी, उन सभी को समझाएं। आप खुद ये सोचिए कि क्या नहीं हो सकता है उत्तराखंड में। इसे हम देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं, और देवभूमि जिसे हम देवों की भूमि कहते हैं, तो क्या देवों का आशीर्वाद नहीं होगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, इको पार्क स्टार्ट कर सकते हैं, होम स्टेज हो सकते हैं, होटल्स हो सकते हैं, अन्य चीजें हैं, आयुर्वेदों से जड़ी बूटियां हो सकती हैं, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो आप इस बारे में सोचिए कि क्या पलायन करना जरूरी है, क्या उत्तराखंड

में रोजगार नहीं बनाया जा सकता, नए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आइडियाज जागरूक नहीं किए जा सकते। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबिस्ट वर्ल्ड। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। हम बात करने वाले हैं राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। आप ज्यादा नहीं, बस 20 साल पहले देखिए, जब मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था, पुराने लोगों को ज्यादा अच्छा फील होता था, क्योंकि जब फोन नहीं थे वो अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, उनकी अलग हॉबीज होती थी। लेकिन जब से फोन आया है, जब से हमारे पास सोशल मीडिया और इंटरनेट आया है, तब से हमें अनयूजफुल, फेक, मोल्डेड और फैब्रिकेटेड न्यूज और इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलती, और जिसमें हमें ज्यादातर हमारी जो मेन फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन्हें छुपा दिया जाता है। मेरा मानना है कि अगर सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, अगर इसका हम सही इस्तेमाल नहीं करें तो ये एक बीमारी है जो ड्रग से भी खतरनाक है। एक इंसान पूरे दिन सोशल मीडिया पे बस स्क्रॉल कर सकता है, बिना कुछ खाए, एक ही जगह पे बैठे हुए, एक ही पोजीशन पे बैठे हुए, बिना कुछ कंस्ट्रक्टिव किए वो बस सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर सकता है। इसका एक और एग्जांपल है, अगर आप किसी बच्चे को अपना मोबाइल दे दें और वो पूरे दिन बस उस मोबाइल पे गेम्स खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है, और आप शाम को रात में उससे जाके पूछिए कि आज आपने पूरे दिन फोन यूज किया, आपने आज क्या सीखा, तो आंसर आपको एक ही मिलेगा कि कुछ नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि सोशल मीडिया का जहां पे हमें सही उपयोग करना था, वहां पे हम उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट में सिर्फ गलत प्रभाव ही है, इसमें बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी की पहले से और आज में बहुत सारी चीजों में सुधार भी लाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एजुकेशन में बहुत हेल्प किया है। नेचुरल डिजास्टर्स होते थे, आपके पास सूचना पहुंच सकती है, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, सरकार लोगों के पास आराम से पहुंच सकती है, आपको सही गलत के बारे में बता सकते, डॉक्टर कंसल्टेशन कर सकते हैं, बहुत कुछ जिंदगी में आसान हो गया है। इसी का अगर हम उदाहरण लें तो पहले अगर आपको ट्रेन की रिजर्वेशन करानी होती थी तो आप जाने के लिए तो यहाँ से कहीं जहाँ पे आप हैं वहां से करा सकते थे, लेकिन लौटने की रिजर्वेशन के लिए आपको एक चिट्ठी भेजनी होती थी, जहां से आपको लौटने की रिजर्वेशन करानी है वहां पे वो एक ट्रेन से जाती थी, दो दिन वहां पे अप्रूव होती थी, फिर एक ट्रेन से वापस आती थी। लेकिन आज आप विद इन सेकेंड्स आप बुक भी कर लेते हैं और उसे कैंसिल भी कर लेते हैं। आपको एक व्यक्ति, आपके माता पिता आपको सही दिशा और सही रोड दिखा सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए चॉइसेस नहीं बना सकते हैं। ये आपको चूज करना होगा कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है आज के लिए और कल के लिए, क्या आप उस सोशल मीडिया के माध्यम से या उसके सही उपयोग के माध्यम से आप अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप नेशन को कुछ वापस दे रहे हैं, जितना भी नेशन ने आपको दिया है क्या आप उसे घूम फिर के नेशन को भी कुछ दे रहे हैं, इस बात पे जरूर सोचिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: एक इंसान के अलग अलग मूड्स होते हैं। कभी हम हैप्पी होते हैं, कभी सैड होते हैं, कभी नर्वस होते हैं तो कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन जब हम म्यूजिक सुनते हैं ना, कोई भी गाना सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसी म्यूजिक के मूड में चले जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ म्यूजिक। हेलो, हाय, नमस्कार, दिस इज आरजे गौतम और आज मेरे साथ हैं एक और गौतम, गौतम थापा। अगर आपने इनका नाम नहीं सुना तो इनकी आवाज जरूर सुनी होगी। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू गौतम इन वॉक टॉक रेडियो।
1: थैंक यू सो मच।
0: कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके?
1: बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट, सो थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, बट हाँ, मतलब अच्छा लग रहा है, अभी फीलिंग गुड है।
0: तो उस नर्वसनेस को एक म्यूजिक का फील देते हैं और गाने से शुरुआत करते हैं।
1: श्योर।

0: बात है गौतम, क्या गाया है।
1: थैंक यू सो मच।
0: मुझे भी खुशी हो रही है, मजा आ गया मतलब सुन के।
1: अरे थैंक यू सो मच।
0: तो आपने जैसे अभी हिंदी गाना गाया
1: जी,
0: तो ऐसी और कितनी लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप गाना गा लेते हैं?
1: मैं इंग्लिश सॉन्ग्स भी गाता हूँ, कुछ पंजाबी हो गए और कुछ सूफी हो गए। थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ आजकल जो हमारी कम्युनिटी लैंग्वेजेस हैं, कुछ गढ़वाली गाने प्रिपेयर कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि फरमाइशें काफी आती रहती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और कुछ गोरखाली सॉन्ग्स की फरमाइशें आती रहती हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस चल रही है आजकल।
0: आप गिटार तो बजाते ही हैं?
1: हाँ जी।
0: साथ में और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप बजाते हैं या आपको आता है?
1: थोड़ा बहुत कीबोर्ड प्ले कर लेता हूँ मैं, बाकी गिटार मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट है। अकोस्टिक गिटार ही प्ले करता हूँ ड्यूरिंग माई परफॉर्मेंसेज एंड ऑल। और अभी रिसेंटली 2 सालों से मैंने अपना बैंड फॉर्म किया है। तो एक बैंड, फुल बैंड में आपको पता ही है कि 4 लोग होते हैं, एक वोकलिस्ट होता है, लीड गिटारिस्ट होता है, बेस गिटारिस्ट होता है और ड्रमर होता है। तो बेस गिटारिस्ट की जगह हमारे पास थी नहीं, तो बेस गिटार भी आजकल मैं प्ले करके ही गाता हूँ।
0: क्या बात है।
1: तो ऐसी चीजें हैं बस।
0: एक आर्टिस्ट के लिए ना उसका पहला गाना बहुत ही स्पेशल होता है।
1: हाँ जी।
0: तो आपको कुछ याद आ रहा हो आपका पहला गाना आपने लिखा हो, गाया हो, या कोई भी मेमोरी हो ऐसी?
1: जी, पहला गाना जो मैंने कंपोज किया है, मेरा खुद का सॉन्ग है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो ये खुला आसमां जो है उस गाने के बोल हैं। तो ये गाना मैंने बहुत पहले, आई बिलीव बैक इन 2004 मैंने ये गाना लिखा था, तो कभी मौका मिला नहीं, कंपोज भी खुद ही किया था बीच में, क्योंकि कभी हम लोग इस फील्ड में थे नहीं पहले म्यूजिक में। म्यूजिक में मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, पर हाँ जब आया हूँ तो बड़े अच्छे तरीके से ही आया हूँ। तो तब मैंने इस गाने पे और काम करना शुरू किया, तो जो पुराने लिरिक्स थी उस गाने की वो भी थोड़ी सी मॉडिफाई करी इस टाइम के हिसाब से। तो दैट सॉन्ग इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, गाने का नाम है ये खुला आसमां।
0: जैसे आपने अभी म्यूजिक में आने की बात करी
1: जी,
0: तो ये म्यूजिक का शौक, ये सिंगिंग का शौक, ये आपने सिर्फ एक एज अ शौक करा है या इसकी आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली है?
1: जी, मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली है। मेरे गुरुजी हैं पंडित मुरलीधर जगुड़ी जी, तो वो मेरे ही स्कूल में म्यूजिक टीचर थे, तो उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि मुझसे म्यूजिक सीखो। तो मैंने 6 साल का विशारद किया है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, वोकल सीखे हैं, मतलब वोकल सीखे, पर उसके बाद मैं प्रोफेशनली कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि वही आपको पता ही है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो घर से आपको प्रेशर होता है कि पहले पढ़ाई पूरी करो, पढ़ाई के बाद फिर नौकरी करो तो वो वाला प्रेशर था। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली ये सब करने के बाद मैं आया म्यूजिक की फील्ड में। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड वर्किंग, 4 साल मैंने नौकरी करी। नौकरी के दौरान मैंने यूएस भी ट्रैवल किया, मेरी कंपनी ने मुझे बाहर भेजा, मतलब वेल सेटल जॉब थी। फिर मैंने वापस आके दोबारा देहरादून में वापस आया, फिर मैंने एमबीए किया, एमबीए के बाद भी मैंने 2-3 साल नौकरी करी। पर जब एक पॉइंट आ जाता है आपकी लाइफ में कि नहीं यार, ये चीज के लिए मैं बना नहीं हूँ, एक आपको हिट मिलता है कि मतलब ये चीज ना आप नहीं कर पाओगे, फॉर अ लॉन्ग रन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बचपन से ही शौक था म्यूजिक में आने का। ठीक है, कॉलेज लाइफ में भी हम स्टेज शोज में परफॉर्म करते थे, तो सोचते थे कि यार अब स्टेज वर्क ही करना है। अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती थी, पर क्योंकि नौकरी में इतना व्यस्त होते थे कि आपको नहीं मिलता था इतना टाइम कि आप जाके परफॉर्म भी करो। तो धीरे धीरे ये चीजें डेवलप हुई। 2018 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे म्यूजिक ही करना है। तो अपने आप को प्रिपेयर करा मैंने 3-4 महीने काफी, क्योंकि जब आप स्टेज शोज करते हो, जब आप स्टेज परफॉर्मेंस करते हो, तो आपको एक स्टैमिना चाहिए होता है,
0: बहुत बहुत चाहिए,
1: राइट? आपको कम से कम 2-2.5 घंटे या 3 घंटे आपको परफॉर्म करना है।
0: बिल्कुल।
1: तो आपके वोकल कॉर्ड्स, वोकल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप 3 महीने तक कंटिन्यू, 3 महीने बोल रहा हूँ सॉरी, 3 घंटे तक आप कंटिन्यू गा सके। 3 महीने इसलिए निकला मेरे मुंह से क्योंकि 3 महीने मैंने प्रिपरेशन करी थी डेली। तो उसके बाद मेरे को पहला ब्रेक जो मिला वो मुझे मिला जयपुर में। जयपुर से मेरी स्टार्ट हुई 2018 में। 6 महीने मैंने वहां के क्लब्स एक्सप्लोर करे, धीरे धीरे अपना बिल्डअप किया, अपने सॉन्ग लिस्ट चेंज करता रहा, क्योंकि एक टाइप के सॉन्ग्स अगर आप गाते रहेंगे तो आपकी ऑडियंस भी बोर
0: हो जाती है।
1: एग्जैक्टली, आपकी ऑडियंस बोर हो जाती है। फिर आपको इतने गाने प्रिपेयर करने हैं क्योंकि आपके रिक्वेस्ट बहुत आती है, अब कुछ रिक्वेस्ट मैं फुलफिल कर पाता हूँ क्योंकि मैंने वो गाने सुने हैं, मैं वो गाने प्रिपेयर कर चुका हूँ, कुछ कभी कभी नहीं हो पाता। फिर 2019 में मैं देहरादून आ गया, जब मुझे पता चला कि देहरादून में भी लाइव म्यूजिक का स्कोप बढ़ रहा है, बहुत सारे क्लब्स यहाँ पे खुले थे। सबसे पहला क्लब था ग्रेट इंडियन पब, जो कि आपके राजपुर रोड में है। फिर आपका टॉनिक है, जो कि आपके टूवर्ड्स बल्लूपुर रोड में है। तो टॉनिक से मेरी शुरुआत हुई थी, और अभी ऐसा है कि 5 साल हो गए मुझे टॉनिक में परफॉर्म करते करते, तो बस जर्नी वहीं से शुरू हुई म्यूजिक की और कंटिन्यू है अभी तक।
0: आपने जर्नी की बात करी और अपनी पूरी कहानी के बारे में हमें बताया, लेकिन एक ऐसा जो आप एक पॉइंट आता है जब बंदे को हिट करता है,
1: हाँ जी,
0: यार नहीं अब नहीं करनी जॉब, अब मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है,
1: हाँ
0: तो वो इंसिडेंट या वो पॉइंट कब था?
1: ये बहुत ही एक अमेजिंग किस्सा है। मैं गया तो था बिजनेस ट्रैवल के लिए अपनी कंपनी की तरफ से। आई यूज टू वर्क फॉर एन MNC उस टाइम पे, 2016 की बात है। हम चैटानूगा गए थे, ऑफिस का क्राउड पूरा एक प्रोजेक्ट लेने के लिए गए थे। तो 2016 में जब चैटानूगा में थे, टेनेसी एक स्टेट है यूएस का, वहां पे एक सिटी है चैटानूगा। फिर चैटानूगा से हम नैशविल गए थे, विच इज अ म्यूजिक सिटी। तो नैशविल में, नैशविल से वैसे आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे सिंगर्स वहां से नैशविल के ही हैं, मतलब
0: जैसे जैसे
1: जैसे आपने सुना होगा एल्विस प्रेस्ली, बहुत ही 60s के जाने माने, अभी तक उनके गाने सुनते हैं, कांट हेल्प फॉलिंग इन लव विद यू उनके सॉन्ग्स हैं, माइली साइरस जो कि लोगों ने सुना ही होगा काफी नाम, शी इज ऑल्सो फ्रॉम नैशविल। तो वो म्यूजिक सिटी है, वहां पे मतलब हर 10 बंदों में से 9 बंदे जो हैं गिटार बजाना जानते हैं। तो वैसी क्लब हॉपिंग चल रही थी हम लोगों की, हमारी छुट्टी थी, हम घूम रहे थे, तो एक कैरियोके नाइट था वहां पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं थोड़े इंग्लिश सॉन्ग्स भी सुनता हूँ, गा लेता हूँ, तो मैं भी चढ़ गया स्टेज पे कि मैं भी गाऊंगा। सो वहां पे लोग थे जो मुझे कह रहे थे कि यू आर एन इंडियन, हाउ कैन यू सिंग इंग्लिश सॉन्ग्स एंड ऑल। तो मैंने कहा नहीं मैं गाता हूँ। तो जॉन डेनवर एक कंट्री आर्टिस्ट है, 60s-70s के ही है ये, तो उनका सॉन्ग है एनी सॉन्ग। तो मैंने जब वो एनी सॉन्ग गाया तो लोग वहां पे थोड़े वो हो गए कि यार ये तो बढ़िया गा रहा है लड़का,
0: इंडियन आदमी ने इतना अच्छा इंग्लिश गा रहा है।
1: बिल्कुल। तो वहीं उनसे, वहीं पे एक जेंटलमैन बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि यू हैव अ वेरी लवली वॉइस एंड यू शुड डू समथिंग विद योर वॉइस। तो वो बात मुझे काफी हिट करी। तो नैशविल में मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं यार अब तो कुछ करना है, अब नौकरी ज्यादा नहीं हो सकती है। कुछ अपना ही करना है।
0: तो नैशविल से मतलब आपने अपनी गाड़ी मोड़ ली?
1: बिल्कुल बिल्कुल। वहां से आने के बाद 6-7 महीने मैंने थोड़ा और काम किया क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट में था। उसके बाद मैंने अच्छे से अपनी जॉब छोड़ी, पूरा अपना क्या बोलते हैं उसको, कौन सा पीरियड होता है वो,
0: नोटिस पीरियड
1: सर्व करके मैंने नौकरी छोड़ी और फिर मैं अपनी म्यूजिक जर्नी मैंने स्टार्ट करी।
0: आपने अभी नैशविल की कहानी सुनाई हमको
1: जी,
0: तो एक गाना फिर इंग्लिश में भी हो ही जाए।
1: इंग्लिश में मैं वही गाना सुनाता हूँ आपको जो मैंने
0: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल,

0: थैंक यू।
1: अब मैं समझा कि वहाँ पर आपको क्यों उस आदमी ने बोला कि भैया अपनी गाड़ी घुमाओ। आप म्यूजिक के फील्ड में इतने टाइम से हैं और काफी तरह के गाने आपने सुने होंगे, गाए भी होंगे, और इतने बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं इस म्यूजिक की फील्ड में।
0: हाँ जी,
1: तो आपका भी जरूर कोई ना कोई रोल मॉडल रहा होगा।
0: हाँ जी, मतलब मेरे तो बहुत सारे रोल मॉडल्स रहे, क्योंकि मैंने हर एक आर्टिस्ट से बहुत कुछ सीखा है। हर एक आर्टिस्ट की जो चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, वो ग्रैब करने की मैं कोशिश करता हूँ। बहुत सारे वेस्टर्न आर्टिस्ट को मैं सुनता हूँ, एल्विस प्रेस्ली हैं, बीटल्स बैंड है, ठीक है, जॉन डेनवर हैं, ये तो हमारे वो हो गए। बाकी हमारे जो इंडियन वो हैं, किशोर कुमार जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, 90s का किड हूँ, तो अपने कुमार सानू जी, उदित नारायण जी, इन सबको सुन के बड़ा हुआ। और मेरे जो पसंदीदा अभी के जो हैं, मतलब जिनको मैं अभी तक मानता हूँ, हरिहरन साहब हैं, सुखविंदर सिंह, उनके जैसी आवाज किसी की नहीं है, मतलब वो डिफरेंट है। और आज के दौर में अगर बात करें तो अरिजीत की टक्कर के सिंगर तो कोई है नहीं, आप सबको पता है और ये सब मानते भी हैं, क्योंकि वो उनका ऐसा जॉनर है कि वो मतलब कोई भी गाना गा सकते हैं और विद दैट ईज वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा है, तो मतलब इंस्पिरेशन मैं हर जगह से लेता हूँ, ऐसा नहीं है। सोनू निगम सर है ना,
1: उनकी जैसी आवाज भी,
0: उनकी भी आवाज जैसी कोई नहीं है,
1: कोई आवाज नहीं है ऐसी।

0: जब ऐसे म्यूजिक की फील्ड में हम जाते हैं या कोई भी इंसान एंटरटेनमेंट की फील्ड को चुनता है तो इनिशियल डेज में काफी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आपके क्या वो चैलेंजेस थे?
1: मेरी लाइफ के तो बहुत बड़े चैलेंजेस थे क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक वेल सेटल्ड जॉब में था, मुझे बहुत अच्छा ऑफर भी था, सैलरी भी अच्छी थी जो कि हर माँ बाप को चाहिए होती है कि चलो बेटे को पढ़ाई करवाई है तो बहुत अच्छे से ये काम भी कर रहा है। तो उस समय ये डिसीजन लेना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, पर दिल से तो करना था, दिल तो मान नहीं रहा था कि अब नौकरी तुमसे होगी नहीं। तो जब मैंने नौकरी छोड़ दी थी तो मैंने 6 महीने तक अपने घर पे नहीं बताया था, मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि ये, मतलब क्योंकि मैं दिल्ली में था तो घर वालों को कोई आइडिया नहीं था इसने नौकरी छोड़ दी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने जयपुर से शुरुआत करी, तो 6 महीने मैंने जयपुर में शोज करे और वो वीकेंड पे मेरे कुछ मैं अपने फेसबुक में या इंस्टा पे पोस्ट कर देता था तो घर वालों को लगता है चलो सैटरडे संडे इसकी छुट्टी होती है तो ये अपनी
0: शौक पूरा कर रहा है।
1: एग्जैक्टली। पर जब मैं 2019 में वापस आया और जब मैंने बताया घर वालों को कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, तो आपको, आप जानते ही हैं इंडियन पेरेंट्स थोड़े से, तो बिल्कुल खफा हो गए मुझसे। काफी समय तक मेरे से बातचीत नहीं हुई, बातचीत भी नहीं करी, मुझे रोज समझाते थे ये क्या डिसीजन ले लिया तुमने इस एज में, हम तो सोच रहे थे तुम सेटल हो गए हो, तुम्हारी शादी करवाएंगे। पर नहीं, मैंने सोचा था जो करना है तो अब करना ही है, क्योंकि दिल में एक बार ठान लिया था कि अब तो भाई म्यूजिक ही करना है और इसके अलावा मैं कुछ और कर नहीं सकता क्योंकि मैं इसी चीज में अच्छा हूं। तो बस डिफिकल्टी यही थी कि घर वाले मान नहीं रहे थे, तो बहुत टाइम लगा उनको समझाने में। फिर एक डिफिकल्ट टाइम और आया था, वो तो सबकी जिंदगी में ही था, जब कोविड का टाइम आया था तो आपके पास कोई लाइव शोज की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो उस समय काफी तगड़ा झटका लगा था। उस समय एक बारी के लिए दिल में ख्याल भी आया था कि यार ये गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कि अभी अगर नौकरी में होता तो कम से कम सैलरी तो आ रही होती। पर वही है कि जैसे कहते हैं लोग कि जहां चाह है वहीं राह है।
0: बिल्कुल।
1: मुझे जूम शोज बहुत मिले, मैंने घर में बैठे बैठे शोज करे उसके बाद, सो आई यूज टू गेट पेड थ्रू यू नो जहां पे जूम मीटिंग कर रहे हैं लोग, तो जूम मीटिंग में लोग मुझे कहते थे कि आपके पास सेटअप है, मैंने कहा बिल्कुल है, तो मैं उनके लिए एक एक घंटे परफॉर्म कर रहा हूँ, वो घर में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। मजा कम आता था लेकिन उनके लिए वो फन था और मेरे लिए मेरी मतलब रोजी रोटी टाइप आप कह सकते हैं। तो कोविड के टाइम पे मैंने जूम में बहुत शोज करे तो ठीक ठाक चला, बहुत अच्छा समय भी नहीं था पर मैं ये कहूंगा कि बहुत बुरा समय भी नहीं था, पर कोविड के टाइम पे मुझे टाइम बहुत मिला अपने आप पे काम करने में, तो ये पॉजिटिव पार्ट था। उसके बाद तो मैंने इतने गाने प्रिपेयर कर लिए कि मतलब अब मेरे पास गानों की कमी नहीं है।
0: बैंक भर लिया
1: मैंने अपना। एग्जैक्टली।
0: अभी हम लाइव रिकॉर्डिंग्स की बात कर रहे थे, लाइव शो की बात कर रहे थे
1: जी।
0: तो एक स्टूडियो में रिकॉर्ड करना
1: जी
0: और लाइव शोज करना
1: जी
0: काफी डिफरेंस होता है,
1: कि
0: आप एक कॉन्सर्ट में या लाइव शो में आप मिस्टेक नहीं कर सकते।
1: ना ना बिल्कुल भी।
0: तो लाइव शो करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं?
1: लाइव शो करने के देखिए डिसएडवांटेज तो मैं कुछ कहूंगा नहीं कि कुछ है, क्योंकि लाइव शोज में एक तो आपको क्राउड रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, आप जब आप परफॉर्म कर रहे हो और आपके सामने कोई क्राउड ही नहीं है तो आपको वो फील ही नहीं आएगी, यू नो। अब हम गाते ही हैं लोगों के लिए और अपने लिए भी गाते हैं, ऐसा नहीं है, बट जब लोग सामने बैठे हों और थोड़ा म्यूजिक को अप्रिशिएट कर रहे हों, जो सुनने वाले लोग हों, तो उनके सामने परफॉर्म करने में बहुत मजा आता है। और जैसा आपने कहा कि क्या डिफरेंस है स्टूडियो और लाइव में, स्टूडियो में आप रिटेक ले सकते हैं, लाइव में आप रिटेक नहीं ले सकते, तो ये पार्ट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अपने बैकग्राउंड के बारे में आप थोड़ा सा और बताएं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड फ्रॉम स्कूल टिल योर कॉलेज क्या क्या आपने कराया?
1: स्कूल मेरा केंद्रीय विद्यालय हाथीबड़कला से है, फिर मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, बीएससी मैंने करा है आपका डीएवी कॉलेज से, फिर आफ्टर डीएवी पीजी 4 साल मैंने नौकरी करी है, मैंने आपको जैसे बताया कि 7-8 साल मैंने नौकरी करी है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में करी है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में करी है। पहले मैं शिपिंग कंपनी में था, फिर मैं एक स्टाफिंग कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल कंपनी थी गुड़गांव में, वहां पे था, तो 4 साल वहां जॉब करने के बाद 2013-14 में मैंने एमबीए किया है, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी से मैं एमबीए हूँ। फिर मैंने बिग बाजार में एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम किया है, जो बिग बाजार यहाँ देहरादून में आया था, फिर मैं वापस नोएडा मूव हुआ दिल्ली। और फिर ये सब जब हो गया, क्योंकि किसी भी कंपनी में मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि मैं शायद बना ही म्यूजिक के लिए, इसलिए मैं हर दो दो साल में स्विच कर लेता था फॉर द ग्रोथ एज वेल. पर वही है कि काम में, किसी भी काम में मुझे मजा नहीं आया, और जब से मैं म्यूजिक में आया हूँ फिर मुझे और कुछ करने का मन ही नहीं करता.
0: बिल्कुल, काम में मजा आना ना बहुत जरूरी,
1: बहुत जरूरी होता है.
0: तो जब गौतम थापा एक स्टूडेंट था या एक नॉर्मल कॉलेज का लड़का था
1: जी,
0: और जब अब आप एक फेमस सिंगर बन गए हैं, शहर में गाते हैं, लोग आपको जानने लग गए हैं
1: जी,
0: तो लोगों के नजरिए में कुछ बदलाव देखते हैं क्या आप?
1: बदलाव एज इन ऐसा कोई बड़ा बदलाव तो नहीं है. स्टूडेंट लाइफ में तो आपको बस आपके फैकल्टीज जानते हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड्स जानते हैं, कॉलेज के लोग जानते हैं. स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने जब ग्राफिस्ट होता है तो परफॉर्म किया है, तो कॉलेज में थोड़ा बहुत फेमस हो गया था. और जब से अब यहाँ देहरादून में करता हूँ तो बहुत ज्यादा फेमस नहीं हूँ मैं, बट हाँ थोड़ा बहुत, थोड़े लोग जानते हैं अब देहरादून में कि हाँ कि गौतम थापा इस क्लब में परफॉर्म कर रहा है, तो चलो हम इस क्लब में चलते हैं आज सुनने के लिए.

नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर, और अब हम बात करेंगे कि आप सभी खुश रहो। तो खुशी है क्या? खुशी एक मन में होने वाली एक सुखद अनुभूति है, एक फीलिंग है जिसमें आप बस सुखी हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने रावण के बारे में सुना होगा। रावण के पास क्या कुछ नहीं था, सब कुछ था, लेकिन तब भी वो सुखी नहीं था। उसने सीता माता का अपहरण कर लिया। और दूसरी ओर आप दूसरे पहलू को देखें तो हमारे प्रभु श्री राम जो राजपाट वगैरह सब कुछ छोड़ के आ गए और एक छोटी सी कुटिया में अपने एक भाई के साथ वन में रहते थे। तो खुशी कोई चीज नहीं है जो आप कहीं से लेके आ सकते हैं। लोग पूछते हैं कि मेरे को खुश रहना है, मैं क्या करूं, मैं खुश कैसे रहूं? तो खुशी एक चीज नहीं है कि आप जाके दुकान से ले आए या मार्केट से ले आए, या फिर ये कोई लिविंग की स्टाइल नहीं है। खुशी तो तब मिलती है जब आप सुखी हैं, टेंशन नहीं है, लाइफ में जैसे हैं जो है उसके साथ आप सैटिस्फाइड है। था मैंने ये कहीं सुना था कि केमिस्ट्री में जैसे हमें पढ़ाया जाता था कि जब एटम या न्यूक्लियस कुछ टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसी तरीके से जब आप दुखी होते हैं, आप टूटते हैं कहीं से, आपका मन टूटता है तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है। तो अपने आप को थैंकफुल करिए कि आपकी जो एनर्जी है इसको आप सही जगह डाल के आप खुशी के माध्यम या खुशी के रास्ते जा सकते हैं। ये एनर्जी को आप नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुश होता है ना, उसकी अलग ही दुनिया होती है, वो उसी में मग्न होता है। अब एक स्टूडेंट या यूथ की लाइफ में एग्जाम्स एक बहुत बड़ी चीज होती है, कॉम्पिटिशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपने पूरी मेहनत की, आप खुशी से मेहनत कीजिए, और 1% को अगर जो चीज आप जिस लक्ष्य की तरफ आप जा रहे हैं वो नहीं हो पाए, तो ये सोचिए कि आपका प्रायोरिटी क्या थी। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी खुशियां थी। आपके पेरेंट्स के लिए भी आपका सक्सेसफुल होना जरूरी तो है, परंतु वो चाहते हैं कि आप खुश रहिए, वो पहली प्रायोरिटी रहती है। तो आप ये जान चुके हैं कि खुश रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बाकी सब छोड़ के आप खुशी की तरफ बढ़ेंगे तो आपके 10 दरवाजे और खुलेंगे। तो अब आप ये बताइए कि आप खुश हैं? क्या आपको खुशियां ढूंढनी जरूरी हैं? जो आपकी लाइफ जैसे है क्या उसमें सेटिस्फाइड नहीं है? जो लोगों को चीजें नहीं मिलती क्या आपके पास वो नहीं है? मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर अभी अपने मन में जरूर ढूंढेंगे, और इसका उत्तर आज जब भी आप ये सुन रहे हैं आज जरूर ढूंढिएगा। आई होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो.
1: वॉक टॉक रेडियो,
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ. वॉक टॉक रेडियो.
3: जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते. सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते. हालात कैसे भी हों, वक्त अच्छा हो या बुरा हो, अगर आप हंसकर मुश्किल का सामना करते हैं तो यार मुश्किल भी एक दिन शर्मा के भाग जाएगी.
0: वॉक टॉक रेडियो.

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक
1: रेडियो, चलते रहिए अपने रास्ते पर, चलने में माहिर बन जाइए, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन।

चुके होते कि इश्क नहीं था वो, ना खुश थे अगर इतने, अरे जाहिर तो कभी करते।

इंसान हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत सिर्फ कुछ चुनिंदा घरों में ही होती है। आज के जमाने में हर व्यक्ति अपना फायदा चाहता है, मैं ये बन जाऊं, मैं वो कर लूं, मैं सबसे आगे, फिर चाहे वो दूसरे का नुकसान पहुंचा के क्यों ना मिले। ऐसी सोच रखने वाले लोगों को शॉर्ट टर्म में खुशी मिल सकती है, लेकिन आगे चल के इसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें खुद भुगतने पड़ते हैं।

नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई। मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर, और अब हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे, जॉइंट फैमिली। तो हिंदुस्तान बहुत चीजों के लिए जाना जाता था, जिसमें से तीन महत्वपूर्ण चीजें थी हमारी, वेल्थ, हेल्थ और फैमिली। जब ब्रिटिशर्स या इन्वेडर्स आए, वो हमें लूट के, हमारी सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को लूट के चले गए, जहाँ पे हमारी वेल्थ पे बहुत प्रभाव पड़ा। जो हमारी हेल्थ थी, हमारी आयुर्वेद और योगा, जो पूरे वर्ल्ड या पूरे विश्व में बहुत आज भी प्रसिद्ध है, उसको खत्म करने के लिए हमें जो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपनी इंग्लिश दवाइयां हमारे ऊपर थोपी गई। और तीसरी चीज, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी फैमिली, ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, जॉइंट फैमिलीज, और प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि सबके दिमाग में कहीं ना कहीं एक तरीके से वेस्टर्न कल्चर की सोच डाली जा रही है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए पांच लोग हैं, तीन भाई और दो बहनें। अब उनके हस्बैंड्स भी होंगे, वाइफ्स भी होंगी, और उनके बच्चे भी होंगे, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये 25-30 या उससे आगे का, ज्यादा का एक परिवार बन जाता था। अब हर एक व्यक्ति की, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, उसकी एक ना एक व्यक्ति से बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती थी, चाहे वो भाई की बहन से हो, चाहे एक बच्चे की ताऊजी से या बुआ से या चाचा से, एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी और खूबसूरत होती थी, जहाँ पे वो सब कुछ खुल के शेयर कर देते थे। खूबसूरती तो जॉइंट फैमिली की एक और है, वो कि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा सबके लिए इक्वल होता था, कोई अलग नहीं, कोई अपना नहीं, सब अपने होते थे, सब इक्वली ट्रीट किए जाते थे। अगर घर में शादी भी होती थी, तो कुछ ना कुछ करके शादी इतने प्यार और आराम से निपटती थी कि किसी एक व्यक्ति पे बोझ ही नहीं आता था। लेकिन आज वही जॉइंट फैमिली टूटने लग गई है, फैमिलीज रिश्तेदारी में बदल गई है, जो सिर्फ आते हैं और थोड़ा बहुत काम करा के चले जाते हैं। तो क्यों ना हम अपनी भारतीय संस्कृति को इतना मजबूत रखें कि चाहे कुछ हो जाए, हम वो कॉन्फिडेंस और वो जितना भी हमारी स्ट्रेंथ थी, वो कहीं जाने ना दे। तो क्या किया जाए कि अगर जॉइंट फैमिली नहीं है, उसे जॉइंट फैमिली फिर से बनाया जाए? तो मेरा मानना है कि महीने में 15 दिन में एक डिनर क्यों ना किया जाए, जगह बैठकर, एक किसी के हर दिन घर चूज करके वहां पे जाया जाए, डिनर किया जाए, बॉन्डिंग की जाए, ताकि आपको शेयर करने के लिए आपके भाई बहन बने। दो लोग कहते हैं कि मेरे दोस्त नहीं है, मैं क्या करूं, तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। आई होप ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, घर, बस में चलते हुए, सड़क पर चलते हुए, कहीं भी, कभी भी, क्या पता कौन हमसे किस बात पर बुरा व्यवहार करके चला जाए। तो जवाब में हम क्या करें? दोस्त अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। तो बुरे के लिए हम भी क्यों बुरा बने। आप जैसे हैं वैसे ही रहे और ऐसे ही बातों के लिए सुनते रहे वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी क्या रजा है। इसका मतलब है कि आप अपने आप को इतना ऊंचा कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि खुदा तुमसे खुद पूछे, तुम क्या चाहते हो भाई, क्या दूं तुम्हें।

जो अपने सपनों के पीछे भागते हैं, उनके सपने भी सपने बने रह जाते हैं। पर कोई बात नहीं, जो होता था अच्छे के लिए होता था।

0: जिंदगी में देखा जाए तो टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है।
1: वॉक टॉक रेडियो। या तो दिन आपके अनुसार चलता है या आप दिन के अनुसार चलते हैं। जो प्रेरित होना चाहते हैं वो किसी भी चीज से हो सकते हैं। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। शानदार जीत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपनी काबिलियत बस आप ही पहचान सकते हैं।
2: हमेशा रिश्तों की वैल्यू को समझना बड़ा जरूरी है। रिश्ते किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, भाई बहन का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, अपनों के साथ गहरा रिश्ता। उसकी वैल्यू करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे बुरे से बुरे वक्त में यही लोग काम आते हैं। यही है जो वाकई हमें अपना समझते हैं, सही डायरेक्शन देते हैं। ऐसे रिश्तों की कद्र करना, वैल्यू करना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम लाइफ में इतना घुल मिल जाते हैं कि हमें समझ नहीं होती कि सही कौन है, गलत कौन है, अपने कौन है, पराए कौन है। जिनको हम अपना समझते हैं वो पराए निकलते हैं और जिनको पराए समझते हैं वो कभी कभी अपना निकल जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनों पर विश्वास करना और उनके साथ चलना बहुत जरूरी है।
1: जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।
3: वॉक टॉक रेडियो। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के हिसाब से बदल जाएगी, लेकिन अच्छा स्वभाव जीवन भर आपका साथ देगा। आपका स्वभाव ही आपको लोगों के करीब लेकर आता है और आपका स्वभाव ही आपको लोगों से दूर लेकर जाता है। गौरतलब करिए कि आपके होने से क्या लोगों में खुशी होती है, उनमें हैप्पीनेस आती है, लोग आप लोगों से चहक के महक के बात करना चाहते हैं या आपको देख के इग्नोर करते हैं, आपको देख के दूर चले जाते हैं। हमारे जीवन की हर कड़ी हमारे खुद के स्वभाव से जुड़ी हुई है। अपने स्वभाव को चेक करें और जब जहां जाएं अपने स्वभाव, अपने व्यवहार से खुशियां बांटें।
1: मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: Radio. Tune in for a better life. Walk Talk Radio.
1: कुछ बनना है तो अपने आप की तरह बनो, किसी और की तरह कोई ना कोई हर रोज यहाँ बन रहा है, तैयारी ही सफलता है.
0: Walk Talk Radio. Tune in for a better life. Walk Talk Radio.
2: जिंदगी में कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस उसको करने का तरीका कुछ अलग सा होना चाहिए. आप उस काम को कितनी शिद्दत से करते हैं, कितना क्रिएटिव तरीके से करते हैं, ये जरूरी है. और किसी भी काम को करने से पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है. अगर खुद पर विश्वास हो तो वो काम फोकस के साथ होता है. सोचो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में कभी आपके साथ हुई हो बचपन में, स्कूल टाइम में, जहां हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने काम में होता था, फिर चाहे वो कोई खेल क्यों ना हो. इसीलिए आप कोई भी काम कर रहे हो तो फोकस के साथ करें.
0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
3: कभी भी हौसला मत खोना ए मुसाफिर, क्या पता मंजिल ने भी तेरे ही हौसलों का बहाना लिया हो.
0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
3: कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है. यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है.
0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
2: अगर जिस दिन आपने खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर दिया ना, तो उसी दिन से आपने लाइफ को जीना छोड़ दिया. आपकी लाइफ में आपकी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है, लेकिन एक बार जब आप दूसरों को खुद से कंपेयर करना शुरू कर दोगे तो आप दूसरों के हिसाब से चलना शुरू कर दोगे. आपको आपके पास जो भी है आप खुश नहीं रहोगे, आप हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते रहोगे, जिसके चलते आप कभी भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे. लाइफ आपकी है, सपने आपके हैं, तो फिर रिमोट भी आपके हाथ में होना चाहिए. इसलिए दूसरों के बारे में सोचना या फिर खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो.
0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: काफिला भी तेरे पीछे होगा, तू अकेले चलना शुरू कर तो सही. बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है.
0: Walk Talk Radio.
4: A lion will never have to tell you that he's the king of the jungle. The eagle will take its flight knowing it owns the sky. And the shark will go about casually in the ocean just making its presence. You know, friends, it's never that noise you should make that will prove your value and people will hear it. But it is the skill, it's a hardship, it's the work which you might be doing constantly and people are noticing it. You don't need to prove yourself to the other people who will always try to pull you down. But you need to continuously work on yourself. Walk on the road marked by you. That consistency and persistence is needed in your this journey. The success ultimately comes. People would follow you. People would praise you. But people would praise you for your hardship, your determination. So stop seeing here and there what people are thinking about your work, whether they're praising or pulling you down. Just go ahead.
0: Walk Talk Radio.
2: जैसे अंधेरे के बाद रोशनी आती है, ठीक वैसे ही बुरे के बाद एक अच्छा वक्त भी तो आता है. सोचने वाली बात है कि जिंदगी में हम इतना घबरा जाते हैं मुश्किलों को देखकर. हम लड़ते नहीं है, लड़ना नहीं चाहते. देखिए, लाइफ को जीना है ना तो वॉरियर बनना पड़ेगा, खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. और जब तक हम खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, दूसरे लोग हमारी मुश्किलों का हमारा फायदा उठाते जाएंगे. आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद पर विश्वास करना चाहिए. कभी भी किसी के सामने झुको मत, बस काम पे फोकस करो. और कभी भी डरना नहीं है. सिचुएशन हर किसी के साथ होती है, प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ आती है. आपको अपनी प्रॉब्लम्स को समझना है और उन्हें सॉल्व करना है, और उसके लिए खुद को टाइम भी तो देना है. इसीलिए जिंदगी में वॉरियर बने.
0: Walk Talk.

0: How would you define yourself?
1: Well, I'm Shreyas.
0: And?
1: Just Shreyas.
2: बिछड़ जाएगी तो पता था मुझे, फिर भी क्यों रहा साथ मैं तेरे।

मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। अगर आपने सफर शुरू कर दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। तो अपने एम की तरफ बढ़ते रहिए। रुकना और वापस जाना, ये वर्ड अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए।

हाय, मेरा नाम शुभ बिश्नोई है। मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो तीन चीजों की अगर हम बात करें, पेड़, पानी और फार्मिंग के लिए लैंड। तो पेड़ हमें देते हैं ऑक्सीजन, बिना पानी के कोई जिंदगी नहीं। और फूड की बात करें तो बिना फार्मिंग के कोई फूड नहीं। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काटा जा रहा है, नदियों को नाला बनाया जा रहा है और खेतों पे कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये सब बनाई जा रही हैं। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज हमारी जिंदगी के लिए और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। बिना नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ना आगे कभी जिंदगी होगी, ना ये कभी कोई जानने के लिए बचेगा कि ह्यूमन रेस या फिर एनिमल रेस करके कोई होता था। अगर हम बात भी करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की तो सिर्फ बातों तक या डिबेट्स तक ही सीमित रह जाती है। अगर हम बात करें कुओं की तो गाँव में जो कुएं होते थे उनको भर दिया जाता है और उनपे जमीन बना के उनपे कब्जा कर दिया जाता है। सारी नदियों में इतना कचरा, इतना इंडस्ट्री की फैक्ट्री का कुछ ना कुछ रसायन डाल के उनको हम नालों में कन्वर्ट कर देते हैं और खेतों की तो बात ही क्या करें, वहां हर जगह कंस्ट्रक्शन होती है। लेकिन ये बात गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा ही अलार्मिंग लगी तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स निकाले और विलेजेस में वापस वेल्स या कुओं को वापस खोदना शुरू किया गया। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल आज हिंदुस्तान में राजस्थान और महाराष्ट्र है, जहां पे वापस से कुएं खोदे जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वाटर टेबल कम हो रही है और लोगों को पानी की आगे फ्यूचर जनरेशन में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। एक और अगर हम बात करें कहीं पे नेचुरल रिसोर्सेज की तो वो माइनिंग की आती है। अब आप देखेंगे कि अगर कहीं पे भी माइनिंग होगी, चाहे वो कोल की हो चाहे क्रूड ऑयल की हो, वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरियाज और कहीं पे भी रिजर्व एरियाज में होती है। तो ये एक और बात ये होगी कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर माइनिंग होगी तो जंगल के पेड़ कटेंगे, जितनी भी हमारी माइनिंग के लिए डिगिंग की जाएगी, हमें जितनी भी हमारी मशीन्स लगी जाएंगी वो किसी ना किसी कोल या पेट्रोल या डीजल या किसी ना किसी चीज पे चल रही होगी, उसके तहत हमें और पॉल्यूशन बढ़ेगा, डिफॉरेस्ट्रेशन होगा, बर्निंग ऑफ ऑयल होगा। और साथ ही साथ जब हम इस क्रूड ऑयल को माइनिंग करके कुछ भी कहीं भी ले जाएंगे, फैक्ट्रीज में उसे रिफाइन करने के लिए पॉल्यूशन और होगा। और लास्ट में हम उस चीज को यूज करते हैं, चाहे पेट्रोल हो, हम हर दिन ट्रैफिक में जाते हैं, कहीं ना कहीं हम सभी को जाना होता है, वहां पे भी पॉल्यूशन होगा। पॉल्यूशन सिर्फ एक व्यक्ति के वजह से नहीं होता है, पॉल्यूशन हम सब कर रहे हैं और हम ना चाहते हुए भी उसका हिस्सा बनते हैं। अगर आप कहीं पे भी चाहे आप अपने उत्तराखंड के देहरादून की बात करें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आप देखेंगे लोगों को एक ही ऑफिस में जाना होता है लेकिन वो फोर व्हीलर से एक फोर व्हीलर में एक व्यक्ति बैठा होता है, तो उससे क्या पॉल्यूशन बढ़ता नहीं है। पार्किंग की दिक्कत आती है हर किसी को, गर्मियों में छाए में पार्किंग और सर्दियों में उनकी गाड़ी गर्म रहे तो धूप में पार्किंग चाहिए होती है। नेचुरल रिसोर्सेज की बातें सिर्फ बात ना रहे, हम इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंट और बच्चों के फ्यूचर जनरेशन का इम्पोर्टेंट हमें दिमाग में रखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग करना है। हम सब सोचते हैं कि हमें अपने घर को बचाना है, घर को साफ रखना है, तो सबसे पहला घर अगर आपको मानना है तो आपका सबसे पहला घर ये धरती माता है, ये धरती है मदर नेचर जिसे आप कहते हैं। आपका घर सिर्फ चार दीवारी तक सिमटा हुआ नहीं है, ये सोचिए कि आप किस तरीके से नेचर को सेव कर सकते हैं और पर्यावरण के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए आप कुछ छोड़ के जा सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: कुछ बनना है तो अपने आप की तरह बनो, किसी और की तरह कोई ना कोई हर रोज यहाँ बन रहा है, तैयारी ही सफलता है।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

घर कहाँ

0: हाय आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे.
1: आई वॉज नेवर दिस कॉन्फिडेंट इन लाइफ.
0: ओके आई हैड अ फेज वेयर आई वॉज गोइंग थ्रू अ बैड यू नो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. दैट वॉज बिकॉज ऑफ यू नो जो आउटसाइड सर्कमस्टेंसेज होती हैं, जो तुम्हारे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बेसिस पे तुम बहुत यू नो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फेस करते हो. आई वॉज गोइंग थ्रू दैट बैड फेज ऑब्वियसली. After, you know, 2 years of going through that phase, I realized that, oh, where is that charm that was in me? You know, something is missing. I have stopped talking. I have stopped going out. Why? Then I understood that. And उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई. And then, you know, I traveled throughout that year. मैंने उस year में 10 जगहें India में travel करी. You know, to sort of get back my confidence. And उसके बाद I understood that, you know, जो भी outside circumstances थी, जो which were, you know, pulling me down, they could no longer affect me after that 1 year. And then I started, you know, getting back on the track, meeting people, doing some things जो मुझे अच्छी लगती थी, doing events, going out to different places and working with different people. And उनसे सीखा मैंने बहुत कुछ. मैंने 12th तक साइंस पढ़ी, उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन किया, उसके बाद मैंने इवेंट्स किया. ठीक है, तो आई थिंक आई हैड इनफ बैकअप्स को शन अवे करना. एंड देन आई केम टू दिस कंक्लूजन दैट आई हैव टू डू दिस. And I am meant to see the operations of things. So, अगर आज की डेट में आप पूछे मेरा बैकअप प्लान क्या है, I technically don't have a backup plan. But if I have to do something, I know I can do operations very well. Operations of any company, of any job, I can do that very well. Because मैंने एक master operations वाली field में काम किया हुआ है, जो events है जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ operations देखने होते हैं. तो if I can do this, I can see the operations of any place and any business.
2: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
0: Hi, I'm Anukriti and आप सुन रहे हैं मुझे Walk Talk Radio पे. किसी भी ह्यूमन बीइंग का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है मेरे हिसाब से. जब व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तब मेरी मदर मेरे को खाना बनाना कहती थी कि सीखो एंड यू शुड नो हाउ टू कुक. मैं उन पे बहुत गुस्सा हुआ करती थी कि यू नो मम्मी आप भाई को क्यों नहीं कहते, आप मुझे ही क्यों कहते हो कि खाना बनाना सीखो. उस टाइम मैं बहुत गुस्सा हुआ करती थी. बट व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग अवे फ्रॉम माय हाउस, आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग फूड फॉर योरसेल्फ. जितना यू नो तुम बाहर पैसा वेस्ट करते हो खाने पे, वो कितना बचता है इफ यू कुक योरसेल्फ. तुम कहीं पहाड़ों में कहीं अनकन्वेंशनल जगह पे चले जाओ, इफ यू हैव द बेसिक रॉ इंग्रेडिएंट्स, तुम अपना पेट भर सकते हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसी तरीके से इंडिपेंडेंट होना एंड अपनी लाइफ को सस्टेन करना, खुद कमाना, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खुद के लिए खाना बनाना है. क्योंकि यू नो इतने सारे हम इंसिडेंट सुनते हैं जिसमें यू नो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है एंड यू नो फीमेल्स को अपने गांव से बाहर आने का मौका नहीं मिल रहा. मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि अगर मैं एक भी फीमेल की लाइफ ऑल्टर कर पाऊँ, वो मेरे लिए एक बहुत पुण्य का काम होगा. मेरी टीम में भी अगर आप देखें, देर आर 80-90% फीमेल्स इन माई टीम. और उस चीज को अगर हम ध्यान में रखें और हम फीमेल्स को सपोर्ट करें, अपलिफ्ट करें, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि फीमेल रन ऑर्गेनाइजेशंस और फीमेल लेड ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं. उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज मेल रन. दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ रिसर्च कि हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा होता है.
2: Walk Talk Radio.
0: हाय आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर. अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं. सबकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है. तो
1: उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम, देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग. तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो. इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड. हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर. एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स. देन वी ट्राइड टू यूज जूट इंस्टेड ऑफ यू नो क्लॉथ एंड सिंथेटिक क्लॉथ एंड नाइलॉन्स जो एनवायरमेंट को हार्म करते हैं. हमने रीयूजेबल क्लॉथ जो कि जूट है वो मैक्सिमम जगहों पे यूज करा. देन वी ट्राइड टू अवॉइड यूजिंग आयरन स्ट्रक्चर्स एज मच एज पॉसिबल एंड वी ट्राइड यूजिंग मोर ऑफ बैम्बू स्ट्रक्चर्स. हमने बैम्बू एंड लकड़ी से कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए. विनाइल को ना यूज करके हमने फॉर वेलकम बोर्ड्स एंड फ्लेक्स हमने बनाना लीव्स यूज किए, हमने जूट यूज किया इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स. तो इस तरीके से हमने उनकी वेडिंग को जस्टिस करने का ट्राई किया. दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी टेक इनपुट्स फ्रॉम द कपल्स पर्सनैलिटी एंड ट्राई टू क्यूरेट समथिंग आउट ऑफ इट. हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है. सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं. इनफैक्ट हम नहीं, सारे ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं. एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है. ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है. ठीक है, आई कॉल दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा एंड तब तो भोकाल मच जाएगा. आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ. परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ रादर देन बीइंग परफेक्ट, आई थिंक रिजल्ट्स आएंगे आफ्टर सम टाइम. मुझे पूरा भरोसा रहता है इफ आई एम परसिस्टेंट. और परफेक्शन को अगर हम ऑब्वियसली कई डेज पे हमारा परफेक्ट आउटपुट आता है, कई डेज पे थोड़ा कम अच्छा आउटपुट आता है, कई डेज हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम ह्यूमंस है, सबके साथ होता है. बट देन रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. वॉक टॉक रेडियो.

0: मजबूत होने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। अपने आसपास बहुत लोग हो सकते हैं आपके जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हो, डरा रहे हो, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। क्या फर्क पड़ता है, शायद वो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाए या उसी सिचुएशन में उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी सोच और ऐसे लोगों से अपने आप को सतर्क रखिए, क्योंकि उनसे सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिविटी, डराना यही मिल सकता है। अगर किसी के पास सॉल्यूशन है तो वो आप खुद हैं। खुद से बात करिए, खुद की सोच और खुद के निर्णय पे यकीन करिए, उस पे आगे बढ़िए और देखिए आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी आपके खुद के भरोसे से, जो आपका खुद पे होगा।
1: Walk Talk Radio.

0: कोविड ने हमें ये जरूर सिखाया, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज गया कि आप अपने जड़ों को ना छोड़ें। कई लोग परमानेंटली दिल्ली, मुंबई और इवन इंटरनेशनल लेवल पे सेटल्ड हो गए थे और सबको लगता था हम सेटल्ड हो गए हैं, अब हमारी रेस्ट ऑफ द लाइफ यहाँ रहने वाली है, हम लोग अब अपने गांव नहीं जाएंगे। बट कोविड ने एक ऐसा झटका दिया कि सारे के सारे लोग अपने गांव को खोजने लगे, अपने जो होम टाउन्स थे वहाँ पे आने लगे। तो हमने जब ये छानी का कॉन्सेप्ट सोचा तो हमने कहा यार हम लोग ऐसा कुछ काम करेंगे उत्तराखंड में, देहरादून में, कि जो हमारा उत्तराखंड का यूथ है उसको फूड इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमारे गैथ के पराठे भी होते हैं, पनीर के, आलू के पराठे के अलावा गैथ भी एक चीज़ होती है हमारी, अगर कुमाऊनी एक बहुत फेमस डिश है भट की चटकानी, वो भी होती है, हमारे राइस रेड राइस भी होती है, वाइट राइस तो हम खाते हैं लेकिन बिना पानी का जो चावल होता है वो भी हमारे यहाँ होता है। स्वीट्स में हम देखें तो स्वीट्स में गुलाब जामुन के अलावा पहाड़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, पहाड़ में अगर आप देखें अल्मोड़ा में जाएँ तो अल्मोड़ा में चॉकलेट बहुत अच्छी फेमस है, वहाँ की बाल मिठाई, यहाँ की बाल मिठाई बहुत फेमस है, टीरी की सिंगोरी फेमस है, और सब जगह जो कॉमन पाया जाता है वो हमारी झंगोरे की खीर। तो हमने कहा एक फूड पे काम करते हैं, और फूड पे काम करने का मतलब ये था कि यूथ को या जो हमारे लोग हैं उनको पता चले हमारा फूड क्या है।
1: Walk Talk Radio, tune in for a better life. Walk Talk Radio.
0: फिर उसके बाद हम लोगों ने काम किया कल्चर पे। तो कल्चर में क्या है, कल्चर एंड क्राफ्ट दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जैसे आप देखेंगे हमने ये देखिए बड़ा सुंदर सा एक, इसे कहते हैं घेलड़ा, हमारे यहाँ ये घनसाली से ऊपर 11 गोविंदा है वहाँ से आया है, इसको बनाया है महिलाओं ने और ये घास काटने के लिए बनाया जाता है, बट इसके बहुत सारे और उपयोग भी हो सकते हैं, ये हमारा क्राफ्ट मानते हैं इसको। और ऐसी कई सारी चीज़ें आपने यहाँ देखी होंगी बनी हुई हैं जो क्राफ्ट से रिलेटेड है, तो ये हमारे क्राफ्ट एंड कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप देखें जो हमने ये झंडियाँ लगवाई हुई हैं, ये सारी झंडियाँ जो हैं ये जब हमारी शादियाँ होती थी पहले गाँव में तो इसी प्रकार की झंडियाँ लगती थी, तो हमारे बचपन को याद दिलाती है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी हमने चीज़ें रखी हुई पुरानी जो हमारे जो जनरेशन है, यूथ है, उनको अपने गांव से अटैच करे, ऐसी चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हुई हैं। तो छानी का उद्देश्य यही था कि हम इमोशनली यूथ को या जो भी हमारे पहाड़ी समाज में रहने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने गाँव की तरफ अट्रैक्ट करें। तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ छानी। बट इन जनरल मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि आई थिंक हम कहीं पर भी अगर हैं, चाहे हम देहरादून हैं, दिल्ली हैं, अपनी प्रतिभा के अनुसार जॉब कर रहे हैं, बट जो भी हमारा सेक्टर है उसमें जॉब कर रहे हैं, कि हो सकता है वो सेक्टर हमारे अपने होम टाउन में ना हो, विलेज में ना हो, बट हमें बहुत मजबूती से अपने रूट्स को पकड़ के रखना चाहिए। और अपने रूट्स को पकड़ने का केवल ये नहीं है कि आपको इस्टेब्लिशमेंट बना दें, कोई आप कोई नई चीज़ स्टार्ट कर दें, बट आप उस पर इन्वॉल्व होइए अपने फूड में, कल्चर में, क्राफ्ट में, अपने लोगों के साथ, अपने गांव के लोगों, अपने पुराने जहां जिस टाउन में आप रहते थे उस टाउन के लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाइए, तो मतलब बहुत आनंद आएगा। तो यही मैसेज है कि आई थिंक अंगद की पाँव की तरह एक पाँव हमें अपने वर्किंग लोकेशंस पर रखना चाहिए, जहां पर भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, और एक हमें अपने रूट्स को बहुत मजबूती से पकड़ के रखना चाहिए। ये मैसेज आई थिंक कोविड ने भी हमें दिया है, कोविड में सारे लोग गए ना अपने रूट्स पे, तो अब तो मैसेज तो ऑलरेडी नेचर ने दे दिया है कि हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू।
1: Walk Talk Radio, tune in for a better life. Walk Talk Radio.
0: हमें बहुत मजबूती से अपने रूट्स को पकड़ के रखना चाहिए, उसमें इन्वॉल्व होइए अपने फूड में, कल्चर में, क्राफ्ट में।

0: नमस्कार, मेरा नाम रमेश पेटवाल है और मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ और बड़ी फेमस जगह एक परियों का देश खैट पर्वत, वहाँ मेरा गांव है। छानी जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक हम सब लोगों ने देखा है कि जो कोरोना काल था, कोविड का दौर था, तो उस समय सभी लोग हम वर्क फ्रॉम होम पे थे। तो मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, बट वो दौर था कि हम अपने सब अपने घरों में थे और कई सारे यूथ और कई सारे लोग जो बाहर काम करते थे, मतलब देश विदेश में काम करते थे, वो सब अपने गांव की तरफ चले गए थे। और गांव से गांव में जाने के बाद उनके थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहे थे कि क्यों ना अपने गांव अपने क्षेत्र के लिए कुछ किया जाए। तो उसी दौरान जब हम साइकिलिंग करके इस जगह पे आते थे, हमारे यहाँ से मेरा जो देहरादून वाला घर है वो लगभग 9 किलोमीटर दूर है, तो जब हम यहाँ पे आते थे तो सोचते थे कि यार इस जगह का कैसे उपयोग किया जाए और कैसे इसको थोड़ा अपनी कल्चर से, अपनी संस्कृति से हम इसको जोड़ पाएं। तो इसके लिए फिर काफ़ी सारा थॉट प्रोसेस हम लोगों ने किया, मेरे कई सारे फ्रेंड्स इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो हमारे विचार में ये, हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा लैक क्या कर रहा है यूथ के बीच में, तो वो कर रहा है कि हमें अपने कल्चर, क्राफ्ट एंड फूड इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हमने पहले तो डिसाइड किया कि हम कल्चर, क्राफ्ट एंड फूड पे थोड़ा काम करेंगे साइड बाय साइड। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो कभी आया कि गेटवे ऑफ देहरादून, हिमालय, बहुत सारे नाम आए। फिर सडनली एक डिस्कशन हो रहा था कि इसका नाम कुछ भावनात्मक राम होना चाहिए इसका। तो मैंने प्रपोज किया अपनी टीम को कि हम इसका नाम छानी रखते हैं। तो छानी इज अ वर्ड, पहाड़ी वर्ड है, जिसको पौड़ी में अगर आप जाएंगे, पौड़ी गढ़वाल में, इसको छन्नी नाम से बोलते हैं। टिहरी में जाएंगे तो छैणू बोलते हैं, और इन जनरल अगर पूरे उत्तराखंड में छानी नाम से बोला जाता है। तो छानी क्या होता है कि हमारे पहाड़ियों के दो घर होते हैं। जब सर्दियाँ होती हैं तो उस समय तो हम अपने नॉर्मल घर में रहते हैं, लेकिन गर्मियों में हमारे जो जानवर होते हैं या जो व्यक्ति उनके साथ रहते हैं, वो पहाड़ में ऊपर चले जाते हैं। वो टेम्परेरी हाउस होता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई का, और उस टेम्परेरी हाउस में सारे वो अरेंजमेंट्स होते हैं जो एक घर में अरेंजमेंट्स होते हैं। तो हमने इसका नाम भी छानी रखा। ये हमारे लिए नहीं, सभी के लिए टेम्परेरी हाउस है, किसी के लिए 4 घंटा, किसी के लिए 10 घंटा, कोई कोई यहाँ पर रुकते भी। हमने एक पठाल का छोटा सा घर भी बनाया हुआ है। तो यही एक थॉट प्रोसेस था कि छानी नाम क्यों रखा जाए। तो कई बहुत मतलब इमोशनल अटैचमेंट है छानी वर्ड से, मेरे भी नहीं, मैं तो मेरा तो बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है क्योंकि मैं खुद छानी में पैदा हुआ हूँ, तो और परियों के देश के नीचे की छानी थी वो खैट पर्वत की, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, और मैं अपने गांव से, अपने उस जगह से जहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखता हूँ। इसलिए मैंने और मेरी टीम ने इस जगह का नाम छानी रखा।
1: जिन लोगों को दूसरे के सुनने की आदत नहीं है, छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो जाते हैं, आपको आगे बढ़ते देखने में बाकी हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको भटकाने की, तो आपसे मेरा यही कहना है कि सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि इस दुनिया में रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो दोस्तों, क्योंकि यहां टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। Walk Talk Radio, tune in for a better life.

इश्क के रेगिस्तान में तू बारिश बन के आई है, भीग उठा है दिल मेरा, आंखें भी भर आई है, पार किए कई तेरे लिए मोहब्बत के इंतहा तो जाना, मौत से भी ज्यादा दर्द है।

हाय गाइस, माय नेम इज काव्या और मैं अपने बारे में क्या कहूँ. आई थिंक मैं एक रूरल एंटरप्रेन्योर हूँ जो गांव में रहती हूँ, इनफैक्ट जंगल में रहती हूँ. बहुत पसंद करती हूँ भारत की कला और एक विजन है मेरा कि मैं आदिवासी जनजाति को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना चाहती हूँ ताकि उनका हेरिटेज, उनका क्राफ्ट बना रहे, और यही कोशिश है. सो दैट इज वॉट आई एम. एंड बाय एजुकेशन आई एम एन MBA ग्रेजुएट, और कभी नहीं सोचा था कि क्राफ्ट, ट्रैवल और इस तरह के गांव के इकोसिस्टम में काम कर पाऊंगी. आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स MBA बाय एजुकेशन, बट आई थिंक गॉड हैज बीन रियली ग्रेशियस. आई वॉज बॉर्न इन राजस्थान एंड नाउ आई लिव फ्रॉम अ फॉरेस्ट इन कोरापुट इन ओडिशा. दैट्स अबाउट. सो आई थिंक क्राफ्ट पोटली का सफर कहाँ से शुरू हुआ, मैं ये कहूंगी 2009 के आसपास शुरू हुआ. हम सभी जब पहली जॉब में होते हैं, पहली सैलरी मिलती है, उसके बाद अपने पैशन खोजने लगते हैं. एंड तब ये इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था, तो आई थिंक तब मेरा ये था कि मुझे एक ऐसा, एंड तब क्राफ्ट के भी बहुत मार्केट प्लेसेस या ऑनलाइन स्टोर्स नहीं थे, तो तब मेरा ये सपना था कि यू नो आई हैव टू क्रिएट दिस वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग हैंडमेड इन इंडिया, ऐसा मैं सोचती थी. तो क्राफ्ट है और वो सब एक पोटली है, क्योंकि मेरी दादी यूज टू ऑलवेज कैरी दिस पोटली एंड ऑलवेज शी वुड कैरी दिस मुरमुरे एंड सम नट्स. एंड मी बीइंग कमिंग फ्रॉम अ फैमिली वेयर माय फादर हैज 10 अदर ब्रदर्स सिस्टर्स, सो वी वर लॉट्स ऑफ किड्स यू नो इन राजस्थान. सो शी वुड ऑलवेज हैव दिस एंड शी वुड गिव समथिंग फ्रॉम हर पोटली टू किड्स. सो आई वाज लाइक ओके क्राफ्ट पोटली, एंड बैक देन वो डोमेन मुझे मिल गया तो वो तब से रहा, बट उसके बारे में आई डिड नथिंग. फॉर 10 years आई केप्ट वर्किंग. एंड इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि पैंडमिक आया एंड आई थिंक हम सभी ने अपने आप के बारे में थोड़ा कुछ जाना. आई ऑल्सो अंडरस्टूड कि जो मैं रूरल ट्रैवल कर रही थी फॉर माई फन विद द जॉब ऑन वीकेंड्स, वो रियली ट्रैवल नहीं था. मैं वापस आती थी अपने कम्फर्ट जोन में, जॉब करती थी, सैलरी लेती थी. इट वॉज पैंडमिक दैट मेड मी रियलाइज कि इफ आई हैव अ पैशन देन मुझे उसका टेस्ट लेना चाहिए कि वो पैशन रियली है भी या नहीं. कैन आई लास्ट दैट? सो आई टुक दिस मैसिव जर्नी, इट्स कॉल्ड काव्या ऑन क्वेस्ट. थोड़ा सा अच्छा उसका गूगल ट्रैक्शन है, आप देखिएगा. सो आई टुक दिस विद महिंद्रा ऑन 2nd October. द आइडिया ऑफ काव्या ऑन क्वेस्ट वॉज दैट नॉन स्टॉप आई विल बी ऑन द रोड्स कवरिंग विलेजेस ऑफ इंडिया एंड टेलिंग देयर स्टोरीज विदाउट अ सिंगल डे ब्रेक, विदाउट फॉलिंग इल. आई थिंक आई वुड बी, आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट दिस. आई टुक 42 कोविड टेस्ट्स इन 6 months ऑफ टाइम. I started this journey on 2nd October 2020 after first pandemic and ended this journey in end of May 2021 and covered non-stop without staying in hotels or taking any guides, just covering crafts of India. Early in this journey, I figured ki while I am from Rajasthan, which is like a craft hub or Kutch, I thought that the focus has to be to Eastern India, जहाँ पे बहुत ज्यादा culture है but ज्यादा दिखाया नहीं जाता है. तो जब मैं वहां पे गई, I still remember, it was January 2021, I first entered the land of Odisha. And Odisha के हम जब भी बात करते हैं, we just know पुरी और भुवनेश्वर. I entered into a land where I saw James Cameron Avatar movie coming to life. मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि ऐसे rolling jungles हैं, clouds हैं, and उसमें आदिवासी people live freely. It was like Avatar movie came in front. I had never seen, like I've been to Ladakh, I've been to beautiful places like Spiti, Andaman, but Koraput was something else for me. And when that journey ended in June, I was like, either go back to my job in Gurgaon, which was paying me well, or do something about your life. And I had 2-3 options. So I thought, okay, ya to West Bengal mein kahin pe jaate hain, ya Chhattisgarh mein, or Odisha. Now, Odisha being very well connected by air, and generally since I also live solo, I felt it was a great opportunity for me to kind of relocate. So I relocated to Koraput and started with something really small. Craftpotly started its operations with a mere turmeric bar. That has now become a case study with the Tata Institute of Social Sciences in Bombay. It was a breakthrough product in itself. First 6 months of me living from August 21, when I moved to the village, till about, I would say, October or November 21, I would just go village to village, go to Adivasi Haats on weekly basis. घूमती रहती थी, उन लोगों को लगता था ये कौन सी लड़की है, क्या कर रही है. तब मैंने डिस्कवर किया कि ईस्टर्न घाट्स में बहुत ज्यादा हल्दी उगता है, विच इज नॉट गेटिंग यूटिलाइज्ड एंड इट डजंट गो आउट ऑफ
their own villages. So coming from the learning that I was having with my jobs, with a fashion brand that I was working before pandemic, we decided to turn that turmeric bar into a bathing bar. Now these people, jinke mein hum baat kar rahe hain, wo log ek particularly vulnerable tribe ko belong karte hain, jo aaj bhi subah utke jungle jaate hain and fruits tod ke laate hain, uske basis pe ya thoda haldi ugate hain ya kuch coffee ugate hain ya sabzi ugate hain, usi pe hi zinda rehte hain. For them that is their lifestyle. So to make them learn how to make a bathing bar was a challenge in itself. We gathered about 62 women from 5 villages. All of them belong to the Kondha tribe, and they learned in 7 days how to mix the right proportions, the right percentage, usko dry kaise karna hai. Ye sab seekh liya, lekin beche kahan? That was the major question. So friends and family came into picture. I think every entrepreneur does that. I can say that now. So I sent these bars packed in brown paper, jo hum bachpan mein use karte the kitabe chadhane ke liye, usse bheja, and the reviews were fantabulous. It was something that I had not expected. People kept on repeating, my own relatives kept on asking, and that's where we thought, okay, let's increase the production. Thoda sa apna paisa dala, and we worked on the packaging a little bit. Then it was, I think, April 2022, very recently, that a Bangalore customer reached out to us that, can you make a lot more of this bar? Like, volume aap kar sakte ho? So humne kaha, haan, abhi humare paas 14 women actively work kar rahi hai, but we have 62 trained and we can train more people. So, and I think that was the pivot for Craft Portly. In April 22, we started supplying to one of the United Nations agency in Guatemala in Central America, and that is where volumes came in. When volumes came in, we got some confidence to add more products to Craft Portly and also define ourselves ki we will not be working in rural but Adivasi belts of the country. And that was like a long story to a short question, that Craft Portly ki shuruaat kaise hui. मैं शेयर करना चाहूंगी मेरा एंट्री इनटू विलेज, क्योंकि बहुत टाइम तक लोग ऐसा सोचते थे. अभी मुझे, आई थिंक मैं अगस्त 21 में शिफ्ट हुई थी फुल टाइम इनटू अ फॉरेस्ट विलेज, तो लोग पहले ऐसा सोचते थे कि ये लड़की मिट्टी के घर में रहती होगी लेकिन ऐसा नहीं है. बट बहुत टाइम लगा मुझे, तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ है. जो भी आज हम काम कर रहे हैं बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू बिग स्टार्टअप्स. कई लोग मुझसे बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने एक साल में क्या किया. मैं देखती हूँ कि यू नो वन ईयर में बहुत सारे स्टार्टअप्स पिवट कर जाते हैं, बट हम लोगों का ग्रोथ हैज बीन वेरी स्लो एंड माइंडफुल. बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस उन सभी लोगों के लिए जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की ओर देखते हैं, कि आई थिंक स्लो ग्रोथ एंड एक्सेप्टेंस इज वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया. तो मैं ये बताना चाहूंगी ये इंसिडेंट कि मुझे 6 महीने लगे टू स्टार्ट माई फर्स्ट प्रोडक्ट. क्योंकि हो सकता है कि पहले आप किसी नोशन को लेके किसी गांव में आओ, वो चीज आपके लिए काम ही ना करे. पहले मैंने सोचा था कि मैं किसी ज्वेलरी पे काम करूंगी, बट वो नहीं वर्क किया. आई हैड नेवर थॉट कि मैं टर्मरिक पे काम करूंगी, यू नो. एंड उसके बावजूद भी लोगों गांव में जनरली भरोसा धीरे धीरे आता है, और जब एक बार आ जाता है फिर वो लोग आपके लिए कुछ भी कर देंगे. तो फॉर मी दैट टुक अ लिटिल टाइम. मुझे 6 मंथ्स लगा टू ब्रेक दैट आइस बोलें या हम केमिस्ट्री बोलें. एंड जब वो 6 महीने का पीरियड पास हुआ एंड इट वेंट थ्रू डिफरेंट प्रोसेस, चाहे आप टैटू कह लीजिए मेरी बॉडी पे, या आप जितने भी फेस्टिवल्स, या आप मेरा इंस्टाग्राम में स्टोरीज देखेंगे. तो आई थिंक इट टुक मी अ वाइल, बट जब वो एक बार वो हो गया देन इट वॉज अ इजी राइड फॉर मी. I think for me, traveling is like breathing. I literally breathe that. Abhi bhi, it was my birthday on 9 July, and I decided that living in a village, I am also lacking learning. Like, I keep seeing my village. It's like one keeps seeing Gurgaon skies, or you keep seeing, let's say, the place where you live, the people you meet. Aapka ek routine ban jata hai. Mera bhi apna ek gaon mein routine hai. But mujhe laga ki I need some learning. So I literally took this self-funded trip to very different cities in India. Hum log jaate hain Ladakh, jaate hain Kashmir, jaate hain Srinagar, jaate hain. I decided to travel to Kota in Rajasthan and then Bhopal in Madhya Pradesh, because I realized that Bhopal has a good chunk of artists who belong to this Gondwana belt or the Gondi tribe
who are now pursuing or working on government projects. So I generally wanted to learn something. And Kota mein bhi ek particular textile banta hai. And then I went to Nepal to just understand and prep my trip for Upper Mustang, where we are planning to document the different stone utensils. So I feel like when you travel, it's like a live school. So we read books, like when I did my graduation or MBA, I read so many books. So books ek taraf hai, but this is like a live, like Instagram live. So it's like a live school where you learn so many things, from management to anger management to friendships to eating to life, how you are, what you are. So I think I am what I am because of travel, and I think that's

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो आपको हर तरह से तोड़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपकी खूबियों को नजरअंदाज करके सिर्फ आपकी कमियों को ही दर्शाएंगे। हो सकता है बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, लेकिन आपको सिर्फ ये सोचना है कि दुनिया का तो काम ही है आपको बार बार गिराना, और हमारा काम है ढीठ बनकर बार बार उठ खड़ा होना। इसलिए जब जब आपकी हिम्मत जवाब देने लग जाए, तो याद करिए अपनी उन तमाम खूबियों को जिनको आप जानते हैं, और करते रहिए कोशिश लगातार, और बनते रहिए बेहतर हर बार।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन।

0: अरे सबके बस की बात नहीं है, छोटे शहर की लड़की है, एक्टिंग में कहाँ जा सकती है। ये सब बातों को अनसुना करके एक लड़की सपनों की नगरी मुंबई जाती है। MS धोनी, रणबीर कपूर, अरमान मलिक सबके साथ काम कर जाती है। हाय, दिस इज RJ गौतम फ्रॉम वॉक टॉक रेडियो। और यार, देहरादून की ना काफी चीजें फेमस है, जैसे कि मोमोज, FRI, यहाँ का घूमना, यहाँ का मौसम, यहाँ की एजुकेशन, शिक्षा, और अब इस लिस्ट में जुड़ गई है दून की दीक्षा। A very warm welcome to you, Diksha Chatpal, in Walk Talk Radio.
1: Thank you so much. Wow, it's a great feeling. I'm super excited to be here and have a great conversation with you guys.
0: सबसे पहले एक्टिंग की बात करते हैं। एक्टिंग कैसे और क्यों स्टार्ट करी आपने?
1: मुझे एक्टिंग का मुझे शुरू से ही था एक्चुअली, बचपन से, पर लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था और अंदर से मुझे वो आई नेवर हैड द करेज टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई वॉन्ट टू गेट इन टू इट। मतलब आई लव वॉचिंग फिल्म जब मैं छोटी थी। आई यूज टू इमिटेट एक्ट्रेसेस ऑल्सो। आई यूज टू लव डांसिंग एंड माई ग्रैंड फादर ही वॉज अ म्यूजिशियन एंड माई डैड ही सिंग्स। सो वो कहीं ना कहीं अंदर जीन्स में है। बट मुंबई आने से पहले आई यूज टू वर्क फॉर इंडिगो एयरलाइंस। आई यूज टू फ्लाई विद देम एज अ कैबिन क्रू। और मेरा प्रमोशन होने वाला था बट कुछ चीजें ऐसी हो गई वहां पे। आई वॉज बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद, तो मुझे ऐसा लगा कि नो, आई थिंक आई शुड जस्ट स्टॉप एंड प्रोबेबली जस्ट यू नो फॉलो माई हार्ट नाउ। तो दिल वहां नहीं था, दिल कहीं और था। तो आई जस्ट फॉलोड माई हार्ट एंड आई मूव टू बॉम्बे।
0: काफी सारे ब्रांड्स के साथ आपने कोलैब किया है, काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं कि कौन कौन से ब्रांड्स के साथ आपने अभी तक काम किया है।
1: हाँ जी, मैंने कोको कोला के लिए काम किया है, मैंने फेसबुक के लिए और मूव और GSK, कैरेट लेन, मैकडॉवल्स नंबर वन सोडा, एंड मैंने म्यूजिक वीडियोज भी किए हैं। मैंने अंकुर तिवारी के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया है फॉर MTV साउंड ट्रिपिन, एंड रिसेंटली मैंने एक और म्यूजिक वीडियो किया है जो टी सीरीज में आने वाला है। सो यस एंड या।
0: तो ये फीलिंग कैसी होती है जब आपने सपना देखा था कि मैं मुंबई जाती हूँ, कुछ करती हूँ, और अब जब आपकी वीडियो आती है, आपका एड आता है, आप बड़े पर्दे पे आते हैं और घर वाले देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं, तो वो फीलिंग कैसी होती है?
1: आई थिंक दैट फीलिंग इज समथिंग आई रियली कैन नॉट एक्सप्रेस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो वो फीलिंग ही अलग ही होती है। मतलब आप सब कुछ भूल जाते हो, बिकॉज दैट इज वॉट आई लव टू डू। आई मीन कैमरा, आई लव कैमरा, आई लव बींग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो इट इज अ ग्रेट फीलिंग विच आई लिटरली कैन नॉट एक्सप्रेस। इट्स लवली।
0: टॉकिंग अबाउट योर एजुकेशन, तो आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है अभी तक?
1: So I have not really gone to college. I don't have a degree. I have a diploma in acting and production. I was in Noida Film City after my school. After my schooling, I told my family that मुझे बॉम्बे आना है, but लेकिन उन्होंने मुझे आने नहीं दिया बॉम्बे। मैं बहुत ज्यादा यंग थी उस टाइम एंड my dad never like took me seriously कि आ रहे यार कहाँ इतनी छोटी हो अभी तुम बॉम्बे जाओगी, ऑडिशन वगैरह दोगी, यू नो नहीं जाना। तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा ना रिबेलियस हो गई थी कि नहीं यार, फिर मुझे भेजा ही क्यों आपने, यू नो नोएडा क्यों भेजा आपने मुझे ये कोर्स करने के लिए। तो आई वाज लाइक अब तो मुझे निकलना ही है घर से। तो मैंने रैंडमली फिर जॉब अप्लाई कर दिया इंडिगो में एंड आई गॉट थ्रू एंड आई गॉट द जॉब। एंड मैं भूल गई अपना यू नो एक्टिंग वैक्टिंग भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माई जॉब। बट
0: वो कहते हैं ना कि जहाँ पहुंचना होता है इंसान को,
1: हाँ,
0: कैसे भी पहुंच जाता है।
1: एग्जैक्टली, आई थिंक वो चीज है, वो चीज मैं समझ चुकी हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा करके ना वो लाइफ इज लाइक अ सर्कल, तो कहीं ना कहीं वो आपको पहुंचा ही देती है जहाँ पे एक्चुअली आपको पहुंचना होता है। सो इट इज लाइक दैट। बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो चीजें आप प्लान करके चलते हो ना लाइफ में, वो कभी नहीं होती, वो कभी नहीं होती है। सो आई फील दैट इट्स बेटर नॉट टू प्लान थिंग्स। आई डोंट नो, इट्स जस्ट Let life happen to you.
0: Walk Talk Radio. So you work in Bombay, but you are a Dunite girl. So quickly answer Bombay and or Dehradun and why?
1: Always, always, always Dehradun. I think मैंने काफी travel किया है और travel करके मुझे ये पता चला कि देहरादून जैसी city इस दुनिया में नहीं है। आई थिंक देहरादून इज एन इमोशन एंड हर चीज मैं देहरादून की मिस करती हूँ जब भी मैं बॉम्बे में रहती हूँ. देयर इज नथिंग व्हिच आई डू नॉट मिस अबाउट देहरादून.
0: जैसे क्या क्या चीजें हैं जो आप मिस करती हैं देहरादून की?
1: फर्स्ट इज मोमोज. आई लव मोमोज. मतलब एक तो बॉम्बे का खाना इतना खास नहीं. ऑफकोर्स हम नॉर्थ इंडियंस हैं तो यार हमें चाहिए थोड़ा स्पाइसी और बटर चिकन प्रॉपरली, यू नो, मोमोज की चटनी ये वो सब कुछ. तो आई मिस द फूड, आई मिस द वेदर, आई मिस द पीपल फ्रॉम देहरादून बिकॉज यहाँ पे वो सिंप्लिसिटी है लोगों के अंदर अभी भी. अभी भी लोग इतने ग्राउंडेड हैं. मतलब इट्स जस्ट आई मिस दैट थिंग अलॉट फ्रॉम देहरादून.
0: और आपको क्या लगता है एक एक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ मैनेज करना?
1: आई थिंक इट इज डिफिकल्ट. इट इज डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. मतलब वो आपकी वायरिंग पे डिपेंड करता है हाउ यू बेसिकली परसीव थिंग्स. बट बॉम्बे में सब कुछ इतना ज्यादा फास्ट है, सब लोग भाग रहे हैं. लाइक पीपल आर जस्ट रनिंग बिहाइंड थिंग्स. तो कभी कभी ऐसा होता है कि यू जस्ट लूज इट. आप खो देते हो खुद को भी. हाँ, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ हाउ यू परसीव थिंग्स एंड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ all these things that you need to keep your personal life separate and your professional life separate because har cheez aapke kaam ke aas pass revolve nahi karti. Everything doesn't revolve around your work. You have a personal life also which is separate and just enjoy it. I mean, theek hai.
0: Walk Talk Radio. So what is that feeling jab aap wapas aati hai Mumbai se ya Bombay se kaam karke Dehradun aa rahi hoti hai, to kaisa lagta hai aapko?
1: मतलब आई थिंक दैट इज वन फीलिंग विच आई लिटरली लिव फॉर. जो मैं ये चीजें जो मैं कर रही हूँ वो मैं इसी फीलिंग के लिए कर रही हूँ. इज दैट कि जब मैं शूट के बाद जब मैं वापस घर आ रही होती हूँ या मैं अपने बॉम्बे वाले घर या यहाँ पे आ रही होती हूँ, आई थिंक दैट फीलिंग इज समथिंग विच इज मतलब एक वो सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग होती है कि यार आज कुछ किया है, आज मैंने वो किया है जिससे मैं प्यार करती हूँ. यू नो, लाइक आई लव वॉट आई डू राइट नाउ एंड आई एम गोइंग बैक होम डूइंग दैट. तो दैट वो फीलिंग के लिए आई लिव फॉर दैट फीलिंग. सो आई थिंक वही है.
0: और बहुत कम लोग होते हैं जो ना अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कर रहे हैं. तो वो उसी में रह जाते हैं, यार काश मैं ये बन जाता या काश मैं वो कर लेता.
1: एग्जैक्टली.
0: लेकिन आपने बहुत से बड़े बड़े एक्टर्स और सिंगर्स के साथ भी काम किया है. रणबीर कपूर, अरमान मलिक. तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, जिनको आपने पहले कभी टीवी पे देखा है या सुना है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था?
1: वो एक्सपीरियंस मतलब जब मुझे व्हेन आई गेट दीज प्रोजेक्ट्स, तो वो बहुत मुझे ऐसा ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि मुझे ऐसा एक्साइटमेंट नहीं हुई कि यार आज मैं माय गॉड इनके साथ काम कर रही हूँ उनके साथ. बट द एक्सपीरियंस द फीलिंग आपको वो तभी आती है जब आप सेट पे उनके साथ होते हो. देन यू गेट दैट कि यार ओके I'm actually working with these people. But when I worked with MS Dhoni, I did this ad. Oh my God, I think he's so sweet.
0: Captain Cool.
1: Very like humble and grounded, and he's talking to me. He's like, even my wife is also from Dehradun. So I was like, I'm also from Dehradun. And he's just like, तब मुझे ऐसा लगा कि वाओ यार, लाइक सच अ.
0: He's MS Dhoni और और MS Dhoni होके भी इतना काम और.
1: Exactly.
0: आपने अभी ट्रैवलिंग की बात भी करी, आप अपने काम के सिलसिले से ट्रैवल करती हैं और जब इंडिगो में थी तब भी ट्रैवलिंग होती थी. तो व्हेन यू वर्क इन सच अ फील्ड, तो हाउ डज ट्रैवलिंग टू डिफरेंट सिटीज और इवन कंट्रीज इवॉल्व्स यू एज अ पर्सन?
1: इट डज इवॉल्व यू एंड आई थिंक ट्रैवलिंग इज वन थिंग. मुझे ऐसा लगता है कि काम के अलावा हम सबको ट्रैवल करना चाहिए. मतलब आप जितना भी कमा रहे हो उससे थोड़ा सा आप अपना 20-30% पैसा अलग करके वी ऑल शुड ट्रैवल. मतलब आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ विच विल इवॉल्व यू इनटू अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग. सो सर्टन थिंग्स जो मैंने लाइफ में अडेप्ट करी है वो ट्रैवलिंग से ही करी है. आप जिस तरीके के लोगों से मिलते हो, आप अलग अलग लाइफ स्टाइल, अलग अलग कल्चर्स देखते हो. इट्स सो डाइवर्स आउट देयर. सो या इट विल चेंज यू समवेयर.
0: मैंने कहीं पे पढ़ा था आपने एक गाना लिखा भी, आप लिखती भी हैं.
1: हाँ.
0: तो उस गाने की अगर एक दो लाइन अगर आप गा दें बता ही दें मतलब no. की
1: हाँ मैंने गाने लिखे हैं. एक्चुअली देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु इज वन ऑफ द रेनाउंड लिरिसिस्ट इन द इंडस्ट्री, तो उनके साथ मैंने काम किया है. बट एक गाना है जिसमें मुझे एक्चुअली एज अ लिरिसिस्ट मेरा नाम आया था. which is called Killer Haseena for T series, and this one was for Arjun Kanungu and Tulsi Kumar. So me and the other person Vayu, हम दोनों ने साथ में ये गाना लिखा था. तो नॉट जस्ट दिस, आई डू राइट स्टोरीज ऑल्सो. आई एम राइट नाउ लर्निंग कॉपी राइटिंग एंड कॉन्टेंट राइटिंग ऑल्सो. सो बेसिकली आई एम गोन बी वर्किंग ऑन एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड कैंपेन्स. तो आई जस्ट वॉन्ट टू, एज एन आर्टिस्ट आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर
0: क्रिएटिविटी होनी चाहिए.
1: हाँ, मतलब और जगह भी मुझे एक्सप्लोर करना है. सो इस वजह से अभी मैं कॉपी राइटिंग में भी घुस रही हूँ. सो बेसिकली आई विल बी अ कॉपी राइटर, सर्टिफाइड कॉपी राइटर नेक्स्ट मंथ. तो मेरा नेक्स्ट मंथ मेरा कोर्स खत्म हो रहा है.
0: अच्छा,
1: या
0: किलर हसीना की कोई हुक लाइन या दो लाइंस, कुछ भी.
1: किलर हसीना हसीना आ जान ले ले, किलर हसीना.
0: तो ये डांस और पेपी टाइप का सॉन्ग होगा.
1: इट्स अ प्रॉपर बॉलीवुड नंबर. मतलब ये तो बहुत मजा भी आया था एक्चुअली इसको लिखने में, बट प्रॉपर बॉलीवुड नंबर है ये.
0: तो ये लिखने की जो जर्नी है, ये भी बहुत पहले से ही है या अभी साथ साथ आप लिखने लगी हैं?
1: ये बहुत पहले से है एक्चुअली, बचपन से है, पर लेकिन अब मैंने इस पे प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दिया है बिकॉज बहुत ज्यादा जरूरी है. एट द एंड ऑफ द डे आई वॉन्ट टू गेट इन टू समथिंग विच इज कि कैमरे के पीछे भी क्या होता है. मतलब मुझे उस पर भी काम करना है, दैट आई वॉन्ट टू गेट इन टू स्क्रिप्ट राइटिंग एंड यू नो लाइक एक एड को. मैंने एड्स वैसे बहुत सारे किए हुए हैं एज एन एक्टर, बट नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट एड्स ऑल्सो.
0: बनता कैसे है,
1: बनता कैसे है, लिखते कैसे हैं, यू नो प्रॉब्ली आई वॉन्ट टू डायरेक्ट ऑल्सो वन डे एड्स और फिल्म वट सो एवर. सो दैट्स वाई आई एम गेटिंग इन टू कॉन्टेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग.
0: बहुत ही अच्छी बात है कि सीखने की चाह हर चीज में है.
1: हाँ.
0: किसी एक चीज को आप स्टिक नहीं कर रही हैं.

0: वॉक टॉक
1: जीवन में कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम नहीं बढ़ाते। अगर आप कहीं जा रहे हैं और सोचे कि बहुत दूर है और वहाँ के लिए आप निकल ही ना पाओ तो जहाँ हो वहीं रह जाओगे, लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम ही सही अपने एम की तरफ बढ़ाते हो तो धीरे धीरे करके रास्ता पार हो ही जाएगा।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और वॉक टॉक रेडियो में मैं हूँ आपके साथ किरण। वॉक टॉक रेडियो पर जो हमारी पॉडकास्ट सीरीज है उसमें बहुत सारे अलग अलग लोग अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेकर और अपने बहुत सारे थॉट्स को लेकर हमारे साथ बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। और इसी पर आज हमारे साथ हमारी पॉडकास्ट सीरीज में मेरे साथ इस वक्त जो स्टूडियो में मौजूद है उनके बारे में आपको बता दूं, इनका नाम है कृतिका गुरुंग और एक बहुत ही प्यारा सा स्टार्टअप इनका है जिसका नाम है एवांते। तो सबसे पहले कृतिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉक टॉक रेडियो पर।
2: थैंक यू सो मच किरण फॉर हैविंग मी।
1: कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आकर?
2: बहुत अच्छा लग रहा है।
1: रेडियो का मतलब क्या है आपकी लाइफ में?
2: रेडियो का मतलब है टू कनेक्ट पीपल थ्रू आर वॉइसेस, थ्रू आर स्टोरीज, थ्रू आर जर्नीज।
1: हाँ, सो कृतिका, सबसे पहले जो है मैं आपसे ये पूछूंगी कि कृतिका गुरुंग कौन है, क्या करती है एंड क्या करना चाहती है लाइफ में आगे, क्योंकि जो हमारे लिसनर्स सुनेंगे उन्हें आपके बारे में भी कुछ नहीं पता।
2: सो कृतिका गुरुंग, शी इज अ ऑर्डिनरी गर्ल who loves shopping, who loves creativity, and छोटे से शहर से है, छोटी सी जगह से है, डोईवाला।
1: हाई फाई, मैं पासी से हूँ,
2: पास पास वाली जगह से है। और मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश ऑनर्स, देन एम ए इंग्लिश 2021 में कंप्लीट हुआ है। सो लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, खाली थी और क्लासेस भी ऐसी चल रहे थे, ऑनलाइन चल रहा था, तो क्या हुआ कुछ ना कुछ चलता रहता था क्रिएटिविटी ना, कि क्या किया जाए, मतलब कुछ ना कुछ लाइक स्क्रैप बुक वगैरह हो गया या फिर कार्ड्स बनाना, ये सारी चीजें मुझे पहले से बहुत पसंद था। एकदम से माइंड में क्लिक हुआ कि एक आईडी बना लेते हैं, तो फिर माइंड में आया कि चलो स्क्रंची से स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रंची से स्टार्ट किया मैंने, एंड उस टाइम पे मेरे जो जूनियर्स रहे हैं कॉलेज के इंग्लिश ऑनर्स के बैच के, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे ना।
1: कैसा सपोर्ट?
2: उन्होंने काफी ज्यादा पोस्ट वगैरह शेयर किया, खरीदा मुझसे काफी स्क्रंचीज, तो मेरे लिए वो काफी मोटिवेटिंग था उस टाइम पे ना। अगर आप कुछ सामान बना रहे हो या फिर कुछ आपने लाके रख दिया दुकान में, आपने दुकान भी खोली, कोई खरीद ही नहीं रहा है, कोई कस्टमर ही नहीं है, तो एक बहुत ज्यादा ना डीमोटिवेशन टाइप का हो जाता है आपके लिए। हाँ, लेकिन आपने कुछ स्टार्ट किया है एंड लोग आपको
1: अप्रिशिएट
2: कर रहे हैं, आपको आगे वो कर रहे हैं, फेमस टाइप का कर रहे हैं थोड़ा बहुत छोटा मोटा करके, लेकिन हाँ वो काफी मेरे लिए उस टाइम पे मैटर करता था, उस टाइम पे अभी भी मैटर करता है। तो ऐसे स्टार्ट हुआ एवांते का जर्नी।
0: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: So, जब ये स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बिल्कुल डिफरेंट है ना, वो बिल्कुल पढ़ाई वाला है एकदम, और ये जो आप काम कर रहे हो एवांते के अंदर वो एक क्रिएटिव साइड है आपका, तो उस टाइम पे घर वालों को ऐसा नहीं लगा कि क्या कर रहे हो, कॉलेज तो किसी और चीज की फीस हम दे रहे हैं और तुम जो चूज कर रही हो, काम कर रही हो, वो कुछ और ही है, तो उनका क्या रिएक्शन था उस पर?
2: बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफरेंट, बट मेरा ये है कि अगर मैंने कुछ चीज स्टार्ट किया है या फिर कुछ ठान लिया ना, फिर फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी बोले, तो करना है तो करना है, चाहे मैं रात के 2 बजे तक करूँ, चाहे 3 बजे तक करूँ, और मॉर्निंग में उठ के और फिर मुझे कॉलेज भी जाना पड़े ना 7 बजे, तो चलता है मेरे लिए ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है।
1: बड़ी बिंदास आपका जो थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे था,
2: ये चीज माइंड में थी तो फिर करती गई। हाँ, पेरेंट्स बोलते थे कि कुछ जॉब वॉब का देख लो, बाकी साइड में अपना पढ़ रही थी उस टाइम पे, और कॉलेज भी फिर खत्म हो गया और कॉलेज में कुछ प्लेसमेंट का भी कुछ आया नहीं उस टाइम पे, तो एक तरह से ना माइंड में थोड़ा डिप्रेसिंग भी हो रहा था वो साइड बाय साइड, बट एवांते मेरे लिए ना एक वो था खुद को हील करने का ना। हम किसी न किसी चीज के थ्रू खुद को हील करते हैं, कोई घूम के करता है ना, और तो मेरे लिए वो थी क्रिएटिविटी, तो उसी में मैं बिजी रहती थी, कभी उसका कंटेंट बनाने में, कभी उसको बनाने में उसी चीज को, या फिर उसको पिक्चर्स क्लिक करने में, फिर सोचने में कि अरे इसका क्या नाम रखना चाहिए इस वाली स्क्रंची का, इसको कैसे हम डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे रीच बढ़ाया जाए, तो माइंड में वो चलता रहता था। तो मैंने ज्यादा ना उस चीज को, जो चीज है नहीं उस चीज को मैंने ना ज्यादा उस टाइम पे सोचा नहीं कि जॉब नहीं है करके, तो इसी सोच के लेके मैं आगे बढ़ती गई, तो ऐसे ही अब 2 साल भी हो गए एवांते को।
1: हाँ, मतलब वो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उस बात का दुख नहीं मनाया, बट ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी अपने आप को टाइम दिया उस टाइम के लिए कि कोई बात नहीं, वो कर रहे हैं तो करने दो, मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी.
0: Walk Talk Radio, tune in for a better life. Walk Talk Radio.
1: कि जब आपके घर वाले आपका सपोर्ट करते हैं, उसके बाद जो बाहर वाले होते हैं ना, वो बहुत बड़े हमारे क्रिटिक्स बहुत सारे आते हैं इधर उधर से, कुछ कहते हैं, लेकिन कई लोगों को ना वो चीज तोड़ देती है.
2: लाइक मैंने आपको बताया, मैंने स्क्रंचीज से स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, मार्केट में जाके फैब्रिक चूज करती थी. अगर आप कुछ अपने लिए लहंगा भी बना रहे हो या फिर नॉर्मल एक सूट या कुर्ती ले लो, तो आप कुछ फैब्रिक देख के लड़के को होता है ना, खुद को इमेजिन कर लेती हो कि इसका ये वाला इस फैब्रिक का कि ओके इस फैब्रिक में और इस प्रिंट में और इस एम्ब्रॉयडरी में ये स्क्रंची बहुत अच्छी लगेगी.
1: एस्थेटिक सेंस.
2: हाँ, तो वो चीज था पहले से ना, बट सुनने में ये आता है कहीं से, पता लगता है कि ये ना बचे हुए कपड़ों का बनाती होगी ये लड़की, उन्हें पता भी नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं वांथे में चल क्या रहा है.
1: हाँ,
2: बट बातें कैसे बनाएंगे ना फिर. हाँ, अगर देख लेंगे तो.
1: हाँ,
2: तो ये चीज सुनने में आती थी, तो लगता था कि भाई क्या ही क्यों ही बोलना है ऐसे लोगों से, सोचने दो उन्हें जो सोचना है, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, सो लेट इट बी, आप जाओ, आप जिसको जो बातें करनी है करो, मैं ऐसी खुश हूँ, मैं ऐसी कर रही हूँ.
1: तो उस वक्त, अब ये तो रही क्रिटिसिज्म वाली बात, एप्रिसिएशन की बात करूं या फिर कॉम्प्लीमेंट्स की बात करूं आपके वर्क को लेके, लेकिन जब किसी का कॉम्प्लीमेंट आता है, जब कोई कह देता है यार बहुत अच्छा कर रही हो, तो बड़ा अच्छा लगता है, तब सेटिस्फेक्शन होता है, हाँ मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ. तो वो कॉम्प्लीमेंट्स कौन कौन से थे, कहाँ से आए हो?
2: जब स्टार्टिंग में क्या हुआ, नॉट स्टार्टिंग, लास्ट ईयर की बात है, जब मैंने एक मैम है, दैट्स सिली वॉन्डरर करके उनका इंस्टाग्राम में नेम है, मिनर्वा मैम, उनका नाम मिनर्वा है. तो उस टाइम पे मैंने उनको कोलैबोरेशन के लिए पूछा था, तो उन्होंने पेज वगैरह चेक किया, उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कोलैबोरेट किया. और उनके मतलब जब उन्होंने कोलैबोरेशन किया तो काफी फॉलोवर्स भी आए, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया उस चीज को ना, काफी अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया अपने कोलैबोरेशन वाली रील पे. तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा ना एक माइलस्टोन टाइप था.
1: अच्छा,
2: उस टाइम पे.
1: हाँ.
2: ओके, और उसके बाद चीजें काफी अच्छी होने लगी, यू नो, फैमिली फ्रेंड्स जब कुछ भी गिफ्ट फिफ्ट भी हो, छोटी मोटी चीजें वो मेरे से ही आके पैक करवा रहे हैं, सब ले रहे हैं, तो मेरे लिए काफी वो था, वो ओवरवेल्मिंग था काफी कि ओके नाउ इवांते इज देयर फर्स्ट चॉइस, आई एम डूइंग समथिंग, ठीक है सही चल रही हूँ.
1: ओके,
0: वॉक टॉक रेडियो, tune in for a better life. Walk Talk Radio.
1: आपने अभी कोलैबोरेशन की बात करी, और अगर मैं बोलूं कि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना अपने आइडिया से एक स्टार्टअप किया है और सोच रहे हैं कि उसको एक एक उस जगह तक पहुंचाएं जहां तक वो चाहते हैं, तो सोशल मीडिया की जहां तक मैं बात करूं, एंड क्योंकि आप एक यूथ हो तो आप बता सकते हो कि सोशल मीडिया कितना हमारे लिए, हमारे मेंटल पीस के लिए खराब भी है, और अगर हम उसको अच्छे से इस्तेमाल करें, उसका सही इस्तेमाल करना जाने, तो वो हमारे लिए एक एडवांटेज भी हो सकता है. आपका कैसा एक्सपीरियंस है?
2: आई से कोलैबोरेशन को लेके बोला ना आपने, लाइक उस टाइम भी मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले, जैसे मैंने आपको मिनर्वा मैम का बताया, और भी है दो तीन जो बहुत सपोर्ट करते हैं, जो रील्स वगैरह शेयर करते हैं, पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं, जिनकी ऑलरेडी मतलब केज में है फॉलोवर्स. इस बीच ऐसी चीजें भी हुई है जब मैंने ऐसे गलत लोगों के साथ कोलैबोरेट कर लिया वो भी पेड कोलैबोरेशन, फर्स्ट और लास्ट टाइम था वो, जहां पे मैंने अपने प्रोडक्ट्स भी बहुत दिए, ठीक है, और पेड कोलैबोरेशन था, पैसे भी दिए, लेकिन ना उसमें एक फॉलोवर आया, ना उसमें कोई कुछ रिव्यू वगैरह इतना कुछ था नहीं, क्योंकि उन्होंने अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं किया, और वो भी चीज बार बार बार बार बोलने पे. एंड जब आप बार बार किसी को बोलते, फिर वो बोलते हैं कि यू आर रेस्टलेस, व्हाई यू आर बीइंग सो रेस्टलेस. तो हम बोलते हैं ना, जैसे अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, आई नॉट से कि वो बुरी है या वो, लेकिन जब आप कुछ काम कर रहे हो, आप उस चीज पे प्रोफेशनली उस चीज को डील कर रहे हो, तो भले वो स्मॉल बिजनेस हो या बिग बिजनेस हो, आप उस चीज को जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपको पेमेंट मिल चुकी है, तो आपको वो चीज भी उतनी ही श्रद्धा से करनी चाहिए जितनी आपने बाकी चीज को किया है. एंड वो चीज उन्होंने की नहीं, तो वो बहुत डिसहार्टनिंग था मेरे लिए. तो ये चीज भी आई डोंट नो कि कितनी आनी चाहिए उस सोशल मीडिया में, लोगों को कैसे पता लगना चाहिए कि हाँ कौन फेक है, कौन ऑथेंटिक है, कौन रॉ है, और कैसे कर रहा है अपनी चीजों को. सबका अपना अपना वे है, बट इन सब चीजों में बिजनेस ओनर्स को मैं यही बोलूंगी कि बहुत सोच समझ के स्टेप ले जब हम कोलैबोरेशन वगैरह करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर्स कैसे आते हैं स्टार्टिंग में. ठीक है, एक टाइम पे एक वो हाइट पे भी चले जाते हैं कि बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, बट फिर वही ना, जैसे हम बिजनेस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, बहुत ऊपर भी जाते हो तो फिर उसी हिसाब से नीचे भी आते हो, तो वो बैलेंस करना भी है. तो जब हम किसी पे स्पेंड कर रहे हैं कोलैबोरेशन वगैरह में, तो सोच समझ के उतना आपको रीच आना भी चाहिए जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं.
0: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.
3: नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर. और आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेशन, जिसे आप पलायन भी जानते हैं. बाकी नहीं, हम अपने उत्तराखंड की बात करें जो 2000 में बनाया गया था. इसमें बहुत सारे रीजंस थे उत्तराखंड को बनाने के लिए, लेकिन उसमें से दो तीन रीजन ये थे कि उत्तराखंड एक छोटा स्टेट रहेगा, उसमें डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है और रोजगार मिलेगा, लोग पलायन नहीं करेंगे. लेकिन आज शहरी जिंदगी के आकर्षित होकर जो हमारे युवक हैं और अन्य लोग हैं उत्तराखंड के, वो पहाड़ छोड़कर शहरी जिंदगी जीने के लिए अलग अलग जगह जा रहे हैं. वो दिल्ली जाते हैं, अलग शहरों में जाते हैं, और वहां जाते ही उनके सपने टूट जाते हैं. एक छोटा सा कमरा होता है, रोजगार के लिए छोटे मोटे उन्हें काम करने पड़ते हैं, वो लौट के नहीं आते हैं, जिंदगी में वैसे ही निकल जाते हैं. पहाड़ों पर होते हैं, वो ये सोचते हैं कि शहर में उनको सैलरी अच्छी मिल रही है, वहाँ जाके उनकी कमाई अच्छी होगी. लेकिन वो एक चीज ये भूल जाते हैं कि शहरी जिंदगी में शहरी खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं. तो जितना वो पहाड़ों पे उन्हें मिल रहा था, उतना ही उन्हें शहर में भी मिलता था. सरकार ने बहुत सारी नीतियां निकाली हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों के लिए, होम स्टे जैसी चीजें, छोटी मोटी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने, उन्हें प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बहुत सारी चीजें प्रयास करी है. अगर आप उत्तराखंड में ही रहें और उत्तराखंड को देखें, उत्तराखंड में क्या कुछ नहीं है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं उत्तराखंड में. केदारनाथ हमारे पास है, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, अन्य टूरिस्ट स्पॉट्स हमारे पास हैं. क्योंकि पहाड़ों पर आप पे खुद का घर है, खुद की जमीन है, खेती है, अलग तरीके के रिसोर्स हैं, दोस्त हैं, एक हिम्मत बनती है, कॉन्फिडेंस बनता है. लेकिन तब भी हमें वो शहरी जिंदगी, जो वेस्टर्न कल्चर हमारे दिमाग में बहुत पहले डाल दिया गया था, वो अभी तक निकला नहीं है. हमें अभी भी दिखावटी रूप में शहरी जिंदगी जाना है, ताकि हम बोल सकें कि मैं शहर में नौकरी करता हूँ. लेकिन वो दुख और जो तकलीफें शहर के व्यक्ति को प्लान करके जो सहनी पड़ती हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है. तो क्यों ना हम अपने यूथ को और आसपास जितने भी, उन सभी को समझाएं. आप खुद ये सोचिए कि क्या नहीं हो सकता है उत्तराखंड में. इसे हम देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं, और देवभूमि जिसे हम देवों की भूमि कहते हैं, तो क्या देवों का आशीर्वाद नहीं होगा. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, इको पार्क स्टार्ट कर सकते हैं, होम स्टेज हो सकते हैं, होटल्स हो सकते हैं, अन्य चीजें हैं, आयुर्वेदों से जड़ी बूटियां हो सकती हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं. तो आप इस बारे में सोचिए कि क्या पलायन करना जरूरी है, क्या उत्तराखंड में रोजगार नहीं बनाया जा सकता, नए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आइडियाज जागरूक नहीं किए जा सकते. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ. नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड. आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर. हम बात करने वाले हैं राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट. आप ज्यादा नहीं, बस 20 साल पहले देखिए, जब मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था, पुराने लोगों को ज्यादा अच्छा फील होता था, क्योंकि जब फोन नहीं थे, वो अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, उनकी अलग हॉबीज होती थी. लेकिन जब से फोन आया है, जब से हमारे पास सोशल मीडिया और इंटरनेट आया है, तब से हमें अनयूजफुल, फेक, मोल्डेड और फैब्रिकेटेड न्यूज और इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलती, और जिसमें हमें ज्यादातर हमारी जो मेन फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन्हें छुपा दिया जाता है. मेरा मानना है कि अगर सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, अगर इसका हम सही इस्तेमाल नहीं करें, तो ये एक बीमारी है जो ड्रग से भी खतरनाक है. एक इंसान पूरे दिन सोशल मीडिया पे बस स्क्रॉल कर सकता है, बिना कुछ खाए, एक ही जगह पे बैठे हुए, एक ही पोजीशन पे बैठे हुए, बिना कुछ कंस्ट्रक्टिव किए वो बस सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर सकता है. इसका एक और एग्जांपल है, अगर आप किसी बच्चे को अपना मोबाइल दे दें और वो पूरे दिन बस उस मोबाइल पे गेम्स खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है, और आप शाम को रात में उससे जाके पूछिए कि आज आपने पूरे दिन फोन यूज किया, आपने आज क्या सीखा, तो आंसर आपको एक ही मिलेगा कि कुछ नहीं. तो इससे ये पता चलता है कि सोशल मीडिया का जहां पे हमें सही उपयोग करना था, वहाँ पे हम उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट में सिर्फ गलत प्रभाव ही है, इसमें बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी की पहले से और आज में बहुत सारी चीजों में सुधार भी लाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एजुकेशन में बहुत हेल्प किया है। नेचुरल डिजास्टर्स होते थे, आपके पास सूचना पहुंच सकती है, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, सरकार लोगों के पास आराम से पहुंच सकती है, आपको सही गलत के बारे में बता सकते, डॉक्टर कंसल्टेशन कर सकते हैं, बहुत कुछ जिंदगी में आसान हो गया है। इसी का अगर हम उदाहरण लें तो पहले अगर आपको ट्रेन की रिजर्वेशन करानी होती थी तो आप जाने के लिए तो यहाँ से कहीं जहाँ पे आप हैं वहां से करा सकते थे, लेकिन लौटने की रिजर्वेशन के लिए आपको एक चिट्ठी भेजनी होती थी जहां से आपको लौटने की रिजर्वेशन करानी है, वहां पे वो एक ट्रेन से जाती थी, दो दिन वहां पे अप्रूव होती थी, फिर एक ट्रेन से वापस आती थी। लेकिन आज आप विद इन सेकेंड्स आप बुक भी कर लेते हैं और उसे कैंसिल भी कर लेते हैं। आपको एक व्यक्ति आपके माता पिता आपको सही दिशा और सही रोड दिखा सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए चॉइसेस नहीं बना सकते हैं। ये आपको चूज करना होगा कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है आज के लिए और कल के लिए, क्या आप उस सोशल मीडिया के माध्यम से या उसके सही उपयोग के माध्यम से आप अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप नेशन को कुछ वापस दे रहे हैं, जितना भी नेशन ने आपको दिया है क्या आप उसे घूम फिर के नेशन को भी कुछ दे रहे हैं, इस बात पे जरूर सोचिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: एक इंसान के अलग अलग मूड्स होते हैं। कभी हम हैप्पी होते हैं, कभी सैड होते हैं, कभी नर्वस होते हैं तो कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन जब हम म्यूजिक सुनते हैं ना, कोई भी गाना सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसी म्यूजिक के मूड में चले जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ म्यूजिक। हेलो, हाय, नमस्कार, दिस इज आरजे गौतम और आज मेरे साथ हैं एक और गौतम, गौतम थापा। अगर आपने इनका नाम नहीं सुना तो इनकी आवाज जरूर सुनी होगी। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू गौतम इन वॉक टॉक रेडियो।
1: थैंक यू सो मच।
0: कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके?
1: बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट, सो थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, बट हाँ, मतलब अच्छा लग रहा है, अभी फीलिंग गुड है।
0: तो उस नर्वसनेस को एक म्यूजिक का फील देते हैं और गाने से शुरुआत करते हैं।
1: श्योर।

0: बात है गौतम, क्या गाया है।
1: थैंक यू सो मच।
0: मुझे भी खुशी हो रही है, मजा आ गया मतलब सुन के।
1: अरे थैंक यू सो मच।
0: तो आपने जैसे अभी हिंदी गाना गाया
1: जी,
0: तो ऐसी और कितनी लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप गाना गा लेते हैं?
1: मैं इंग्लिश सॉन्ग्स भी गाता हूँ, कुछ पंजाबी हो गए और कुछ सूफी हो गए। थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ आजकल जो हमारी कम्युनिटी लैंग्वेजेस हैं, कुछ गढ़वाली गाने प्रिपेयर कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि फरमाइशें काफी आती रहती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और कुछ गोरखाली सॉन्ग्स की फरमाइशें आती रहती हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस चल रही है आजकल।
0: आप गिटार तो बजाते ही हैं?
1: हाँ जी।
0: साथ में और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप बजाते हैं, आपको आता है?
1: थोड़ा बहुत कीबोर्ड प्ले कर लेता हूँ मैं, बाकी गिटार मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट है। अकोस्टिक गिटार ही प्ले करता हूँ ड्यूरिंग माई परफॉर्मेंसेज एंड ऑल। और अभी रिसेंटली 2 सालों से मैंने अपना बैंड फॉर्म किया है, तो एक बैंड फुल बैंड में आपको पता ही है कि 4 लोग होते हैं, एक वोकलिस्ट होता है, लीड गिटारिस्ट होता है, बेस गिटारिस्ट होता है और ड्रमर होता है। तो बेस गिटारिस्ट की जगह हमारे पास थी नहीं, तो बेस गिटार भी आजकल मैं प्ले करके ही गाता हूँ।
0: क्या बात है।
1: तो ऐसी चीजें हैं बस।
0: एक आर्टिस्ट के लिए ना उसका पहला गाना बहुत ही स्पेशल होता है।
1: हाँ जी।
0: तो आपको कुछ याद आ रहा हो आपका पहला गाना आपने लिखा हो, गाया हो, या कोई भी मेमोरी हो ऐसी?
1: जी, पहला गाना जो मैंने कंपोज किया है, मेरा खुद का सॉन्ग है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो ये खुला आसमां जो है उस गाने के बोल हैं। तो ये गाना मैंने बहुत पहले आई बिलीव बैक इन 2004 मैंने ये गाना लिखा था, तो कभी मौका मिला नहीं, कंपोज भी खुद ही किया था बीच में, क्योंकि कभी हम लोग इस फील्ड में थे नहीं पहले म्यूजिक में। म्यूजिक में मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, पर हाँ जब आया हूँ तो बड़े अच्छे तरीके से ही आया हूँ। तो तब मैंने इस गाने पे और काम करना शुरू किया, तो जो पुराने लिरिक्स थी उस गाने की वो भी थोड़ी सी मॉडिफाई करी इस टाइम के हिसाब से। तो दैट सॉन्ग इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, गाने का नाम है ये खुला आसमां।
0: जैसे आपने अभी म्यूजिक में आने की बात करी
1: जी,
0: तो ये म्यूजिक का शौक, ये सिंगिंग का शौक, ये आपने सिर्फ एक एज अ शौक करा है या इसकी आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली है?
1: जी, मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली है। मेरे गुरुजी हैं पंडित मुरलीधर जगुड़ी जी, तो वो मेरे ही स्कूल में म्यूजिक टीचर थे, तो उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि मुझसे म्यूजिक सीखो। तो मैंने 6 साल का विशारद किया है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, वोकल सीखे हैं, मतलब वोकल सीखे, पर उसके बाद मैं प्रोफेशनली कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि वही आपको पता ही है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो घर से आपको प्रेशर होता है कि पहले पढ़ाई पूरी करो, पढ़ाई के बाद फिर नौकरी करो तो वो वाला प्रेशर था। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली ये सब करने के बाद मैं आया म्यूजिक की फील्ड में। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड वर्किंग, 4 साल मैंने नौकरी करी। नौकरी के दौरान मैंने यूएस भी ट्रैवल किया, मेरी कंपनी ने मुझे बाहर भेजा, मतलब वेल सेटल जॉब थी। फिर मैंने वापस आके दोबारा देहरादून में वापस आया, फिर मैंने एमबीए किया, एमबीए के बाद भी मैंने 2-3 साल नौकरी करी। पर जब एक पॉइंट आ जाता है आपकी लाइफ में कि नहीं यार ये चीज के लिए मैं बना नहीं हूं, एक आपको हिट मिलता है कि मतलब ये चीज ना आप नहीं कर पाओगे, फॉर अ लॉन्ग रन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बचपन से ही शौक था म्यूजिक में आने का। ठीक है, कॉलेज लाइफ में भी हम स्टेज शोज में परफॉर्म करते थे, तो सोचते थे कि यार अब स्टेज वर्क ही करना है। अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती थी, पर क्योंकि नौकरी में इतना व्यस्त होते थे कि आपको नहीं मिलता था इतना टाइम कि आप जाके परफॉर्म भी करो। तो धीरे धीरे ये चीजें डेवलप हुई। 2018 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे म्यूजिक ही करना है। तो अपने आप को प्रिपेयर करा मैंने 3-4 महीने काफी, क्योंकि जब आप स्टेज शोज करते हो, जब आप स्टेज परफॉर्मेंस करते हो, तो आपको एक स्टैमिना चाहिए होता है,
0: बहुत बहुत चाहिए,
1: राइट? आपको कम से कम 2-2.5 घंटे या 3 घंटे आपको परफॉर्म करना है।
0: बिल्कुल।
1: तो आपके वोकल कॉर्ड्स, वोकल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप 3 महीने तक कंटिन्यू, 3 महीने बोल रहा हूँ सॉरी, 3 घंटे तक आप कंटिन्यू गा सके। 3 महीने इसलिए निकला मेरे मुंह से क्योंकि 3 महीने मैंने प्रिपरेशन करी थी डेली। तो उसके बाद मेरे को पहला ब्रेक जो मिला वो मुझे मिला जयपुर में। जयपुर से मेरी स्टार्ट हुई 2018 में। 6 महीने मैंने वहां के क्लब्स एक्सप्लोर करे, धीरे धीरे अपना बिल्डअप किया, अपने सॉन्ग लिस्ट चेंज करता रहा, क्योंकि एक टाइप के सॉन्ग्स अगर आप गाते रहेंगे तो आपकी ऑडियंस भी बोर हो जाती है। एग्जैक्टली, आपकी ऑडियंस बोर हो जाती है। फिर आपको इतने गाने प्रिपेयर करने हैं क्योंकि आपके रिक्वेस्ट बहुत आती है, अब कुछ रिक्वेस्ट मैं फुलफिल कर पाता हूँ क्योंकि मैंने वो गाने सुने हैं, मैं वो गाने प्रिपेयर कर चुका हूँ, कुछ कभी कभी नहीं हो पाता। फिर 2019 में मैं देहरादून आ गया, जब मुझे पता चला कि देहरादून में भी लाइव म्यूजिक का स्कोप बढ़ रहा है, बहुत सारे क्लब्स यहाँ पे खुले थे। सबसे पहला क्लब था ग्रेट इंडियन पब, जो कि आपके राजपुर रोड में है, फिर आपका टॉनिक है जो कि आपके टूवर्ड्स बल्लूपुर रोड में है। तो टॉनिक से मेरी शुरुआत हुई थी और अभी ऐसा है कि 5 साल हो गए मुझे टॉनिक में परफॉर्म करते करते, तो बस जर्नी वहीं से शुरू हुई म्यूजिक की और कंटिन्यू है अभी तक।
0: आपने जर्नी की बात करी और अपनी पूरी कहानी के बारे में हमें बताया, लेकिन एक ऐसा जो आप एक पॉइंट आता है जब बंदे को हिट करता है,
1: हाँ जी,
0: यार नहीं अब नहीं करनी जॉब, अब मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है,
1: हाँ
0: तो वो इंसिडेंट या वो पॉइंट कब था?
1: ये बहुत ही एक अमेजिंग किस्सा है। मैं गया तो था बिजनेस ट्रैवल के लिए अपनी कंपनी की तरफ से, आई यूज टू वर्क फॉर एन MNC उस टाइम पे, 2016 की बात है। हम चैटानूगा गए थे, ऑफिस का क्राउड पूरा एक प्रोजेक्ट लेने के लिए गए थे। तो 2016 में जब चैटानूगा में थे, टेनेसी एक स्टेट है यूएस का, वहां पे एक सिटी है चैटानूगा, फिर चैटानूगा से हम नैशविल गए थे विच इज अ म्यूजिक सिटी। तो नैशविल में, नैशविल से वैसे आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे सिंगर्स वहां से नैशविल के ही हैं, मतलब
0: जैसे जैसे
1: जैसे आपने सुना होगा एल्विस प्रेस्ली, बहुत ही 60s के जाने माने, अभी तक उनके गाने सुनते हैं, कांट हेल्प फॉलिंग इन लव विद यू उनके सॉन्ग्स हैं, माइली साइरस जो कि लोगों ने सुना ही होगा काफी नाम, शी इज ऑल्सो फ्रॉम नैशविल। तो वो म्यूजिक सिटी है, वहां पे मतलब हर 10 बंदों में से 9 बंदे जो है गिटार बजाना जानते हैं। तो वैसी क्लब हॉपिंग चल रही थी हम लोगों की, हमारी छुट्टी थी, हम घूम रहे थे, तो एक कैरियोके नाइट था वहां पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं थोड़े इंग्लिश सॉन्ग्स भी सुनता हूँ, गा लेता हूँ, तो मैं भी चढ़ गया स्टेज पे कि मैं भी गाऊंगा। सो वहां पे लोग थे जो मुझे कह रहे थे कि यू आर एन इंडियन, हाउ कैन यू सिंग इंग्लिश सॉन्ग्स एंड ऑल, तो मैंने कहा नहीं मैं गाता हूँ। तो जॉन डेनवर एक कंट्री आर्टिस्ट है, 60s 70s के ही है ये, तो उनका सॉन्ग है एनी सॉन्ग। तो मैंने जब वो एनी सॉन्ग गाया तो लोग वहां पे थोड़े वो हो गए कि यार ये तो बढ़िया गा रहा है लड़का,
0: इंडियन आदमी ने इतना अच्छा इंग्लिश गाया है।
1: बिल्कुल। तो वहीं उनसे, वहीं पे एक जेंटलमैन बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि यू हैव अ वेरी लवली वॉइस एंड यू शुड डू समथिंग विद योर वॉइस। तो वो बात मुझे काफी हिट करी। तो नैशविल में मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं यार अब तो कुछ करना है, अब नौकरी ज्यादा नहीं हो सकती है, कुछ अपना ही करना है।
0: तो नैशविल से मतलब आपने अपनी गाड़ी मोड़ ली?
1: बिल्कुल बिल्कुल। वहां से आने के बाद 6-7 महीने मैंने थोड़ा और काम किया क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट में था। उसके बाद मैंने अच्छे से अपनी जॉब छोड़ी, पूरा अपना क्या बोलते हैं उसको, कौन सा पीरियड होता है वो,
0: नोटिस पीरियड
1: सर्व करके मैंने नौकरी छोड़ी और फिर मैं अपनी म्यूजिक जर्नी मैंने स्टार्ट करी।
0: आपने अभी नैशविल की कहानी सुनाई हमको
1: जी,
0: तो एक गाना फिर इंग्लिश में भी हो ही जाए।
1: इंग्लिश में मैं वही गाना सुनाता हूँ आपको जो मैंने
0: बिल्कुल, वहां बिल्कुल, गाया था,
1: बिल्कुल, ना?

0: तरह के गाने आपने सुने होंगे, गाए भी होंगे, और इतने बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं इस म्यूजिक की फील्ड में।
1: हाँ जी,
0: तो आपका भी जरूर कोई ना कोई रोल मॉडल रहा होगा।
1: हाँ जी, मतलब मेरे तो बहुत सारे रोल मॉडल्स रहे, क्योंकि मैंने हर एक आर्टिस्ट से बहुत कुछ सीखा है। हर एक आर्टिस्ट की जो चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, वो ग्रैब करने की मैं कोशिश करता हूँ। बहुत सारे वेस्टर्न आर्टिस्ट को मैं सुनता हूँ, एल्विस प्रेस्ली हैं, बीटल्स बैंड है, ठीक है, जॉन डेनवर हैं, ये तो हमारे वो हो गए। बाकी हमारे जो इंडियन वो हैं, किशोर कुमार जी का बहुत बड़ा फैन, ठीक है, 90s का किड हूँ तो अपने कुमार सानू जी, उदित नारायण जी, इन सबको सुन के बड़ा हुआ। और मेरे जो पसंदीदा अभी के जो हैं, मतलब जिनको मैं अभी तक मानता हूँ, हरिहरन साहब हैं, सुखविंदर सिंह, उनके जैसी आवाज किसी की नहीं है, मतलब वो डिफरेंट है। और आज के दौर में अगर बात करें तो अरिजीत की टक्कर के सिंगर तो कोई है नहीं, आप सबको पता है और ये सब मानते भी हैं, क्योंकि वो उनका ऐसा जॉनर है कि वो मतलब कोई भी गाना गा सकते हैं और विद दैट ईज वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा है, तो मतलब इंस्पिरेशन मैं हर जगह से लेता हूँ, ऐसा नहीं है। सोनू निगम सर है ना,
0: उनकी जैसी आवाज भी,
1: उनकी भी आवाज जैसी कोई नहीं है,
0: कोई आवाज नहीं ऐसी।

0: जब ऐसे म्यूजिक की फील्ड में हम जाते हैं या कोई भी इंसान एंटरटेनमेंट की फील्ड को चुनता है तो इनिशियल डेज में काफी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आपके क्या वो चैलेंजेस थे?
1: मेरी लाइफ के तो बहुत बड़े चैलेंजेस थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक वेल सेटल्ड जॉब में था, मुझे बहुत अच्छा ऑफर भी था, सैलरी भी अच्छी थी, जो कि हर माँ बाप को चाहिए होती है कि चलो बेटे को पढ़ाई करवाई है तो बहुत अच्छे से ये काम भी कर रहा है। तो उस समय ये डिसीजन लेना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, पर दिल से तो करना था, दिल तो मान नहीं रहा था कि अब नौकरी तुमसे होगी नहीं। तो जब मैंने नौकरी छोड़ दी थी तो मैंने 6 महीने तक अपने घर पे नहीं बताया था, मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि ये, मतलब क्योंकि मैं दिल्ली में था तो घर वालों को कोई आइडिया नहीं था इसने नौकरी छोड़ दी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने जयपुर से शुरुआत करी, तो 6 महीने मैंने जयपुर में शोज करे और वो वीकेंड पे मेरे कुछ मैं अपने फेसबुक में या इंस्टा पे पोस्ट कर देता था, तो घर वालों को लगता है चलो सैटरडे संडे इसकी छुट्टी होती है तो ये अपनी
0: शौक
1: पूरा कर रहा है। एग्जैक्टली। पर जब मैं 2019 में वापस आया और जब मैंने बताया घर वालों को कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, तो आपको, आप जानते ही हैं इंडियन पेरेंट्स थोड़े से, तो बिल्कुल खफा हो गए मुझसे। काफी समय तक मेरे से बातचीत नहीं हुई, बातचीत भी नहीं करी, मुझे रोज समझाते थे ये क्या डिसीजन ले लिया तुमने इस एज में, हम तो सोच रहे थे तुम सेटल हो गए हो, तुम्हारी शादी करवाएंगे। पर नहीं, मैंने सोचा था जो करना है तो अब करना ही है, क्योंकि दिल में एक बार ठान लिया था कि अब तो भाई म्यूजिक ही करना है और इसके अलावा मैं कुछ और कर नहीं सकता क्योंकि मैं इसी चीज में अच्छा हूं। तो बस डिफिकल्टी यही थी कि घर वाले मान नहीं रहे थे, तो बहुत टाइम लगा उनको समझाने में। फिर एक डिफिकल्ट टाइम और आया था, वो तो सबकी जिंदगी में ही था, जब कोविड का टाइम आया था तो आपके पास कोई लाइव शोज की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो उस समय काफी तगड़ा झटका लगा था। उस समय एक बारी के लिए दिल में ख्याल भी आया था कि यार ये गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कि अभी अगर नौकरी में होता तो कम से कम सैलरी तो आ रही होती। पर वही है कि जैसे कहते हैं लोग कि जहां चाह है वहीं राह है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: मुझे जूम शोज बहुत मिले, मैंने घर में बैठे बैठे शोज करे उसके बाद, सो आई यूज टू गेट पेड थ्रू यू नो, जहां पे जूम मीटिंग कर रहे हैं लोग, तो जूम मीटिंग में लोग मुझे कहते थे कि आपके पास सेटअप है, मैंने कहा बिल्कुल है, तो मैं उनके लिए एक एक घंटे परफॉर्म कर रहा हूँ, वो घर में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। मजा कम आता था लेकिन उनके लिए वो फन था और मेरे लिए मेरी मतलब रोजी रोटी टाइप आप कह सकते हैं। तो कोविड के टाइम पे मैंने जूम में बहुत शोज करे, तो ठीक ठाक चला, बहुत अच्छा समय भी नहीं था, पर मैं ये कहूंगा कि बहुत बुरा समय भी नहीं था। पर कोविड के टाइम पे मुझे टाइम बहुत मिला अपने आप पे काम करने में, तो ये पॉजिटिव पार्ट था। उसके बाद तो मैंने इतने गाने प्रिपेयर कर लिए कि मतलब अब मेरे पास गानों की कमी नहीं है।
0: बैंक भर लिया
1: मैंने अपना। एग्जैक्टली।
0: अभी हम लाइव रिकॉर्डिंग्स की बात कर रहे थे, लाइव शो की बात कर रहे थे, तो एक स्टूडियो में रिकॉर्ड करना और लाइव शोज करना काफी डिफरेंस होता है, कि आप एक कॉन्सर्ट में या लाइव शो में आप मिस्टेक नहीं कर सकते।
1: ना ना, बिल्कुल भी।
0: तो लाइव शो करने के

0: क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं
1: लाइव शो करने के? देखिए, डिसएडवांटेज तो मैं कुछ कहूंगा नहीं कि कुछ है, क्योंकि लाइव शोज में एक तो आपको क्राउड रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। आप जब आप परफॉर्म कर रहे हो और आपके सामने कोई क्राउड ही नहीं है तो आपको वो फील ही नहीं आएगी, यू नो। अब हम गाते ही हैं लोगों के लिए और अपने लिए भी गाते हैं, ऐसा नहीं है, बट जब लोग सामने बैठे हों और थोड़ा म्यूजिक को अप्रिशिएट कर रहे हों, जो सुनने वाले लोग हों, तो उनके सामने परफॉर्म करने में बहुत मजा आता है। और जैसा आपने कहा कि क्या डिफरेंस है स्टूडियो और लाइव में, स्टूडियो में आप रीटेक ले सकते हैं, लाइव में आप रीटेक नहीं ले सकते, तो ये पार्ट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अपने बैकग्राउंड के बारे में आप थोड़ा सा और बताएं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड फ्रॉम स्कूल टिल योर कॉलेज, क्या क्या आपने कराया?
1: स्कूल मेरा केंद्रीय विद्यालय हाथीबड़कला से है, फिर मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, बीएससी मैंने करा है आपका डीएवी कॉलेज से, फिर आफ्टर डीएवी पीजी 4 साल मैंने नौकरी करी है। मैंने आपको जैसे बताया कि 7-8 साल मैंने नौकरी करी है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में करी है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में करी है। पहले मैं शिपिंग कंपनी में था, फिर मैं एक स्टाफिंग कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल कंपनी थी गुड़गांव में, वहां पे था। तो 4 साल वहां जॉब करने के बाद 2013-14 में मैंने एमबीए किया है, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी से मैं एमबीए हूँ। फिर मैंने बिग बाजार में एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम किया है, जो बिग बाजार यहाँ देहरादून में आया था। फिर मैं वापस नोएडा मूव हुआ, दिल्ली और नोएडा, तो ईएक्सएल सर्विसेज में काम किया है। फिर ये सब जब हो गया, क्योंकि किसी भी कंपनी में मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि मैं शायद बना ही म्यूजिक के लिए था, तो इसलिए मैं हर 2-2 साल में स्विच कर लेता था फॉर द ग्रोथ एज वेल। पर वही है कि किसी भी काम में मुझे मजा नहीं आया, और जब से मैं म्यूजिक में आया हूँ फिर मुझे और कुछ करने का मन ही नहीं करता।
0: बिल्कुल, काम में मजा आना ना बहुत जरूरी
1: होता है।
0: तो जब गौतम थापा एक स्टूडेंट था या एक नॉर्मल कॉलेज का लड़का था
1: जी,
0: और जब अब आप एक फेमस सिंगर बन गए हैं, शहर में गाते हैं, लोग आपको जानने लग गए हैं
1: जी,
0: तो लोगों के नजरिए में कुछ बदलाव देखते हैं क्या आप?
1: बदलाव एज इन ऐसा कोई बड़ा बदलाव तो नहीं है। अब स्टूडेंट लाइफ में तो आपको बस आपके फैकल्टीज जानते हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड्स जानते हैं, कॉलेज के लोग जानते हैं। स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने जब ग्राफेस्ट होता है तो परफॉर्म किया है, तो कॉलेज में थोड़ा बहुत फेमस हो गया था, और जब से अब यहाँ देहरादून में करता हूँ तो बहुत ज्यादा फेमस नहीं हूँ मैं, बट हाँ थोड़ा बहुत थोड़े लोग जानते हैं अब देहरादून में कि हाँ कि गौतम थापा इस क्लब में परफॉर्म कर रहा है, तो चलो हम इस क्लब में चलते हैं आज सुनने के लिए।

नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर, और अब हम बात करेंगे कि आप सभी खुश रहो। तो खुशी है क्या? खुशी एक मन में होने वाली एक सुखद अनुभूति है, एक फीलिंग है जिसमें आप बस सुखी हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने रावण के बारे में सुना होगा। रावण के पास क्या कुछ नहीं था, सब कुछ था, लेकिन तब भी वो सुखी नहीं था। उसने सीता माता का अपहरण कर लिया। और दूसरी ओर आप दूसरे पहलू को देखें तो हमारे प्रभु श्री राम जो राजपाट वगैरह सब कुछ छोड़ के आ गए और एक छोटी सी कुटिया में अपने एक भाई के साथ वन में रहते थे। तो खुशी कोई चीज नहीं है जो आप कहीं से लेके आ सकते हैं। लोग पूछते हैं कि मेरे को खुश रहना है, मैं क्या करूं, मैं खुश कैसे रहूं। तो खुशी एक चीज नहीं है कि आप जाके दुकान से ले आए या मार्केट से ले आए, या फिर ये कोई लिविंग की स्टाइल नहीं है। खुशी तो तब मिलती है जब आप सुखी हैं, टेंशन नहीं है, लाइफ में जैसे हैं जो है उसके साथ आप सैटिस्फाइड है। था मैंने ये कहीं सुना था कि केमिस्ट्री में जैसे हमें पढ़ाया जाता था कि जब एटम या न्यूक्लियस कुछ टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसी तरीके से जब आप दुखी होते हैं, आप टूटते हैं कहीं से, आपका मन टूटता है तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है। तो अपने आप को थैंकफुल करिए कि आपकी जो एनर्जी है इसको आप सही जगह डाल के आप खुशी के माध्यम या खुशी के रास्ते जा सकते हैं। ये एनर्जी को आप नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुश होता है ना, उसकी अलग ही दुनिया होती है, वो उसी में मग्न होता है। अब एक स्टूडेंट या यूथ की लाइफ में एग्जाम्स एक बहुत बड़ी चीज होती है, कॉम्पिटिशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपने पूरी मेहनत की, आप खुशी से मेहनत कीजिए, और 1% को अगर जो चीज आप जिस लक्ष्य की तरफ आप जा रहे हैं वो नहीं हो पाए, तो ये सोचिए कि आपका प्रायोरिटी क्या थी। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी खुशियां थी। आपके पेरेंट्स के लिए भी आपका सक्सेसफुल होना जरूरी तो है, परंतु वो चाहते हैं कि आप खुश रहिए, वो पहली प्रायोरिटी रहती है। तो आप ये जान चुके हैं कि खुश रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बाकी सब छोड़ के आप खुशी की तरफ बढ़ेंगे तो आपके 10 दरवाजे और खुलेंगे। तो अब आप ये बताइए कि आप खुश हैं? क्या आपको खुशियां ढूंढनी जरूरी है? जो आपकी लाइफ जैसे है, क्या आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं है? जो लोगों को चीजें नहीं मिलती, क्या आपके पास वो नहीं है? मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर अभी अपने मन में जरूर ढूंढेंगे, और इसका उत्तर आज जब भी आप ये सुन रहे हैं आज जरूर ढूंढिएगा। आई होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो.
1: वॉक टॉक रेडियो,
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ. वॉक टॉक रेडियो.
3: जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते. सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते. हालात कैसे भी हों, वक्त अच्छा हो या बुरा हो, अगर आप हंसकर मुश्किल का सामना करते हैं तो यार मुश्किल भी एक दिन शर्मा के भाग जाएगी.
0: वॉक टॉक रेडियो.

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक
1: रेडियो, चलते रहिए अपने रास्ते पर, चलने में माहिर बन जाइए, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन।

इंसान हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत सिर्फ कुछ चुनिंदा घरों में ही होती है। आज के जमाने में हर व्यक्ति अपना फायदा चाहता है, मैं ये बन जाऊं, मैं वो कर लूं, मैं सबसे आगे, फिर चाहे वो दूसरे का नुकसान पहुंचा के क्यों ना मिले। ऐसी सोच रखने वाले लोगों को शॉर्ट टर्म में खुशी मिल सकती है, लेकिन आगे चल के इसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें खुद भुगतने पड़ते हैं।

नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर, और अब हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे, जॉइंट फैमिली। तो हिंदुस्तान बहुत चीजों के लिए जाना जाता था, जिसमें से तीन महत्वपूर्ण चीजें थी हमारी, वेल्थ, हेल्थ और फैमिली। जब ब्रिटिशर्स या इन्वेडर्स आए, वो हमें लूट के, हमारी सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को लूट के चले गए, जहाँ पे हमारी वेल्थ पे बहुत प्रभाव पड़ा। जो हमारी हेल्थ थी, हमारी आयुर्वेद और योगा, जो पूरे वर्ल्ड या पूरे विश्व में बहुत आज भी प्रसिद्ध है, उसको खत्म करने के लिए हमें जो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपनी इंग्लिश दवाइयां हमारे ऊपर थोपी गई। और तीसरी चीज, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी फैमिली, ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, जॉइंट फैमिलीज, और प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि सबके दिमाग में कहीं ना कहीं एक तरीके से वेस्टर्न कल्चर की सोच डाली जा रही है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए पांच लोग हैं, तीन भाई और दो बहनें। अब उनके हस्बैंड्स भी होंगे, वाइफ्स भी होंगी, और उनके बच्चे भी होंगे, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये 25-30 या उससे आगे का, ज्यादा का एक परिवार बन जाता था। अब हर एक व्यक्ति की, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, उसकी एक ना एक व्यक्ति से बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती थी, चाहे वो भाई की बहन से हो, चाहे एक बच्चे की ताऊजी से या बुआ से या चाचा से, एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी और खूबसूरत होती थी, जहाँ पे वो सब कुछ खुल के शेयर कर देते थे। खूबसूरती तो जॉइंट फैमिली की एक और है, वो कि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा सबके लिए इक्वल होता था, कोई अलग नहीं, कोई अपना नहीं, सब अपने होते थे, सब इक्वली ट्रीट किए जाते थे। अगर घर में शादी भी होती थी, तो कुछ ना कुछ करके शादी इतने प्यार और आराम से निपटती थी कि किसी एक व्यक्ति पे बोझ ही नहीं आता था। लेकिन आज वही जॉइंट फैमिली टूटने लग गई है, फैमिलीज रिश्तेदारी में बदल गई है, जो सिर्फ आते हैं और थोड़ा बहुत काम करा के चले जाते हैं। तो क्यों ना हम अपनी भारतीय संस्कृति को इतना मजबूत रखें कि चाहे कुछ हो जाए, हम वो कॉन्फिडेंस और वो जितना भी हमारी स्ट्रेंथ थी, वो कहीं जाने ना दे। तो क्या किया जाए कि अगर जॉइंट फैमिली नहीं है, उसे जॉइंट फैमिली फिर से बनाया जाए? तो मेरा मानना है कि महीने में 15 दिन में एक डिनर क्यों ना किया जाए, जगह बैठकर, एक किसी के हर दिन घर चूज करके वहां पे जाया जाए, डिनर किया जाए, बॉन्डिंग की जाए, ताकि आपको शेयर करने के लिए आपके भाई बहन बने। दो लोग कहते हैं कि मेरे दोस्त नहीं है, मैं क्या करूं, तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। आई होप ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, घर, बस में चलते हुए, सड़क पर चलते हुए, कहीं भी, कभी भी, क्या पता कौन हमसे किस बात पर बुरा व्यवहार करके चला जाए। तो जवाब में हम क्या करें? दोस्त अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। तो बुरे के लिए हम भी क्यों बुरा बने। आप जैसे हैं वैसे ही रहे और ऐसे ही बातों के लिए सुनते रहे वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: रेडियो
1: खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी क्या रजा है। इसका मतलब है कि आप अपने आप को इतना ऊंचा कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि खुदा तुमसे खुद पूछे तुम क्या चाहते हो भाई, क्या दूं तुम्हें।

अपने सपनों के पीछे भागते हैं, उनके सपने भी सपने बने रह जाते हैं। पर कोई बात नहीं, जो होता था अच्छे के लिए होता था।

0: जिंदगी में देखा जाए तो टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है।
1: वॉक टॉक रेडियो। या तो दिन आपके अनुसार चलता है या आप दिन के अनुसार चलते हैं। जो प्रेरित होना चाहते हैं वो किसी भी चीज से हो सकते हैं। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। शानदार जीत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपनी काबिलियत बस आप ही पहचान सकते हैं।
2: Walk Talk Radio, tune in for a better life. Walk Talk Radio.
3: हमेशा रिश्तों की वैल्यू को समझना बड़ा जरूरी है। रिश्ते किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, भाई बहन का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, अपनों के साथ गहरा रिश्ता। उसकी वैल्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बुरे से बुरे वक्त में यही लोग काम आते हैं। यही है जो वाकई हमें अपना समझते हैं, सही डायरेक्शन देते हैं। ऐसे रिश्तों की कद्र करना, वैल्यू करना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम लाइफ में इतना घुल मिल जाते हैं कि हमें समझ नहीं होती कि सही कौन है, गलत कौन है, अपने कौन है, पराए कौन है। जिनको हम अपना समझते हैं वो पराए निकलते हैं, और जिनको पराए समझते हैं वो कभी कभी अपना निकल जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनों पर विश्वास करना और उनके साथ चलना बहुत जरूरी है।
4: जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।
5: Walk Talk Radio. अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के हिसाब से बदल जाएगी, लेकिन अच्छा स्वभाव जीवन भर आपका साथ देगा। आपका स्वभाव ही आपको लोगों के करीब लेकर आता है, और आपका स्वभाव ही आपको लोगों से दूर लेकर जाता है। गौरतलब करिए कि आपके होने से क्या लोगों में खुशी होती है, उनमें हैप्पीनेस आती है, लोग आप लोगों से चहक के महक के बात करना चाहते हैं या आपको देख के इग्नोर करते हैं, आपको देख के दूर चले जाते हैं। हमारे जीवन की हर कड़ी हमारे खुद के स्वभाव से जुड़ी हुई है। अपने स्वभाव को चेक करें और जब जहां जाएं अपने स्वभाव, अपने व्यवहार से खुशियां बांटें।
4: मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है, और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो।
1: कुछ बनना है तो अपने आप की तरह बनो, किसी और की तरह कोई ना कोई हर रोज यहाँ बन रहा है, तैयारी ही सफलता है।
0: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो।
2: जिंदगी में कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस उसको करने का तरीका कुछ अलग सा होना चाहिए। आप उस काम को कितनी शिद्दत से करते हैं, कितना क्रिएटिव तरीके से करते हैं, ये जरूरी है। और किसी भी काम को करने से पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। अगर खुद पर विश्वास हो तो वो काम फोकस के साथ होता है। सोचो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में कभी आपके साथ हुई हो, बचपन में, स्कूल टाइम में, जहां हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने काम में होता था, फिर चाहे वो कोई खेल क्यों ना हो। इसीलिए आप कोई भी काम कर रहे हो तो फोकस के साथ करें।
0: वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो।
3: कभी भी हौसला मत खोना ए मुसाफिर, क्या पता मंजिल ने भी तेरे ही हौसलों का बहाना लिया हो।
0: वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो।
3: कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है।
0: वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो।
2: अगर जिस दिन आपने खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर दिया ना, तो उसी दिन से आपने लाइफ को जीना छोड़ दिया। आपकी लाइफ में आपकी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है, लेकिन एक बार जब आप दूसरों को खुद से कंपेयर करना शुरू कर दोगे तो आप दूसरों के हिसाब से चलना शुरू कर दोगे। आपको आपके पास जो भी है आप खुश नहीं रहोगे, आप हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते रहोगे, जिसके चलते आप कभी भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। लाइफ आपकी है, सपने आपके हैं, तो फिर रिमोट भी आपके हाथ में होना चाहिए। इसलिए दूसरों के बारे में सोचना या फिर खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो।
0: वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो।
1: काफिला भी तेरे पीछे होगा, तू अकेले चलना शुरू कर तो सही। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है।
0: वॉक टॉक रेडियो। Tune in for a better life. Walk Talk Radio.
4: A lion will never have to tell you that he's the king of the jungle. The eagle will take its flight knowing it owns the sky. And the shark will go about casually in the ocean just making its presence. You know, friends, it's never that noise you should make that will prove your value. And people will hear it. But it is the skill, it's a hardship, it's the work which you might be doing constantly and people are noticing it. You don't need to prove yourself to the other people who will always try to pull you down. But you need to continuously work on yourself. Walk on the road marked by you. That consistency and persistence is needed in your this journey. The success ultimately comes. People would follow you. People would praise you. But people would praise you for your hardship, your determination. So stop seeing here and there what people are thinking about your work, whether they're praising or pulling you down. Just go ahead.
0: Walk Talk Radio.
2: जैसे अंधेरे के बाद रोशनी आती है, ठीक वैसे ही बुरे के बाद एक अच्छा वक्त भी तो आता है। सोचने वाली बात है कि जिंदगी में हम इतना घबरा जाते हैं मुश्किलों को देखकर। हम लड़ते नहीं है, लड़ना नहीं चाहते। देखिए, लाइफ को जीना है ना, तो वॉरियर बनना पड़ेगा, खुद को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और जब तक हम खुद को स्ट्रांग नहीं करेंगे, दूसरे लोग हमारी मुश्किलों का हमारा फायदा उठाते जाएंगे। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद पर विश्वास करना चाहिए। कभी भी किसी के सामने झुको मत, बस काम पे फोकस करो। और कभी भी डरना नहीं है। सिचुएशन हर किसी के साथ होती है, प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ आती है। आपको अपनी प्रॉब्लम्स को समझना है और उन्हें सॉल्व करना है, और उसके लिए खुद को टाइम भी तो देना है। इसीलिए जिंदगी में वॉरियर बने।
0: वॉक टॉक।

0: How would you define yourself?
1: Well, I'm Shreyas.
0: And?
1: Just Shreyas.
2: बिछड़ जाएगी तो पता था मुझे, फिर भी क्यों रहा साथ मैं तेरे।

मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। अगर आपने सफर शुरू कर दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। तो अपने एम की तरफ बढ़ते रहिए। रुकना और वापस जाना, ये वर्ड अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए।

हाय, मेरा नाम शुभ बिश्नोई है। मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो तीन चीजों की अगर हम बात करें, पेड़, पानी और फार्मिंग के लिए लैंड। तो पेड़ हमें देते हैं ऑक्सीजन, बिना पानी के कोई जिंदगी नहीं। और फूड की बात करें तो बिना फार्मिंग के कोई फूड नहीं। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काटा जा रहा है, नदियों को नाला बनाया जा रहा है और खेतों पे कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये सब बनाई जा रही हैं। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज हमारी जिंदगी के लिए और हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। बिना नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ना आगे कभी जिंदगी होगी, ना ये कभी कोई जानने के लिए बचेगा कि ह्यूमन रेस या फिर एनिमल रेस करके कोई होता था। अगर हम बात भी करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की तो सिर्फ बातों तक या डिबेट्स तक ही सीमित रह जाती है। अगर हम बात करें कुओं की तो गाँव में जो कुएं होते थे उनको भर दिया जाता है और उनपे जमीन बना के उनपे कब्जा कर दिया जाता है। सारी नदियों में इतना कचरा, इतना इंडस्ट्री की फैक्ट्री का कुछ ना कुछ रसायन डाल के उनको हम नालों में कन्वर्ट कर देते हैं। और खेतों की तो बात ही क्या करें, वहाँ हर जगह कंस्ट्रक्शन होती है। लेकिन ये बात गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा ही अलार्मिंग लगी तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स निकाले और विलेजेस में वापस वेल्स या कुओं को वापस खोदना शुरू किया गया। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल आज हिंदुस्तान में राजस्थान और महाराष्ट्र है, जहाँ पे वापस से कुएं खोदे जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वाटर टेबल कम हो रही है और लोगों को पानी की आगे फ्यूचर जनरेशन में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। एक और अगर हम बात करें कहीं पे नेचुरल रिसोर्सेज की तो वो माइनिंग की आती है। अब आप देखेंगे कि अगर कहीं पे भी माइनिंग होगी, चाहे वो कोल की हो चाहे क्रूड ऑयल की हो, वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरियाज और कहीं पे भी रिजर्व एरियाज में होती है। तो ये एक और बात ये होगी कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर माइनिंग होगी तो जंगल के पेड़ कटेंगे, जितनी भी हमारी माइनिंग के लिए डिगिंग की जाएगी, हमें जितनी भी हमारी मशीन्स लगी जाएंगी वो किसी ना किसी कोल या पेट्रोल या डीजल या किसी ना किसी चीज पे चल रही होगी, उसके तहत हमें और पॉल्यूशन बढ़ेगा, डिफॉरेस्ट्रेशन होगा, बर्निंग ऑफ ऑयल होगा। और साथ ही साथ जब हम इस क्रूड ऑयल को माइनिंग करके कुछ भी कहीं भी ले जाएंगे, फैक्ट्रीज में उसे रिफाइन करने के लिए पॉल्यूशन और होगा। और लास्ट में हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं, चाहे पेट्रोल हो, हम हर दिन ट्रैफिक में जाते हैं, कहीं ना कहीं हम सभी को जाना होता है, वहाँ पे भी पॉल्यूशन होगा। पॉल्यूशन सिर्फ एक व्यक्ति के वजह से नहीं होता है, पॉल्यूशन हम सब कर रहे हैं और हम ना चाहते हुए भी उसका हिस्सा बनते हैं। अगर आप कहीं पे भी चाहे आप अपने उत्तराखंड के देहरादून की बात करें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आप देखेंगे लोगों को एक ही ऑफिस में जाना होता है, लेकिन वो फोर व्हीलर से एक फोर व्हीलर में एक व्यक्ति बैठा होता है। तो उससे क्या पॉल्यूशन बढ़ता नहीं है? पार्किंग की दिक्कत आती है, हर किसी को गर्मियों में छाए में पार्किंग और सर्दियों में उनकी गाड़ी गर्म रहे तो धूप में पार्किंग चाहिए होती है। नेचुरल रिसोर्सेज की बातें सिर्फ बात ना रहे, हम इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंट और बच्चों के फ्यूचर जनरेशन का इम्पोर्टेंट हमें दिमाग में रखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग करना है। हम सब सोचते हैं कि हमें अपने घर को बचाना है, घर को साफ रखना है, तो सबसे पहला घर अगर आपको मानना है तो आपका सबसे पहला घर ये धरती माता है, ये धरती है मदर नेचर जिसे आप कहते हैं। आपका घर सिर्फ चार दीवारी तक सिमटा हुआ नहीं है, ये सोचिए कि आप किस तरीके से नेचर को सेव कर सकते हैं और पर्यावरण के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए आप कुछ छोड़ के जा सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।